0: लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं एल के पंडित का गायन, राग है अहीर भैरव।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एल के पंडित का गायन, राग था अहीर भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

0: आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
1: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ram Nath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ram Nath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. The Securities and Exchange Board of India has relaxed the timelines for municipalities with listed municipal debt securities under its regulations to submit financial results to stock exchanges. Under the revised framework issued yesterday, listed municipalities will now have to submit half-yearly unaudited financial results within 60 days of the first half-year, compared with the earlier 45-day deadline. Annual audited financial results will have to be submitted within 90 days from the end of the financial year, along with the audit report, against the earlier 60 days. The regulator said timelines have been relaxed considering the practical challenges faced by municipalities during data collection, interdepartmental coordination, and meeting disclosure requirements. Thousands of devotees across Kerala began offering Pitru Tharpanam, ancestral homage, in the early hours today on the auspicious occasion of Karkadiyaku Vavu. The new moon day in the Malayalam month of Karkadirakam is considered the most sacred day in the Hindu tradition to perform rites for departed souls seeking their eternal peace and spiritual liberation. The ritual started between 3:30 a.m. and 5 a.m. in most of the temples. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. After securing 17 medals on the opening day on Monday, Indian fencers added more medals to the country's tally. Karan Singh and Sherjan Shantimol clinched gold medals for India in the senior men's events last night. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 6:10 और 13 सेकेंड और लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

पापा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे मास्टर सूर्य सेन के बारे में।
1: आज बात उस महान क्रांतिकारी की जिनका नाम सूर्य सेन था, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहा जाता था। 22 मार्च 1894 को चिटगांव बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, जन्मे सूर्य सेन एक साधारण शिक्षक थे, लेकिन उनके दिल में देश को आजाद कराने का असाधारण जुनून था। सूर्य सेन सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक महान क्रांतिकारी नेता भी थे। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और लोग प्यार से उनको मास्टर दा भी कहते थे। जब वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तब वे एक क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए और बाद में युगांतर नामक संस्था से भी वे काफी प्रभावित रहे। साल 1930 वो ऐतिहासिक साल जब मास्टर दा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर हमला करने की योजना बनाई। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और उनके साथियों ने चटगांव आर्मरी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने टेलीफोन टेलीग्राफ लाइनों को काट दिया ताकि अंग्रेजों की संचार व्यवस्था ठप हो जाए। ये एक साहसी और सुनियोजित कदम था जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। कुछ समय के लिए चटगांव पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया, लेकिन ये आजादी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। यह घटना चटगांव विद्रोह के नाम से जानी जाती है। इस घटना ने आग में घी का काम किया और बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम उग्र हो उठा। दिसंबर 1930 में विनय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता नामक क्रांतिकारियों ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया और स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अधीक्षक को मौत के घाट उतार दिया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के इस संग्राम में दो लड़कियों प्रीतिलता वाद्यदार और कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अंग्रेजी शासन का दमन चक्र तेज हो गया और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के अधिकतर योद्धा गिरफ्तार कर लिए गए। मास्टर सूर्य सेन इस विद्रोह के बाद छिपे रहे और एक से दूसरा स्थान बदलते रहे। एक बार उन्होंने नेत्र सेन नामक एक व्यक्ति के यहाँ शरण ली, लेकिन उसने छल करके ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी दे दी और पुलिस ने फरवरी 1933 में उन्हें पकड़ लिया। मास्टर दा को फांसी देने से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर अनेक अमानवीय अत्याचार किए गए और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान क्रांतिकारी के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1978 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। एक शिक्षक जिसने किताबों से आगे बढ़कर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। मास्टर दा ने हमें सिखाया कि असली शिक्षा वही है जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दे। आज भी उनका बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति। आइए सुनते हैं अयोध्या कांड भाग 15।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर था 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगी।

0: नेतृत्वे सर्वकारेण पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतन विधेयके राष्ट्रिय अधिकरण आयोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः उत उच्च न्यायालयस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः करिष्यति। विधेयक पारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विधिक सदस्यैः लोक महत्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिण सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरल नाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालं भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रियसहकारिताविकासनिगमसंशोधनविधेयकमपि पारितम्। सहकारिताराज्यमन्त्री मुरलीधरमोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्रप्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में

0: पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का विभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. President Draupadi Murmu has given assent to Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Parliament had passed the bill last month. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. It makes it an offence to internationally prevent its singing or to disturb an assembly engaged in singing it. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
2: India-China border affairs, which was held on 6th. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander-level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstanding and miscalculation along the line of actual control.
1: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and the eventual service as the 14th President of India. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. According to IMD, parts of Punjab, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Goa and northeastern states are expected to experience heavy rainfall for the day. The World Bank has raised serious concerns over Pakistan government's decision to divert multi-billion rupee funds meant for flood-affected families in Balochistan towards infrastructure projects. The bank has warned that the move could deepen poverty and increase disaster risk for vulnerable households. According to the World Bank, 84% of eligible beneficiaries are classified as ultra-poor and vulnerable. India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. After securing 17 medals on the opening day on Monday, Indian fencers added more medals to the country's tally. Karan Singh and Sherjin Santhimol clinched gold medals for India in the senior men's events last night. India also won a bronze medal in the senior men's foil event, with Tejas Patil finishing on the podium in a field featuring several renowned international fencers. Indian women fencers put up another dominant performance in the senior women's EP event, winning three medals. Tanishka Khatri clinched the gold, while her compatriot Khushi Dabhade took the silver. Thousands of devotees across Kerala began offering Pitru Tarapanam in the early hours today on the auspicious occasion of Karikada Vavu. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 7:10:14। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे आस्था गोस्वामी से भजन। हारमोनियम पर संगत की है जाकिर धौलपुरी, सितार पे हैं अकील अहमद, सरोद पर साथ दिया है दानिश असलम ने और तबले पे हैं पाशुपति नाथ। तो लीजिए सुनते हैं भजन, कलाकार हैं आस्था गोस्वामी।

आस्था गोस्वामी से भजन। हारमोनियम पर संगत दी थी जाकिर धौलपुरी ने। सितार पर साथ दिया था अकील अहमद। सरोद पे थे दानिश असलम और तबले पर संगति दी थी पाशुपति नाथ ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर था 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं कुसुम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कुसुम के संग। खुद को इतना कमज़ोर मत होने देना कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। दोस्तों, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं।

दोस्तों कहते हैं, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और आगे कदम उठाइए, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। कहते हैं श्रोताओं, खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। इसीलिए वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा है तो शुक्र करें और बुरा है तो सब्र करें।

श्रोताओं, कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है।

0: श्रोताओं, कहते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। जीवन में सफलता और आगे बढ़ने के लिए समय की कीमत को समझना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो श्रोताओं, समय हमें भी इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का वक्त यहीं संपन्न हो रहा है। आपसे अनुमति चाहेंगे, मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा

0: अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में

0: सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
3: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being

0: a rise in exposure to dangerous humid heat, India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, no more plastic sachets for pan masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरिकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शर्जिन शैंतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत नाम तब्दीली बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा ने इस बिल को कल मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में कौमी इमदाद बहामी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: केरला तब्दीली नाम बिल 2026 आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में एक करारदाद मंजूर की थी। केरला कानून साज असम्बली की 2026 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। करारदाद में कहा गया है कि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आइन के पहले शेड्यूल में इसे केरला लिखा गया है। इस दौरान कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का मकसद कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक 1957 के कानून में तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद भारत के कानकनी के शोबे को ज़्यादा मौसर, सरमायाकारी के लिए ज़्यादा साजगार और अहम मादनियात के लिए मुल्क की बढ़ती ज़रूरतों से हम आहंग करना भी है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त भारत गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये खुद नविश्त साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जिंदगी के सफर, उनके तजुर्बों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों का इंतहाई जाती नौयत का खाका पेश करती है। साथ ही उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर भारत के 14वें सदर जमहूरिया के तौर पर अवामी जिंदगी में उनकी खिदमात का अहाता।

0: रिवायती रस्म करक्की डाका वावू बली अदा की जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: केरलम में आज सुबह करक्की डाका वायू बली की रस्म शुरू हो गई है। बेशतर मंदिरों में ये रसूमात सुबह 3:30 बजे और 5 बजे के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरुमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास्वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अकीदतमंदों के लिए ज़बरदस्त तैयारियाँ की हैं। बारिश के मद्देनज़र नदियों के किनारों और साहली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों, सिक्किम, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की लगातार बारिश की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखना पड़ने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थरों के गिरने की वजह से आमोदरफ्त मुतासिर है और लोगों को बिजली और पानी फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अगले 12 घंटे के दौरान शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में ज़िला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर गिरने के ख़तरे के पेश नज़र मंडी और कुल्लू के दरमियान कौमी शाहरा 21 और मंडी और जोगिंद्रनगर के दरमियान कौमी शाहरा 154 पर कल रात से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा रियासत की दीगर 204 सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिमला के महकमे मौसमियात ने 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में तेज़ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इधर ओडिशा में एक बार फिर दूर दराज के मकामात तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है, हालांकि इक्का दुक्का मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे ने आज अंगुल और क्योंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनज़र चौकस रहें। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हज़ारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गाँवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज़ के ज़िरइंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इत्तला मर्ज़ करार देने पर गौर करें, ताकि मर्ज़ का जल्द पता लगाया जा सके और मरीजों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज़ के ज़िरइंतज़ाम इलाकों में से 17 ने पार्लिमानी कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद पहले ही काबिल इत्तला बीमारी के तौर पर कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। मरकज ने अदालत को बताया कि सेहत रियासत का मौजू है और वाजे किया कि 17 रियासतों ने पहले ही कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की तमगे जीतने वाली मुतासिर कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में कल रात भारत के करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने मुल्क के लिए सोने के तमगे जीते। वहीं मर्दों के सीनियर फॉइल मुकाबले में भारत के तलवारबाज तेजस पाटिल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीता। इधर खवातीन भारतीय तलवारबाजों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन के सीनियर एपी

0: मुकाबले में 3 तमगे जीते। इनमें तनिषा खत्री का सोने का तमगा और उनकी हमवतन खुशी दाभाड़े का चांदी का तमगा शामिल है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के लिए मुंतखब किया है। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। इसी अखबार ने दिल्ली असम्बली में कौमी गीत वंदे मातरम गूंजने और वजीर आला रेखा गुप्ता और मेम्बरान असम्बली के तिरंगा लिए हुए असम्बली पहुंचने को बड़ी खबर बनाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर व खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरक़ी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरक तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शेरजिन चैंतीमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे सैयद अहमद खान से सितार वादन, राग है शुद्ध सारंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में सईद अहमद खान का सितार वादन, राग था शुद्ध सारंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हार गिल जइयां जंगा जित के विखाइया ने वारिया जवानिया ने देश दे सिपाहिया ने भुलांगे ना उन्हां नू ना कदी भी विसारांगे जित के विखावांगे
1: कोई मोर्चा नहीं हारांगे
0: देश लई जीवांगे ते देश दे लई मरांगे वतन प्यारे लई हर दुख सुख जरांगे भाई करनगे गद्दारी जेड़े चुन चुन मारांगे जित के विखावांगे कोई मोर्चा नहीं हारांगे फिर असी देश नू सोने दी चिड़िया बनावांगे और नशा देश प्रेम दा सब नू चढ़ावांगे गंगा दे पानिया दी सौ असी खावांगे जित के विखावांगे कोई मोर्चा नहीं हारांगे के पिंजरे च पंछी भी गुलामी नहीं सहारदा पिंजरे च पंछी भी गुलामी नहीं सहारदा और जदों तक चरण ओ उड़ारी नहीं हमार सोच असी अपनी आजादी लई विचारांगे जित के विखावांगे कोई मोर्चा नहीं हारांगे कोई मोर्चा नहीं हारांगे
2: नहीं हारांगे बहुत अच्छा बहुत वधिया गुरचरण सिंह चरण जी आजादी दे जश्न दा मतलब है हर भारती दे दिल च एका ते प्रेम होवे देश दी हिफाजत विच जान वी कुर्बान है साडा भारत महान साडी जान साडी शान है
3: बहुत सोहणे
2: ते हुण साडे नाल बैठे ने पवन कुमार जी इन्हां ने बहुत गिनती च बेमिसाल कवितावां लिखियां ने पर देश भगती दीआं कवितावां ते ए लगातार धुरों लिखदे आ रहे ने पवन जी देश प्यार दर्शाउंदी अपनी वधिया जी कविता ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੋ
4: ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
5: ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦਾ

0: जिंद जान तो प्यारा लगदा सानू झंडा तिन रंगदा
1: बहुत अच्छा।
0: मुगल फरंगी आखर साडे हौसलिया तो हार गए। मुगल फरंगी आखर साडे हौसलिया तो हार गए। हस हस के लखा मतवाले जाना अपनिया वार गए। हस हस के लखा मतवाले जाना अपनिया वार गए। नसया कंबदा वेक के मेरी झंडा तिन रंगदा जिंद जान तो प्यारा लगदा सानू झंडा तिन रंगदा। अगला जी अंतरा है फर फर हवा च लहरावे तक सीना चौड़ा हो जांदा। फर फर हवा च लहरावे तक सीना चौड़ा हो जांदा। दुश्मन देखे ता मिंटो मिंट ओदा हौसला पस्त है हो जांदा। जिंद जान तो प्यारा लगदा सानू झंडा तिन रंगदा। 15 अगस्त हर साल प्रधानमंत्री लाल किले झंडा लहराउंदे ने। देश तरक्की करदा जावे असी कसम भारती खांदे ने। देश तरक्की करदा जावे असी कसम भारती खांदे ने। हो जात धर्म तो पहला पहचान है। जात धर्म तो पहला पहचान है झंडा तिन रंगदा। जिंद जान तो प्यारा हो जिंद जान तो प्यारा लगदा साडा झंडा तिन रंगदा। चढ़दी कला बिच भारत जे कोई नजर कहर दी पावेगा। चढ़दी कला बिच भारत ते जे कोई नजर कहर दी पाएगा। दुनिया दे नक्शे तो उसदा वजूद खत्म हो जावेगा। धरती आकाश पताल च गड्या झंडा तिन रंगदा। जिंद जान तो प्यारा लगदा सानू झंडा तिन रंगदा। ए तिरंगा जान तो प्यारा भारत मां दा गहना है। ए तिरंगा जान तो प्यारा भारत मां दा गहना है। देश वासियो कवे दीवाना इकजुट हो के रहना है। इक डोर च बनिया देश प्यारा। इक डोर च बनिया देश प्यारा झंडा तिन रंगदा। जिंद जान तो प्यारा लगदा सानू झंडा तिन रंगदा। भारत देश दी शान है साडा।

0: जिंद जान तो प्यारा लगदा सानू चंडा तीन रंग दा।
1: बहुत वधिया पवन जी, तिरंगे दे उत्ते कविता पढ़ के तुसी तां देश भगती दे रंगा नाल भिओं दित्ता सारिआं नूं। अपने देश नाल प्रेम करना ते हमेशा उसका हित सोचना ही देश प्यार है। जिहड़े वतन वास्ते अपनी जान गुआ गए, जवानी गुआ गए, उन्हां दा कर्जा है साडे सिर ते।
2: बहुत वधिया।
1: शहीदां दी शहादत दा कर्जा लाउणा है, इस देश नूं मुड़ तो महान बनाउणा है।
2: बहुत वधिया।
1: ते हुण राजवंत कौर राज जी, जिन्हां ने अपने वतन दी मिट्टी नाल प्यार करदियां बहुत सारियां कवितावां लिखियां ने ते कविता पढ़दे वी बड़े जोश नाल ने। राजवंत कौर राज जी,
3: आजाद भारत दे निवासी जी होण दे नाते साडा सब दा फर्ज बनदा है कि असी अपने तिरंगे दा मान वधाईए। ते मेरी कविता है, सदा चुलदा रहे निशान साडा।
2: वाह जी, क्या कहने।
3: पेश कर रही हां, तीन रंगा तिरंगा है शान साडी।
2: क्या कहने।
3: तीन रंगा तिरंगा है शान साडी, एही धर्म साडा ए ईमान साडा।
2: वाह क्या कहने।
3: एही धर्म साडा ए ईमान साडा, एकता शांति खुशहाली दा ए राखा, एही इष्ट साडा ए भगवान साडा।
2: क्या कहने।
3: एही इष्ट साडा ए भगवान साडा, तप त्याग बलिदान दी गाय गाथा। उस तो बिना आजादी संभव नहीं सी
1: जी। जी,
3: तप त्याग बलिदान दी गाय गाथा, एही जिंद साडी ए जहान साडा। पीड़ पवे जे देश ते कदी कोई, टुंबे अणख जगाए स्वैमान साडा। पीड़ पवे जे देश ते कदे कोई, टुंबे अणख जगाए स्वैमान साडा, अमन आजादी गणतंत्र दा ए परचम।
2: वाह क्या कहने।
3: तीन गुण हन, अमन आजादी गणतंत्र दा ए परचम, पूंजन योग है ए विधान साडा, अख वतन दी नीवी नहीं पैण देनी, सदा चुलदा रहे निशान साडा।
2: बहुत वधिया।
3: अख वतन दी नीवी नहीं पैण देनी, सदा चुलदा रहे निशान साडा, इस झंडे दी खातर ही हिंदियां ने तन मन सी अपना वार दिता। एवें नहीं मिली आजादी, सिर उच्चा कर जीवन दी जाच बदले, गोबिंद सिंह ने वार परिवार दिता, ते शिवा प्रताप दी रही चलदी, उच्ची गैरत नु सदा सत्कार दिता, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव गर्जे, फांसी चढ़ के वतन नु प्यार दिता।
2: बहुत वधिया।
3: रण बांके सुभाष ने कायम रखिया, आजाद हिंद दा सुपना साकार साडा, ना ए चुक सकिया ना ए कट सकिया, सदा चुलदा रहा निशान साडा।
1: क्या बात
2: कहने।
3: हुण अज दे माहौल ते आ जाइए कि आजादी नु कायम किस तरह रखना है।
1: हां जी,
3: कि निक्के निक्के स्वार्था नु देश उत्तों हस हस के जेकर लुटा दईए।
1: बहुत वधिया।
3: निक्के निक्के स्वार्था नु देश उत्तों हस हस के जेकर लुटा दईए, आपो तापी दी मारना कदे वगे, जेकर एके दी जोत जगा दईए।
2: मैं क्या कहने। बहुत वधिया।
3: आपो तापी दी मारना कदी वगे, जेकर एके दी जोत जगा दईए, चंगे मंदे सब कुदरत दे होण बंदे, दुई द्वैत नु दिलों मिटा दईए, सुखियां जड़ां विच मेहनत दा नीर पाके, हरा परा ए देश बना दईए।
2: क्या कहने। बहुत सोहणा।
3: सुखियां जड़ां विच मेहनत दा नीर पाके, हरा परा ए देश बना दईए, गौरवमयी इतिहास नु याद रखी, राज चुलदा रहे निशान साडा, सदा चुलदा रहे निशान।
1: धन्नवाद राजवंत कौर जी। देश भगती दा पूरा चित्र तुसी कविता विच लिखिया है। जेड़े देश लई शहीद होए उन्हां नू साडा सलाम है, अपने लहू नाल जिन्ना जमीन नू सिंजिया, अजिहे वीरां नू साडा प्रणाम।
3: प्रणाम। बहुत अच्छा जी।
1: दरअसल अपने देश दे प्रति प्यार, समर्पण ते लगा दी भावना ही देश भगती है। ते हुण देश प्रेम दी एक रचना साडे नाल सांझी करनगे सुभाष चंद्र उर्फ पाशी मुल्तानी जी।
4: अपने वतन दी मिट्टी तो मैं जान निसार क्यों ना करा।
1: क्यों ना करा। वाह।
4: अपने वतन दी मिट्टी तो मैं जान निसार क्यों ना करा, मेरे रोम रोम विच भारत है, मैं इस नाल प्यार क्यों ना करा।
1: वाह वाह।
4: मेरे रोम रोम विच भारत है, मैं इस नाल प्यार क्यों ना करा, इत्थे प्यार दीआं फसलां उगदीआं ने नहीं एथे कोई राग द्वेष, एथे प्यार दियां फसलां उगदियां ने नहीं एथे कोई राग द्वेष, पूरे विश्व नूं दे रिहा जो अमन शांति दा संदेश, पूरे विश्व नूं दे रिहा जो अमन शांति दा संदेश, एदे अमर असूलां दा मैं प्रचार क्यों ना करां।
3: बहुत अच्छा।
4: कुल दुनिया तो भारत दा बिल्कुल ही चलन न्यारा है, तहजीब है गंगा जमुना दी, मिलवर्तन भाईचारा है।
3: बहुत अच्छा।
4: कुल दुनिया तो भारत दा बिल्कुल ही चलन न्यारा है, तहजीब है गंगा जमुना दी, मिलवर्तन भाईचारा है, मैं अपने आपे नू इस दे चरणा तो निसार क्यों ना करा।
3: क्यों ना करा।
4: मेरे रोम रोम विच भारत है, मैं इस

0: नहीं शहीद होना, मेरे राह रुकावटां
1: पाई ना तू,
0: मेरे राह रुकावटां पाई ना तू। अभ्यास करदा जी मैं, जेड़े रस्तियां ते सदा शेर तुरदे उन्हां रस्तियां ते तुरदा जा रहा हां, फखर कर शहादत दा एक होर दीवा मैं कुल दे विच जगा रहा। मैनू फिक्र है बच जाए पुत मेरा, मैनू फिक्र है तेरा निशान रह जाए, मैनू फिक्र है तेरा निशान रह जाए, तेरे चरणा च बेनती कर रहा हां, चरण शहीदा च मेरी पछाण रह जाए, चरण शहीदा च मेरी पछाण रह जाए, चरण शहीदा च मेरी पछाण रह जाए।
2: चरण जी जवाब नहीं तुहाडा, जदों देश नूं आजाद करवाउणा सी उदों देश प्यार नाल भरपूर अनेकां कवितावां लिखियां गईयां जो शूर वीरां दे दिलां च गुलामी दीयां जंजीरां नूं तोड़न दा जज्बा भरदियां सन। ते हुण पवन कुमार जी नूं गुजारिश है कि ओह आजादी दिवस ते इक होर देश प्यार दी कविता साडे सन्मुख रखण। पवन कुमार जी
3: शुक्रिया जी, फिर एक बार तुहाडे सामने फौजियां दे हर एक जिहड़ा फौजी आ ओहनूं समर्पित है मेरी।
2: वाह वाह वाह, बहुत वधिया
4: बहुत वधिया
2: जी। इरशाद,
3: मेरे भारत देश दे फौजिया तेरा रुतबा बड़ा महान, पहरेदार तू सरहद दा तथों डरदा कुल जहान। मेरे भारत देश दे फौजिया तेरा रुतबा बड़ा महान, पहरेदार तू सरहद दा तथों डरदा कुल जहान। मंदर मस्जिद गुरुद्वारे वांगरा तेनू मनदे आ असी भगवान, वे जिथे

सकदा ना तेरा कोई मुल वे, अठों पैर तू चौकीदार वे। दे सकदा ना तेरा कोई मुल वे, तूए बब्बर शेर सरहद दा, तूए बब्बर शेर सरहद दा। देख दुश्मना दे सीने पैंदी चुल वे, तूए बब्बर शेर सरहद दा। देख दुश्मन दे सीने पैंदी चुल वे, महाभारत लई अटल इरादे तेरे, महाभारत लई अटल इरादे तेरे। वेख बैरियां।

0: तेनू उमर भी साडियां
1: वाह
0: लग
1: वाह
0: जान,
1: बहुत
0: तेनू
1: सुना।
0: उमर भी
1: उम्र साड़ियां
0: साडियां, तू बैरियां नू मार मुकावे। ओ तेरी वर्दी नू लख सलामां ने,
1: बहुत अच्छा, क्या
0: तेरी
1: बात है,
0: वर्दी नू लख सलामां ने,
1: वाह
0: कन्या कुमारी कश्मीर जावे, तेनू कुट कुट चूरियां खुआवांगी खुआवांगी। फौजी

कवे फौजन मेरे सुन फौजिया मेरा माण भी दिता तू वधावे यार जुट भी राह ने उड़ीक दे यार जुट भी राह ने उड़ीक दे ओ सानू बॉर्डर।

0: पवन कुमार जी तरन्नुम च पड़ी गई तुहाडी देश प्रेम दी रचना मन नूं छो गई। शहादतां दे सोले तां जरूर गाए जांदे ने पर उन्हां दी जननी नूं वी याद करो। धन ने ओ मावां जिन्हां ने अजिहे बहादुर पुत्रां नूं जन्म दिता।
1: बहुत अच्छा।
0: ते हुण फिर वारी है रजवंत कौर राज जी दी, एक छोटी जी कविता वतन दी आजादी दे नाते पेश कर रहे ने।
2: नज़म पेश है जी।
1: जी।
2: सुई सवेर आजादी दी सुई सवेर, बहारां खिल खिला उठियां ते कोयलां गुण गुणा उठियां।
1: बहुत वधिया।
2: बहारां खिल खिला उठियां ते कोयलां गुण गुणा उठियां, वधाइयां देण दा मौसम चमन विच फेर आया है।
1: क्या कहने, क्या कहने,
2: वधाइयां देण दा मौसम
1: चमन विच फेर आया है।
2: आजादी आन है साडी, आजादी शान है साडी, आजादी आन है साडी, आजादी शान है साडी, लहराया परचम आजादी दा जो खुशियां ढेर ले आया है।
1: भाई बहुत वधिया, बहुत
2: लहराया परचम आजादी दा जो खुशियां ढेर ले आया है। आजादी अधिकार है साडा, ए सत्कार है साडा
3: जी,
2: दास्तां कर्तव दी हर हिंदी नूं सुनावण फेर आया है।
1: क्या
2: दास्तां कर्तव दी हर हिंदी नूं सुनावण फेर आया है। न वेखे अख कोई कैरी, मित्र बन जान सब वैरी, अमन शांति अहिंसा सच नूं ए घेर ले आया है।
1: क्या कहना,
2: अमन शांति अहिंसा सच नूं ए घेर ले आया है। करिए देश दी राखी, बनिए हक सच दे साथी।
1: क्या कहने, क्या कहने,
2: करिए देश दी राखी, बनिए हक सच दे साखी, डुलिया लव शहीदां दा सुई सवेर ले आया है।
1: क्या कहने,
2: डुलिया लव शहीदां दा सुई सवेर ले आया है।
1: क्या कहने,
2: वतन दी आबरू साडी सदारे जुस्त जू साडी, होवे साकार हर सुपना आस परी चंगेर ले आया है। मतवाले जंगे आजादी दे, लव रंगे आजादी दे, तिरंगा राज चूम उठिया मिटा अंधेर आया है।
1: क्या
2: तिरंगा राज चूम उठिया मिटा अंधेर आया है।
1: बहुत सोहने, बहुत सोहने, बहुत सोहने।
0: आनंद आ गया रजवंत कौर राज जी दी कविता सुन के। ते हुण प्रोग्राम दे अखीर च अपनी कविता राही देश प्यार दा बयान करन जा रहे ने पाशी मुल्तानी जी।
4: हुण नहीं देना हरगिज अपमान तिरंगे दा।
0: बिलकुल बिलकुल।
4: हुण नहीं देना हरगिज अपमान तिरंगे दा, दिल तो आपा करना है सम्मान तिरंगे दा। 15 अगस्त नू लाल किले तो जल लहरांदा है, हर भारतवासी दिल तो इस नू शीश झुकांदा है। जनगण मन नाल होंदा है गुणगान तिरंगे दा, दिल तो आपा करना है सम्मान तिरंगे दा। एक ख्याल देखना, एक रंग शांति दा इस विच, एक रंग खुशहाली दा, तीजा रंग शहीदां दी है खून दी लाली दा। अशोक चक्र एक खास है निशान तिरंगे दा।
2: बहुत अच्छा।
4: अशोक चक्र एक खास है निशान तिरंगे दा, दिल तो आपा करना है सम्मान
2: तिरंगे दा।
4: बड़ा खास ख्याल है देखना
0: जी, जी।
4: कि एक कोई कपड़े दा टुकड़ा नहीं, ये देश दा दर्पण है।
2: बिल्कुल,
3: बहुत अच्छा।
4: एक कोई कपड़े दा टुकड़ा नहीं, ये देश दा दर्पण है, हर भारत देश दे वासी दी ये दिल दी धड़कन है।
2: बहुत अच्छा।
4: है तरत तिरंगे दी सारा आसमान तिरंगे दा।
2: बहुत अच्छा।
4: दिल तो आपा करना है सम्मान तिरंगे दा, बस इन्ना को है भाषी अरमान तिरंगे दा।
2: बहुत अच्छा।
0: पाशी मुल्तानी जी, वाकई सानू अपने देश ते, अपने देश ते तिरंगे ते माण होना चाहिदा है। आजादी दिवस ते सिर्फ देशवासी ही नहीं, साडे देश च वगदे दरिया, हरियां भरियां पैलियां, आसमान छोंदे पहाड़, खिड़े फुल, झरने, सारी कायनात आजादी दिवस दी वधाई देंदे गीत गा रही है। ए आजादी दिवस साडे महान देश लई प्यार, अमन ते शांति लेके आवे, यही साडी दुआ है। अज दे कवि दरबार च हिस्सा ले रहे सन गुरचरण सिंह चरण, पवन कुमार, रजवंत कौर राज ते सुभाष चंद्र उर्फ पाशी मुल्तानी। तुहाडे सारयां दे असीं धन्नवादी हाँ। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। अगले प्रोग्राम च फिर मिलांगे। हुण हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया। श्री मोदी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भी आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मुंबई के विले पार्ले में कल रात आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार विले पार्ले पश्चिम में एक भूतल और 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लग गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। इस पद के लिए 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अंतिम चरण की जाँच के बाद 18 उम्मीदवारों को चुना गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। रांची में जिला प्रशासन के देर रात विरोध स्थल पर पहुंचने के बाद तनाव बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना के नाम पर विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है और इस धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। सीनियर महिला स्पर्धा में भारतीय महिला फेंसरों ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. The Met Department has predicted heavy rainfall over northeastern part of the country, Sikkim, sub-Himalayan West Bengal, Chhattisgarh, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Gujarat, Konkan, Goa, Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, along with Andaman and Nicobar Islands for the next 2 to 3 days. India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. After securing 17 medals on the opening day on Monday, Indian fencers added more medals to the country's tally. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 10:10 हुए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। दोस्तों, कुछ धुनें होती हैं जो कानों से होकर दिल तक नहीं जाती, बल्कि सीधे दिल से निकलकर किसी पुराने ख्याल का हाथ थाम लेती हैं। कोई गीत बजता है तो लगता है जैसे खिड़की से आती हवा ने अचानक किसी भूले हुए मौसम का पता पूछ लिया हो, और कुछ नगमे जिन्हें सुनते हुए हम गीत नहीं सुनते, बस अपने ही किसी पुराने रूप से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सारस्वत, और सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां गीत आपकी पसंद के हैं मगर एहसास शायद हम सब के अपने अपने हैं। ये है आपकी पसंद। तो आज की महफिल में पहली दस्तक उसी गीत के नाम जिसे किसी ने अपनी यादों से चुनकर हमारे पास भेजा है।

आसपास ठहरी हुई है। यही तो संगीत की खूबी है, आवाज थम जाती है लेकिन एहसास थोड़ी देर और चलता रहता है। कभी कोई धुन शाम को खूबसूरत कर देती है तो कभी कोई सुबह को, कभी कोई बोल अकेले मन में साथी बन जाते हैं और कभी एक गीत बिना कुछ पूछे दिल की पूरी कहानी समझ लेते हैं। अल्फाज कम पड़ जाएं तो नगमे बोलते हैं और खामोश दिलों के भी राज खोलते हैं। ये संगीत ही तो है जनाब, जो दूर रहकर भी अपनों के पास आ जाते हैं और बस इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं आपकी पसंद का एक और संदेश, जिसे हमें भेजा है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी जी ने, जिला नवा शहर पंजाब से, गांव है टोरोवाल। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई हैं मुस्कुराए। लता मंगेशकर जी का ये गीत फिल्म है हंसते जख्म।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो श्रोताओं, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और कहते हैं कि कुछ रिश्ते भी गीतों जैसे होते हैं, जैसे पहली बार सुनो तो बस अच्छे लगते हैं, बार बार सुनो तो अपने लगने लगते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके बिना महफिल कुछ अधूरी सी लगती है। बस गीत भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, किसी गीत से बचपन जुड़ा होता है, किसी से कॉलेज की गलियाँ, किसी से दोस्त, किसी से कोई खत, और कभी कभी किसी गीत से बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जुड़ा होता है। हमारे पास भी आपके संदेशों का यूं ही भंडार रहता है। आइए सुनते हैं हमारा अगला संदेश, जिसे हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी ने। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप जी ने हमें भेजा है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत की फरमाइश की है, ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी के स्वर में है। आर डी बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी की आवाज़ है। यादों की बारात फिल्म का नाम है। इसके अलावा हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो आया है नरेश जी का, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुक्कू भाविक सिक्का जी ने हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो मिला है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, एकता कॉलोनी रोहतक से। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप ही की फरमा।

आगे निकलकर आपके पुराने ख्याल का हाथ थाम लेती हैं। बस कुछ इन्हीं दोनों के साथ पढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ, जिसे हमें भेजा है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी ने। और ये संदेश हमें मिला है रविंद्र छाबड़ा जी का चंडीगढ़ से। इसके अलावा हमें संदेश मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी का। अगला संदेश हमें है रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का किशनगंज बिहार से। इसके अलावा अगला संदेश मिला है दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू जी का। ये भी हमें किसी भी गीत में शामिल करने के लिए संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा सीताराम कांगड़ा, पबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, एकता कॉलोनी रोहतक से हमें भेज रहे हैं। देखिए, आपके संदेश जो हैं बार बार आ रहे हैं, तो कृपया आपके जब संदेश एक बार जब आप भेज देते हैं तो उसे दोबारा ना भेजें, क्योंकि वही संदेश फिर हमारे पास आते जाते हैं और बहुत सारे लोगों के जो संदेश हैं हमें मिल नहीं पाते। अगला संदेश मिला है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और बेबी बॉय हिमाक्ष जी ने। इसके अलावा फिर से ये वही संदेश आया है दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू जी का। चलिए बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी गीत के साथ सुनते हैं, इसी संदेश के साथ सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, कुछ इन्हीं गीतों की तरह यादों की एक किताब होती है जिसके कुछ पन्ने पुराने होते हैं, कुछ गीत मगर आज भी बिल्कुल नए हैं। वक्त गुजरता गया अपनी रफ्तार से, हम वहीं ठहरे हैं किसी धुन के प्यार से। जी हाँ, तो चलिए यादों की इसी किताब का एक और पन्ना खोलते हैं। लेते हैं आपका संदेश जो हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी ने। इसके अलावा अगला संदेश हमें भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदा फारजू जूही इकबाल, इमरान अहमद, बिटिया आमना, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद और समस्त फूलवाले फैमिली ने। अगला संदेश हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से गुलाम साबिर राही मरूद जहाँ ताज मोहम्मद अंसारी जी ने हमें ये संदेश भेजा है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से जी ने भी हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है वो हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। देखिए, आपके संदेश हमें बार बार एक ही संदेश मिलता जाता है, इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने संदेश फिर से बार बार ना भेजें। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है हमें मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने जी हमें भेजा है और किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की ख्वाहिश रखी है। वंडिंग केड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी ने भी हमें संदेश भेजा है। गांव चौधरीवास हरियाणा।

से मांगेराम सतोड़ जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। मस्कीन दादा जी ने भी हमें संदेश भेजा है, ये संदेश हमें भेजा है। फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, देवानशी खेड़ा जी ने जी हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा मेरठ दिग्दर्शन और मेरठ से एक दिग्दर्शन और कविता गौर जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। संदीप जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा भी हमें संदेश भेज रहे हैं और अपने संदेश को किसी भी गीत में शामिल करने की ख्वाहिश रखी है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका कोरवाल जी ने भी हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा जो हमें संदेश मिला है वो हमें मिला है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सानी, पिंगा वाला चौक, गुरैया जालंधर जी से। इन्होंने भी हमें किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की ख्वाहिश रखी है। इसके अलावा सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जी ने भी शांति नगर सोनीपत से हमें खुद को किसी भी गीत में शामिल करने की ख्वाहिश रखी है। तो दोस्तों देखो, बात कुछ ऐसी है कि हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में सभी के संदेशों को शामिल करना चाहते हैं, किंतु आपके जो संदेश हैं वो एक ही आईडी से या एक ही व्यक्ति के संदेश हमें बार बार मिलते हैं, जैसे कि जो संदेश भेजना चाहते हैं बाकी लोग उनके संदेश हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो अपने जो संदेश हैं आप एक बार भेज के अपना नाम सुनने के बाद उन्हें ना भेजा कीजिए। इसके अलावा अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को और पढ़ते हैं इसी श्रृंखला में।

0: दोस्तों, ये वो गीत हैं जिन्हें सुनकर दिल कहता है कि ज़िंदगी को हर वक्त समझने की ज़रूरत नहीं होती, कभी-कभी बस महसूस भी किया जा सकता है। थोड़ी सी धुन, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ी सी याद और एक गीत, बस इतनी सी चीज़ों से कितनी बड़ी महफिल सज जाती है। ना कोई शिकवा रहे, ना कोई सवाल रहे, बस होठों पर गीत और दिल में ख्याल रहे। ज़िंदगी यूं ही सुरों में ढलती रहे, हर सुबह थोड़ी और खूबसूरत होती रहे। इसी खूबसूरती के नाम अगली फरमाइश, जिसे हमें भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो ने जनकपुरी सहारनपुर से। इसके अलावा अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है सुरेश चौरसिया जी का, और सुदर्शन मुखी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। किशन वंजानी जी ने भी हमें संदेश भेजा है ये, और इसके अलावा कमल पाठक जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं अनारकली बाज़ार जागरण से। और इन्हीं संदेशों की कड़ी में अगला संदेश हमें मिला है सत्य प्रकाश तनोटिया जी का, रोहिणी से। और अगला संदेश हमें मिला है पंकज शर्मा जी का, मॉडल टाउन करनाल से। इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी जी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ जी ने जी राम राम भेजा है। जी राम जाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें संदेश भेजने के लिए। और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। अनिल मोहन जी ने भी हमें संदेश भेजा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो मिला है गुलाबदास जी का, लेवाई छत्तीसगढ़ से। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने भी हमें संदेश भेजा है। आप सभी के संदेशों को मद्देनजर रखते हुए आइए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
0: ये कहा।
2: जी हाँ दोस्तों, और अब सुरीली मुलाकात से विदा लेने का वक्त करीब है, मगर जाते जाते एक बात कहे बिना कैसे जाएं। दोस्तों गीत कभी खत्म नहीं होते, बस एक गीत के बाद दूसरा गीत हमारे इंतज़ार में खड़ा होता है। और यादें, यादें भी कहाँ जाती हैं, वे तो किसी धुन के बहाने फिर लौट आती हैं। कुछ सुने हवाओं में घुल जाती हैं, कुछ सांसों में उतर जाती हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी दिल में बजते रहते हैं। तो आज की इस संगीत भरी मुलाकात में अपनी पसंद के गीतों को जगह देने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं दुर्गेश सारस्वत आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी गीत की आहट पर, किसी याद की करवट पर, और आपकी किसी नई पसंद के साथ। तब तक शुरू से रिश्ता बनाए रखिए, क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी उलझी हो, एक अच्छा गीत उसे कुछ देर के लिए बहुत आसान बना देता है। नमस्कार दोस्तों।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। यह आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती हैं वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक साधन है। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने कराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा है कि आज के युवाओं के सपने कल की भारत की नींव है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा आज देश की ताकत है। उन्होंने इस दिन को देश के युवाओं की क्षमता और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का जश्न मनाने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉ. विक्रम साराभाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत के लिए जो महत्वाकांक्षी सपना देखा था वो आज साकार हुआ है। श्री सिंह ने डॉ. साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक बताया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 381 अंक गिरकर 77,000

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। 11:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंजरी के कार्यक्रम में उस्ताद मजहर अली खान का और उस्ताद जावेद अली खान का गाया राग जौनपुरी। आपके साथ तबले

Mama Mama,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुर मंजरी के कार्यक्रम में उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जावेद अली खान का गाया राग जौनपुरी। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे प्रसून चटर्जी और हारमोनियम पर थे सज्जाद अहमद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त RRPS डॉक्टर भूमा विजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AIPSI मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
3: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों उन्होंने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानिंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानिंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: The news read by Sarabjit Kaur. Both the Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests and alleged anomalies in Ayodhya Ram Mandir donations. Mr. Birla said, "Today the country is celebrating International Youth Day, and the youth of the country also want discussions on issues concerning them." The Speaker urged the opposition members not to undermine the dignity of Parliament and allow the House to take up question hour, but the opposition were on their feet pressing their demand. However, due to continuous uproar by the opposition members, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi today released the autobiography of former President Ram Nath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi. The autobiography offers a deeply personal account of Mr. Kovind's remarkable life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that Mr. Kovind's autobiography will not only provide insights into his life, personality and contributions, but also serve as a legacy for Indian democracy and society.
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
4: Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal today underlined that the Tribunal Reforms Bill 2026 marks a transformative shift towards institutionalized, transparent and accountable tribunal governance, placing the National Tribunals Commission at the core of a stronger tribunal ecosystem. Writing an article for an English daily, the minister noted that the bill seeks to strengthen the governance architecture of tribunals without altering their substantive jurisdiction. Mr. Meghwal added that the bill represents the next stage of a broader reform journey aimed at making India's legal and regulatory ecosystem more modern, predictable and effective. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the spirit of Vande Mataram had inspired India's freedom struggle and continues to strengthen the nation's identity today. He said this while addressing the participants of Har Ghar Tiranga bike rally organized by the Culture Ministry, marking 150 years of the national song. The Vice President said that the words of Vande Mataram had ignited patriotism and united people across regions, languages, faiths and backgrounds. Union Science and Technology Minister Dr. Jitinder Singh has paid tribute to ISRO's first chairman, Dr. Vikram Sarabhai, on his birth anniversary today. In a social media post, Dr. Singh described Mr. Sarabhai as one of the founding fathers of India's space program. In Himachal Pradesh, 4 people were killed in an accident while 9 others were injured after a Bolero pickup vehicle fell into a deep gorge at Gatlong in Sirmaur district. The condition of 2 of the injured is reported to be critical. The injured have been referred to the medical college in Nahan for treatment. The police are currently investigating the matter. benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in the forenoon session today. The Sensex shed 555 points to 77,599, while the Nifty dropped 177 points to 24,295 when reports last came in. Indian Grandmaster R. Pragananda defeated Javakir Sindrov in a second round match of the Singfield Cup in St. Louis, United States. In his first victory in the tournament, which is the penultimate event of the Grand Chess Tour. And that is the end of this news bulletin.

घर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। आज का दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हमारे युवा सपनों को ज्ञान विज्ञान और प्रकृति को सलाम करने की बात बताता है, तो आप सभी प्यारे श्रोता साथियों को मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर भी सुन रहे हैं। तो अब वक्त है कि हम पूछ लें आपसे वो सवाल जो होता है हमारे आज के प्रश्न का। तो साथियों आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस का माहौल बना हुआ है हमारे देश में, तो स्वतंत्रता दिवस की ऐसी कौन सी यादें हैं आपकी बचपन से जुड़ी हुई, जब आप झंडे फहराने या पूरे यूनिफॉर्म को मुश्तैदी से पहनने के साथ वहाँ पर जाकर बूंदी खाने जैसी यादों से जुड़े हुए हैं। इन यादों को हमारे साथ बांटिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और इनका उत्तर आपको देना है fmgoldga@gmail.com पे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भेजिए फटाफट अपने उत्तर हमारे साथ। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों, वे युवा जो हमारे विचार और अपने हौसलों से हवा का रुख बदल सकने की ताकत रखते हैं, जिनके प्रयास से देश और दुनिया की दिशा बदल रही है और हम इसे देख रहे हैं। और हमारे देश में तो जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वो हमारे युवाओं का है, जो राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं, क्योंकि ये युवा ही नई कंपनी और स्टार्टअप शुरू कर रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं और ऐसे ही वो हमारे देश के नाम को रोशन करते जा रहे हैं। एक नहीं ऐसे अनेक नाम हैं जो युवा शक्ति का सफल हस्ताक्षर बन चुके हैं। तो आज का दिन हमारे युवाओं को समर्पित है, हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आज के इसी दिन में हम याद करते हैं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनकी आज जयंती है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सफर की नींव मजबूत की। उसी तरह आज एक और विशेष दिन है जो हमें ज्ञान की दुनिया से जोड़ता है, राष्ट्रीय पुस्तकालाध्यक्ष दिवस। पुस्तकालय विज्ञान के पितामह डॉक्टर SR रंगनाथन की जयंती पर हम इस दिन को मना रहे हैं। उन्होंने कहा था, किताबें सिर्फ अलमारियों में रखने की चीज नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति है। और सच में दोस्तों, किताबों से अच्छा और सच्चा दोस्त कौन हो सकता है ना। और इसी के साथ सावन मास की अमावस भी है आज, जिसे हरियाली अमावस कहते हैं। ओडिशा राज्य में चितलागी या चितौ अमावस्या के नाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस दिन भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार और पारंपरिक पकवान चितौ पीठा का भोग भी लगा याद जा रहा है। और उसी तरह आदि अमावस्या के नाम से दक्षिण भारत में भी आज के दिन को मनाते हैं। तो धरती की हरियाली का जश्न मनाते हैं आज मिलकर हम सभी, हरा भरा हो जीवन हमारे त्योहारों के संग। इसी संदेश के साथ सुनते हैं हम ये गीत।

0: आशाओं के सावन में, यानी आशाओं के दीप जलाने वाले इस गीत को आप सुन रहे थे आशा फिल्म से, और आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और दोस्तों, आपको याद दिलाती हूँ आज की प्रश्नावली, चूँकि वो भी आशाओं से भरी हुई है, और वो है स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी याद है आपकी जो आपको आज भी गुदगुदाती है। हमारे साथ साझा कीजिए, और fmgoldga@gmail.com पर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी उन्हीं बातों के लिए। लेकिन फ़िलहाल साथियों, आज चूँकि बहुत ख़ास दिन है, आज है नेशनल लाइब्रेरियन डे। तो आधुनिक दौर में पुस्तकों की भूमिका, डिजिटल युग में पुस्तकालय से जुड़ी जानकारी और बदलाव की दिशा में प्रकाश डालने के लिए नेशनल लाइब्रेरियन डे के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े धन सिंह बैसला जी से रश्मि कुकरेती जी की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड, और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। दोस्तों, जो पुस्तकालय है वो केवल किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विचारों का ऐसा खजाना है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। एक अच्छी पुस्तक हमें नए विचार देती है, नई दिशा देती है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो आज हम जानेंगे कि आधुनिक दौर में जो पुस्तकालय है उनकी क्या भूमिका है, और अगर हम डिजिटल युग में पुस्तकालय की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, और अगर आप किसी डिजिटल पुस्तकालय को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बदलाव आते हैं। तो उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धन सिंह बैसला जी, जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के बड़ौली गांव से आए हैं FM गोल्ड के स्टूडियो में। आप ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े हुए हैं, और धन सिंह बैसला जी ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से लाइब्रेरी का निर्माण करने का काम करते हैं, और बहुत सारे अन्य जो सामाजिक सेवाएं भी अपने गांव में और आसपास के जो पलवल जिले हैं उसके क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत धन सिंह जी आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में।
2: हार्दिक आभार
1: जी। तो धन सिंह जी, बताइए, आप जो अपने गांव में जन सहयोग से एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करवाया है, आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया, कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार से उसने मूर्त रूप लिया?
2: हमारे गांव में, वैसे ये हमारा संगठन जो है वो सारे देश में काम कर रहा है, 10-12 स्टेट्स में काम कर रहा है। उत्तर की तरफ का सारा जो क्षेत्र है वहाँ अभी तक हम पहुँच गए हैं। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तो है ही है, इस सारे क्षेत्र में, राजस्थान में बड़े व्यापक क्षेत्र में हमारा फैलाव है, मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में, संभल संभाग में, तो एक साथ 50 गांवों में, मतलब इस तरह से लाइब्रेरियों के निर्माण की मुहिम चलाई। तो हमारे गांव में अगर मैं बात करूं तो आरंभ में हम सारे लोग ऐसा महसूस करते थे कि बच्चों के लिए कैसी लाइब्रेरी की आवश्यकता है जहां वो सारे बैठ के पढ़ सकें। शहरी क्षेत्रों लाइब्रेरियां हैं, पेड लाइब्रेरियां हैं, ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं होती, तो 1500-2000 रुपए अगर उन्हें पे करना होता है, फिर साथ में 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है, तो उनका समय भी बच जाए और उसका आर्थिक संसाधनों की भी बचत हो सके, ऐसा सोचकर हमारे दिल में ये ख्याल आया कि एक लाइब्रेरी का निर्माण हो गांव में। तभी उसी संदर्भ में हमें पता चला कि ग्राम पाठशाला नाम का संगठन वो काम कर रहा है, और जिसमें लाल बहार जी के नेतृत्व में साथी काम कर रहे हैं, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ, तो हमें एक दिशा निर्देश प्राप्त हुए कैसे हम आसानी से एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। हमें बड़ा मुश्किल सा कार्य लगता था, पर जैसे ही उस क्षेत्र में हम आगे गए तो पता चला बड़ा सरल सा काम है और बहुत सारे लोग कर सकते हैं।
1: तो ये जो लाइब्रेरी आपने डिजिटल पुस्तकालय बनवाया, वो जो जगह थी और उसका निर्माण था, वो जगह कौन सी जगह आप लोगों ने चुनी?
2: हमारे गांव में चौपाल है, बड़ा गांव है तो कई सारी चौपाल हैं, तो एक चौपाल है बड़ी अच्छी सी, उसे बैरम मोहल्ला की चौपाल कहते हैं
1: जी।
2: तो उस चौपाल को हमने मोहल्ले के लोगों से मांगा, बड़ा अच्छा सा स्थान था वो। जब हमने बताया किस तरह की हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं तो लोग बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि हम न केवल चौपाल देंगे बल्कि अगर जो आपको और कोई आवश्यकता हो आर्थिक संसाधनों की, वो भी हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करिए, हम आगे बढ़ेंगे, और वो जगह हमें मिल गई।
1: तो जो आर्थिक संसाधन थे वो गांव के लोगों ने ही
2: आपस में
1: हाँ। दिए, और आप लोगों ने वो जो बिल्डिंग थी एक हाँ। खड़ी कर दी
2: हाँ।
1: तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये लाइब्रेरी बनवा दी, तो जो विद्यार्थी थे, शोधार्थी थे या जो भी पढ़ने के रसिक थे बच्चे, वो कैसे जुड़े और इस लाइब्रेरी का स्वरूप आपने किस प्रकार से विकसित किया?
2: इसके लिए लोग इकट्ठे हुए। गांव में एक परंपरा आज भी है जिसको हम पंचायत कहते हैं, जिसे हम जनरली मीटिंग कह देते हैं आजकल, तो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए, तो वो विभिन्न गलियों से, विभिन्न मोहल्लों से वो सब लोग आए
1: जी,
2: और जैसे ही वो आए तो वो सूचना उन्हीं के जरिए सबके पास तक पहुंच गई। सबके घरों में बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो पहले ही गांवों से शहर की तरफ जा रहे थे, वो पेड लाइब्रेरीज में जा रहे थे, फिर उन्हें
3: जहाँ इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी, बैठने के लिए एक आसान जगह थी, जहाँ कुर्सी था, टेबल था और उनके पास वाईफाई था। जी,
2: हमने एसी भी लगवाया उसमें।
3: अच्छा, वातानुकूलित बनवा दिया। जी, करीब कितने बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग जो वहाँ पर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस लाइब्रेरी?
2: लगभग 50 बच्चे हम लाइब्रेरी में हैं।
3: जी, तो ये क्या करते हैं बच्चे? सिर्फ किताबें पढ़ते हैं या किसी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं आगे जीवन सुधारने के लिए?
2: उसमें जो स्टूडेंट हैं या जो करियर के लिए काम कर रहे हैं वो वाईफाई से भी वो ले रहे हैं, हर तरह की पुस्तकें अवेलेबल करा रखी है वहाँ।
3: जी,
2: और कुछ प्रौढ़ लोग भी आते हैं।
3: अच्छा।
2: हाँ, वो जो अपने प्राचीन जो ग्रंथ हैं, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हैं और मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने वाली जो अच्छी चीजें हैं वो सब चीज वहाँ मौजूद है। अगर किसी को कोई और अच्छी चीज, जैसे किसी के दिमाग में कोई आती है, वो अगर उस तरह की किताब की मांग करता है तो हम वहाँ लाकर रखते हैं।
3: तो आपने किताबें भी रखी हुई हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी या वाईफाई जो है उनको दे रखा है?
2: दोनों चीजें
3: मौजूद हैं। तो इसके अलावा जैसे आपने देखा कि पढ़ने वाले बच्चे वाईफाई से जो है बहुत सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और पढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ पढ़ना ही शुरू किया या उनके अंदर और भी कुछ बदलाव आपने देखे?
2: हमारे दिमाग में पहले ऐसा था कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास होगा, लेकिन जब लाइब्रेरी खुल गई जो उसके इतर परिणाम आए
3: जी
2: वो बिल्कुल अलग थे। पहले जो गांव के नुक्कड़ पे जो बच्चे इधर उधर खड़े होते थे, एक दूसरे से कुछ कहते थे, कहीं कभी झगड़े भी हो जाते थे, आपस में टसन होता था, अहंकार का भाव होता था, अब उनमें सौहार्द का, प्रेम का भाव है, वो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, वो कभी कोई मजाक भी करते तो उनमें बड़ा आनंद पूर्वक होता है, सौहार्द बढ़ा है।
3: जब किताबें हैं तो जो ज्ञान का प्रकाश जब पहुंचता है तो अच्छे विचार बनते हैं, और जब अच्छे विचार बनते हैं तो जो आपने बताया कि सौहार्द भी आपस में बढ़ा, और मुझे लगता है कि समय का सदुपयोग विद्यार्थियों ने किया। अच्छा, ये निशुल्क है बिल्कुल लाइब्रेरी?
2: बिल्कुल निशुल्क है
3: जी।
2: पहले गांव के बच्चे शहर में जाते थे तो उनका 1.5-2 घंटा खर्च होता था
3: आने जाने का,
2: और उन्हें उसके लिए पैसा देना पड़ता था
3: जी।
2: अब उन्हें वो मुफ्त में उपलब्ध है और उनका समय भी ज्यादा खर्च नहीं होता। एक बहुत कमाल की बात बताऊं, एक दिन मुझे बुखार हो रहा था, रात्रि में नींद नहीं आ रही थी और रात को 1:45 बजे का समय था
3: जी।
2: तो हमारे सीसीटीवी कैमरा से जोड़ी हुई है लाइब्रेरी, अपने फोन में हम देख लेते हैं, तो मैंने उसको देखा तो उस समय रात के 1:45 बजे 17 बच्चे वहां पढ़ रहे थे।
3: अच्छा,
2: बड़ा अच्छा लगा कि गांव के बच्चे जो पहले थोड़ा समय देते थे पढ़ने पर, अब वो लगातार बहुत लंबा समय दे रहे हैं
3: जी।
2: और उसके परिणाम बेहतर आ रहे हैं।
3: तो ये तो सारी बातें जो अच्छे जो परिणाम आपको मिले, लेकिन जब आप बनवा रहे थे, सोच रहे थे, तो क्या बिल्कुल सहयोग एकदम मिल गया? क्या कुछ दिक्कतें भी आई बनवाने में?
2: हमें दिक्कतें कम आई, वैसे कुछ जगह दिक्कत होती, किसी गाँव में मान लीजिए चौपाल नहीं है
3: जी,
2: तो वहाँ कुछ लोगों के मकान है वो खाली पड़े हैं
3: जी,
2: वो लोग शहर में चले गए, क्योंकि अच्छे काम के लिए आदमी सदैव तैयार रहता है, उस घर का रखरखाव हो जाता है। और ऐसे लोगों से जब बात करते हैं, और बहुत सारे गांवों में लाइब्रेरी, लगभग 3-4 हजार गांवों में ग्राम पाठशाला के मिशन से लाइब्रेरी बन चुकी हैं अभी तक, और ये कार्य आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहा है
3: जी।
2: तो वहाँ ये दिक्कत आती है कि अब जगह की क्या ऐसे व्यवस्था हो, दिक्कतें तो हैं।
3: हाँ।
2: और कोई आदमी आगे बढ़ता है तो कदम चूम लेती है आकर के, खुद मंजिल है मुसाफिर तू हिम्मत न हार। बस एकदम जैसे ही आगे बढ़े, तो हमारा तो अनुभव ये था, और जो हमें औरों का जो अनुभव हमने देखा शुरुआत में जैसे आरंभ हुई, तो मैं उस प्रसंग को बताना चाहूंगा। गनौली गांव में वो कोरोना काल था, तो गांव के बच्चे जो शहर जाते थे उनका वहां जाना, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, कोई नहीं आ जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो गांव के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि उन क्यों नहीं ये जो चौपाल पड़ी है उसके मरम्मत करा के इसको लाइब्रेरी बना दें, गांव के बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे। तो उन्होंने जितने बच्चों के लिए पढ़ाई, थोड़े ही दिन में वो बहुत कम पड़ गई। उन्होंने कहा कम पड़ने का तो सवाल ही नहीं होता था, जितने गांव के बच्चे हैं वो उससे भी ज्यादा बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। पता चला कि आसपास के गांवों के बच्चे वहां आने लगे
3: जी।
2: तो फिर गांव के लोग बड़े सौहार्दपूर्ण भाव के होते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं उन गांवों में भी लाइब्रेरी हो, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं
3: जी।
2: तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के दूसरे गांवों में गए और गांव में जाकर उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने उसको मतलब बिल्कुल हाथों हाथ लिया उस विचार को, और इस तरह से लाइब्रेरियां बनती चलेगी
3: जी। ये तो लोग बहुत अच्छे ही आपने बताई बात कि बहुत सारे बच्चे और जुड़ गए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पर और लैपटॉप पर और वाईफाई कनेक्शन के लिए उनके मन में एक बड़ा

0: हैं। फिर जो गांव के जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो उधर से निकल रहे हैं, तो वो एक बार झांक जाते हैं उधर। तो
1: अच्छा
0: गांवों में ये बात अभी भी है कि कोई बुजुर्ग है और वो उन्हें एक बार शाबाशी दे के जाता है, उनका उत्साहवर्धन होता है, साथ में अनुशासन भी बढ़ता है,
1: जी
0: उन्हें लगता है कि कोई जिम्मेदार आदमी हमें देख रहा है। फिर बीच में कई बार अड़ोसी पड़ोसी या और भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाते हैं, देख के आते हैं उन्हें वो क्या कर रहे हैं, बच्चे
1: यानी
0: आपस में ही।
1: चौकसी भी है, निगरानी भी है,
0: हाँ,
1: बच्चों की देखभाल भी है और
0: जो
1: सुरक्षा भी
0: जो
1: है।
0: जिम्मेदार बच्चे हैं, जो थोड़े से मतलब बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा नजर रखने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो और थोड़ा सा निखरा हुआ है, थोड़ा सा विकसित विचार के जो लोग हैं वो उन्हें अपने आप भी चेक करते हैं। कई बार उनसे कुछ नहीं कहते, वो सूचना हम तक प्रेषित कर देते
1: जी
0: हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से भागीदारी से जो पूरा गांव है वो कोशिश कर रहा है। अब एक बात और दिमाग में आती है धन सिंह जी, कि ये बन जाने के बाद हर व्यक्ति के मन में होता है कि अब कुछ आगे बढ़े, तो आगे की योजनाएं भविष्य की क्या क्या है आप लोगों के दिमाग में? क्या और भी पुस्तकालय खोलने का विचार है या इससे जुड़ी कुछ और योजनाएं जो युवाओं का भविष्य बेहतर कर पाएंगी?
0: हमारी योजना है 6,64,369 लाइब्रेरी, हमारा टारगेट है।
1: अच्छा
0: भारत के हर गांव में एक निशुल्क लाइब्रेरी हो, वो बालक जो कहीं भी अभावों में हैं, अभावों के कारण से उनकी शिक्षा कमजोर ना हो, उनका मानसिक विकास कमजोर ना हो, क्योंकि ज्ञान वैभव ही परम वैभव पर देश को ले जाएगा, ऐसी
1: जी
0: हमारी धारणा है। हम जल्दी ही आगे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था भी वहां हो जाए, हालांकि वो एक ही जगह है और वहां कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी गांवों में कुछ लोग हैं कि जो बिना किसी देख रेख
1: थोड़ा
0: के नहीं छोड़ना
1: हिचकिचाहट
0: चाहते।
1: है
0: हाँ
1: जी।
0: हाँ तो वो हिचकिचाट उनके दिमाग में ना हो, इसलिए लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी बन सके।
1: और हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं इस काम के लिए कि इसी प्रकार से आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलते चलते अगर हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे धन सिंह जी।
0: मेरे संदेश भी है, प्रार्थना भी है और अपने छोटों को सलाह भी है कि बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनके संस्कार अच्छे हों, प्रेम हो, सौहार्द हो, शांति हो, सब एक दूसरे को प्रेम करें, तो उसके लिए लाइब्रेरी बनवाएं अपने अपने गांव में। हर गांव की सज्जन शक्ति हर श्रेष्ठ काम के लिए आने के लिए तैयार रहती है, पर उसमें यही है, बस कोई पहल करे।
1: जी
0: तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव में पहल करिए। आपके श्रोताओं से मेरा यह अनुरोध है, वो अपने अपने गांव में सज्जन शक्ति को इकट्ठा करें, उनसे बात करें और इस कार्य में सहयोग करें हमारा और आगे बढ़ें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जहां जहां पुस्तकें होंगी वहां ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं होता बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और आजीवन सीखने का तो ये केंद्र है। और पुस्तकालय में पढ़ने की जो आदत है ना, वो तो शोध को बढ़ावा देता है, व्यक्तित्व का विकास उसमें होता है और एक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार समाज के निर्माण में पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डिजिटल युग में तो जो पुस्तकालय है और भी विश्वसनीय है और प्रामाणिक जानकारी के एक सशक्त स्रोत के रूप में उभरा है। इसमें धन सिंह बैसला जी हमारे साथ जुड़े, एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आए और धन सिंह जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: मैं आपका और एफएम गोल्ड का, ऑल इंडिया रेडियो का, सभी का हार्दिक आभारी हैं। हम सभी आपके श्रोताओं को पुनः पुनः नमस्ते।
1: और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।

साथियों, नेशनल लाइब्रेरियन डे के उपलक्ष्य में आपने अभी बातचीत सुनी ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े धन सिंह बैसला की रश्मि कुकरेती से। और दोस्तों, चूंकि हमारी हर दिन की कोई ना कोई प्रश्नोत्तरी है और इस प्रश्नोत्तरी को हम आपसे फिर दोहराते हैं, और वो प्रश्नोत्तरी है, आपको बताना है स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी याद है जो आपको आज भी आती है, गुदगुदाती है, और शेयर करना है fmgoldga@gmail.com पर। और ये बात मैं आपको दोहरा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं इन प्रश्नों के उत्तर लेकर, जिसमें हमारे नियमित श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी। और इन्होंने अपनी याद बताते हुए कहा है कि प्राइमरी स्कूल में जब वो थे तो वो एक फ्लैग लेकर पूरे मोहल्ले में घूमा करते थे। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि देशभक्ति का भाव बचपन में हमारे दिल में जिस तरीके से चस्पा होता है वो पूरी उम्र हमारे साथ चलता है। तो बहुत शुक्रिया अपनी इस भावना को हमारे साथ साझा करने के लिए नवीन जी। हमारे अगले जो साथी हैं, श्रोता साथी, उनका संदेश है, वो है अफरोज शेख, और ये नेमुआ सुपौल बिहार से भेज रहे हैं अपना संदेश। और कहते हैं कि इनका संदेश थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मैनेजर का एक लकड़ी हुआ करता था, मतलब एक लकड़ी कोई होती थी और वो अपने गांव में उसे उसका छिलका उतारकर उससे रंग निकालते थे, और रंग निकालकर डिज़ाइन बनाते थे, और उस डिज़ाइन से उसे झंडे में लगाकर गांव-गांव गली-गली घूमते थे और उन्हें बहुत आनंद आता था। वही क्या बात कही आपने, सचमुच में बचपन जो है वो मौलिकता से भरा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि बस हम अपने देश को सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे कागज़ में ही सही पर उस समय अपनी कल्पनाओं को बिखेरते थे। बहुत ही खूबसूरत सा आपका संदेश है। और गौरी शंकर जी का हमारा संदेश आया हुआ है, और उन्होंने कहा है राम राम जी, बहुत बहुत आपको भी राम राम। और उन्होंने कहा है 60 साल पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्वतंत्रता दिवस का इंतज़ार बहुत रहता था, और उस दौरान TV भी नहीं होता था, और हम स्कूल में इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बहुत बेचैन रहते थे, और रेडियो पर भी हम सुनते थे तो मन में बहुत खुशी होती थी इस दौरान जो कार्यक्रम आते थे उन्हें सुनकर। लेकिन आजकल वो सुविधा नहीं दिखती है उन्हें, फिर भी पहले जैसी बात को वो मिस करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपनी इन भावनाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक और श्रोता साथी हैं जिन्होंने कहा है रेडियो और TV जो है 26 जनवरी की सुबह जो होती थी उससे हमारी शुरुआत होती थी, और उसमें देशभक्ति गीत बजते रहते थे। दूरदर्शन पर सुबह सुबह परेड देखने को मिल जाया करता था, और पूरे परिवार के साथ हम एक साथ बैठकर इस वातावरण का आनंद लिया करते थे। जी, बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत यादें हैं आपकी, ऐसी ही यादें हम सभी की बचपन में जुड़ी होती हैं। तो आपको भी बताना है साथियों, जिन्होंने अभी तक संदेश नहीं भेजा है, कि स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी मीठी मीठी याद है जो उन्हें गुदगुदाती है आज भी, और बताना है fmgoldga@gmail.com पर। हम बातें करेंगे और भी, फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

यशुदास और हेमलता की इस खूबसूरत सी आवाज़ में आपने सुना चिचोर फिल्म से ये गीत, और सुर में सुर मिलाने का ही तो मौसम है दोस्तों, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है ना? और ऐसे में इस बार हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प अब दूर नहीं है, है ना? और इस संकल्प को पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी भी है दोस्तों, जिसके लिए हमें नवाचार और कौशल विकास को पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए देश हित में एक साथ चलना होगा, और नई चीज़ें सीखते हुए अपनी कार्यकुशलता को भी बढ़ाना है, नवाचार करना है, ताकि देश के विकास के लिए नए आइडिया और स्टार्टअप्स हमारे देश में खुलें और हमें नया अवसर मिले। इससे ही तो हमारा आने वाला कल बनेगा वही जो हम आज से बनाना चाहते हैं, है ना दोस्तों? जाहिर है हर भारतवासी गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और दूसरे सामाजिक जो बुराइयों के मुद्दे हैं उनसे अपने देश को मुक्त देखना चाहता है। इसीलिए आने वाले वर्षों में मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा और उच्च जीवन स्तर हासिल करने के लिए हम सब एक साथ प्रयासरत हैं, और हम स्वयं साक्षी हैं कि सपनों का भारत पूर्ण विकसित होने के लिए कदम बढ़ा रहा है अपने आगे। और इसलिए हमारी जो देश की अलग अलग पीढ़ी है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और अमृत पीढ़ी के हमारे जो नौनिहाल हैं वो नवाचार को तेज़ी से अपना रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। और जानते हैं इनके आइडिया, इनके हुनर और संकल्प में निहित है विकसित भारत का स्वप्न, जो विकास, लिंग समानता, रोजगार के क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। समावेशी विकास में महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना हमारे देश की नीतियों का मुख्य हिस्सा है, और स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना, डिजिटल इंडिया के जरिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलना, ये सभी विकसित भारत की पदचाप हैं जिसे हम सुन रहे हैं, है ना? तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि असंख्य बलिदान, त्याग, संघर्ष और समर्पण से हासिल आज़ादी का जो युवा पंछी है वो अपनी आंखों में 2047 के विकसित भारत का स्वप्न लिए उन्मुक्त उड़ान भर रहा है, जो जल्द ही अपनी मंजिल को पाने वाला है।

दोस्तों, लक्ष्य फिल्म से आप शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और कुणाल गांजेवाला और विजय प्रकाश की आवाज़ में सुन रहे थे इस वीरता और शौर्य से भरे गीत को। और हमारा जो प्रश्न आज का है वो भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है जो बचपन की यादों को लिए हुए है, कि स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो आपको आज भी आती है, गुदगुदाती है। आपको बताना है हमें fmgoldgia@gmail.com पर। हमारे पास संदेश है हमारे साथियों का, जिसमें डी राजेश्वर राव ने लिख के भेजा है कि जब वो इंडिपेंडेंस का समय होता था बचपन के समय में, तो वो ड्रेसअप होते थे और बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर प्रभात फेरी के लिए जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे अपने झंडे के साथ इसे फहराते हुए आगे बढ़ते हुए। जी, बहुत सुंदर सी बात आपने कही, और ऐसी बातें लिखकर आप हमें हमारा बचपन भी याद दिला रहे हैं। और ऐसी ही यादों को साझा करते हुए सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी भी हमारे साथ हैं, जिन्हें ये दौर बहुत अच्छा लगता है और उन्हें याद है कि बचपन में वो बूंदी के लड्डू खाया करते थे, झंडे फहराने जाते थे, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते थे और राष्ट्रगीत गाया करते थे। बहुत खूबसूरत बात। और एक और सुंदर सा संदेश साझा किया है, ये हैं हमारे उग्रसेन यादव जी, जिन्होंने कहा है कि इस दौरान जब स्वतंत्रता दिवस होता था तो बचपन में खुद अपने हाथ से पेंट करके तिरंगे बनाते थे और एक बांस की लंबी डंडी उसमें लगाकर स्कूल जाते, और स्कूल से गांव-गांव उसे लेकर वो एक कतार में घूमते थे सारे बच्चे और गाना गाते हुए जाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बचपन तो ये जो एहसास है वो एहसास ही बहुत खूबसूरत सा एहसास है, और ये खूबसूरत से एहसास से हम सभी जुड़े रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे ही खूबसूरत एहसास ही बनाते हैं हमारी खूबी को। तो दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है, उसकी खूबी ज़रूर होती है। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी अपनी खूबी क्या है, यानी कि आपकी यूएसपी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाई, बिजनेस की दुनिया में यूएसपी शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी प्रोडक्ट को खास बनाती है, लेकिन जिंदगी में जब हम इसी यूएसपी की बात करते हैं तो ये आपके गुणों की बात करते हैं, कि आपका ऐसा कौन सा गुण है जो आपको खास बनाता है। सोचिए जरा भाई, किसी की यूएसपी उसकी आवाज़ हो सकती है, किसी की उसकी अपनी मुस्कान, किसी की अपनी मेहनत, किसी का अपना ज्ञान, किसी के सोचने का ढंग अलग हो सकता है, किसी की अपनी ईमानदारी और साफगोई हो सकती है उसकी यूएसपी, है ना? तो डिग्री और करियर की पहचान के साथ गुणों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी विशेषता को बरकरार रखने के लिए। तो कौशल, नवाचार और व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी खूबियाँ हमें दी जा रही हैं, ताकि हम सीखें अपने गुणों को और पहचाने। तो दोस्तों, हम सब में कुछ ऐसा है जो हमें भीड़ से अलग बनाता है, तो आपको पहचानना है और निखारना है अपने आप को और ढूंढना है कि ऐसा क्या है खास आपका जो आपको अलग बनाता है, और भगवान ने उस खूबी को आपको दिया है सबसे अलग रहने के लिए।

0: लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़ में गाइड फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों। और इन खूबसूरत बातों और संकल्पों के साथ आज के कार्यक्रम का होता है यहीं विराम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अनुमति दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा बोस को। नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
2: घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Home Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and answer any questions raised by the members in the parliament. Speaking to reporters at the parliament premises today, Mr. Shah said that the government has nothing to hide and is ready for discussion. The Union Home Minister said the opposition may submit the notice to the Speaker by 2 p.m. for holding a discussion on the issue so that the debate can start at 3 p.m. today.
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे।
4: Please submit that letter to the speaker by 3 p.m. today. From 3 p.m. today until 3 p.m. tomorrow, we are ready for a discussion on all matters. I will remain present in the house, listen to everyone, and

0: ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ इस कार्यक्रम में आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं कि हम हर रोज़ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक नई चुनिंदा फिल्म। और आज इसी कड़ी में लेकर आए हैं हम आपके लिए साल 1996 में बनी एक ऐसी फिल्म जिसकी गूंज आज पूरे 30 साल बाद भी उतनी ही साफ सुनाई देती है जितनी तब सुनाई देती थी। और इस फिल्म के गीत आज भी हमारी रूह को ऐसे ही छू जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसने पंजाब के दर्द को बड़े पर्दे पर उतारा, वो भी बिना किसी मिर्च मसाले को लगाए, और हमारे सीधे दिलों से जोड़ दिया इस फिल्म को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की उस मास्टरपीस फिल्म के बारे में जिसका नाम जब भी हमारे मन में आता है तो खुद ब खुद हम पंजाब की उन ठंडी रातों, सरसों के खेतों में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस फिल्म के बनने के पीछे बहुत सारे दिलचस्प और मज़ेदार किस्से हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो जो फिल्म है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, वो फिल्म है साल 1996 में आई गुलजार साहब की फिल्म माचिस, जिस फिल्म से बहुत से नए कलाकारों ने, बहुत से नए किरदारों ने इस फिल्मी दुनिया में, फिल्मी नगरी में पदार्पण किया, वो सब भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म माचिस से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म माचिस के बारे में। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में पंजाब के एक शांत से गांव में रहने वाले दो पक्के दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है। एक दोस्त है कृपाल सिंह पाली और जसवंत, इन दोनों से शुरू होती है फिल्म की कहानी। पाली, जिसका जो किरदार है वो निभाया है नवोदित अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने, और दोस्तों इस फिल्म में उन दोनों की दोस्ती को बहुत गहरा दिखाया गया। वहीं जसवंत की बहन वीरा यानी कि तब्बू से प्यार करता है कृपाल। दोनों का जो जीवन है वो बहुत ही आराम से खुशहाल चल रहा होता है, लेकिन मोड़ आता है जब अचानक से गांव में आती है पुलिस और एक बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या के शक में जसवंत को बेकसूर होते हुए भी पुलिस उठा कर ले जाती है, जहाँ पर जसवंत पर अत्याचार होते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको अधमरा करके घर के बाहर डाल जाते हैं। तो इस बात से नाराज़ पाली का इंसाफ से भरोसा उठ जाता है और वो अपनी राह से हटक जाता है। और फिर किस तरह से उनकी ज़िंदगी में जो तरह अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव आते हैं वही दिखाया गया है इस फिल्म में। पाली इस फिल्म में उस पुलिस ऑफिसर को मारकर अपना बदला लेता है जिसने उसके दोस्त को बेकसूर होते हुए भी सजा दी और बाद में उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जेल के बाहर जब वो आता है तो वीरा ये दुख सहन नहीं कर पाती है और जहर खाकर अपनी जान दे देती है। और जब पाली को जब फांसी की सजा दी जाती है उस वक्त वीरा भी अपनी आखिरी सांसें लेती है। तो बता, आप कह सकते हैं कि फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से जो पुलिस की बर्बरता या व्यवस्था की जो नाकामी थी वो किस तरह से सीधे सीधे आम इंसान को, नौजवानों को अपराध की राह पर डाल रही थी, ऐसा कुछ दिखाया इस फिल्म में। और ये फिल्म उस वक्त इतना ज़्यादा हिट हुई थी कि इस फिल्म के गीत भी एक के बाद एक सुपर डुपर हिट हुई थे और ये फिल्म वो फिल्म थी जिसने ढेर सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। बाकी की जानकारियाँ, बाकी के किस्से करेंगे इस गीत के बाद।

जी दोस्तों, अगर फिल्म माचिस की बात हो और इसमें हम तबू के बारे में बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तबू जिन्होंने इस फिल्म माचिस में निभाया था वीरा का किरदार, और इस रोल के लिए गुलजार साहब जब कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे उस वक्त उनके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी हीरोइनों के ख्याल थे। मतलब वो चाहते थे कि इस फिल्म के लिए या तो वो मनीषा कोइराला को लें या करिश्मा कपूर को साइन करें, लेकिन तभी उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार तब्बू की फिल्में देखें, और तब गुलजार साहब ने तब्बू की कुछ पुरानी फिल्में देखी और उन फिल्मों में जब उन्होंने उनकी आँखों की गहराइयों को देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई मुझे मेरे फिल्म के लिए वीरा मिल गई है। क्योंकि वीरा का जो शांत सहमा हुआ लेकिन अंदर से मजबूत किरदार था वो सिर्फ और सिर्फ तब्बू निभा सकती थी। और एक और बात ये कि इस फिल्म माचिस में तब्बू ने बिल्कुल ग्लैम अप यानी कि नो मेकअप वाला किरदार उन्होंने निभाया है। बिना किसी मेकअप के उन्होंने उस पूरी फिल्म में आकर के ये साबित कर दिया कि असली अदाकारी सादगी में ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे खूबसूरत और जो टैलेंटेड जो कलाकार हैं उन लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भाई इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत रोल निभाते रहें।

माचिस की अगर बात हो तो जो एक और अहम किरदार है वो है पाली यानी कि कृपाल सिंह का, और वो किरदार निभाया चंद्रचूड़ सिंह ने। जो चंद्रचूड़ सिंह है उनके इस किरदार को निभाने के लिए बहुत से कलाकारों के ऑडिशन लिए गए, लेकिन गुलजार साहब को वो चेहरा मिल ही नहीं रहा था जो उनको चाहिए था। और एक दिन गुलजार साहब को एक ऐसा चेहरा मिला ऑडिशन के लिए, जब चंद्रचूड़ सिंह वहाँ पहुँचे तो उनकी आँखों को देखकर तुरंत गुलजार साहब ने कहा कि भाई मुझे मेरा पाली मिल गया। और इस फिल्म के लिए चंद्रचूड़ सिंह को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। और आपको बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने दो तरह के किरदार निभाए, मतलब अगर हम देखें तो फिल्म की जो शुरुआती दौर है उसमें चंद्रचूड़ सिंह एक अलग तरीके से नज़र आए हैं, और सेकंड हाफ में चंद्रचूड़ सिंह का जो लुक है वो पूरी तरह से बदल गया, जिसमें वो बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, आँखों में बेबसी लिए हुए अपने दोस्त के लिए का बदला लेने के लिए घूम रहे हैं। और आपको मालूम है जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी हिमाचल में एक लोकेशन पे, तो चंद्रचूड़ सिंह अपने माचिस वाले लुक, पुराने फटे कपड़ों में घूम रहे थे और वहाँ के लोग उन्हें सचमुच में कोई भटका हुआ लड़का या कोई साधु और फकीर समझ रहे थे। यहाँ तक कि जो फिल्म के सेट पर जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने भी चंद्रचूड़ सिंह को अंदर आने से रोक दिया, उन्हें नहीं पहचान पाए थे वो। इस तरह की एक्टिंग, इस तरह से अपने किरदार में खो जाना चंद्रचूड़ सिंह ही कर सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी अब आपको सुनवाने वाले हैं इस फिल्म का वो गीत जो कि हर किसी की ज़बान पर था और आज भी हर कोई इस गीत को गुनगुनाता है। जी हाँ दोस्तों, वो गीत है चप्पा चप्पा चरखा चले। अगर ये गाना जितना, मतलब कहीं ना कि एक धमाकेदार मस्ती से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसको शूट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस गीत को शूट किया गया था मनाली की बर्फीली रातों में, वो भी 0 डिग्री से भी नीचे के टेम्परेचर में इस गीत को शूट किया गया था। और उस वक्त इतना ज़्यादा ठंडा था कि जो इस फिल्म के एक्टर चंद्रचूड़ सिंह, जिमी शेरगिल और जो रवि गोसाई वगैरह उस वक्त थे इस गाने में, उनको बोलते वक्त भी दिक्कत हो रही थी और उनके मुंह से उस वक्त भाप निकल रही थी। गुलजार साहब ने इसे छिपाने की बजाय उसे बिल्कुल सीन का ऐसे ही हिस्सा बनाया, ताकि उससे फिल्म में असली पहाड़ी रात का जो माहौल है वो पूरी तरह से उभर कर आए। तो लीजिए सुनते हैं वही खूबसूरत सा गीत हरिहरन सुरेश वाडकर और के की आवाज़ में।

जी दोस्तों, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये वही गीत है जिस फिल्म से विशाल भारद्वाज, जो इस फिल्म के संगीतकार हैं, उनके करियर में नई ऊंचाइयां मिली, नया मोड़ आया। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों विशाल भारद्वाज उस वक्त नए नए संगीतकार थे और वो लता जी के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन जब लता जी ने इस गाने की रिकॉर्डिंग की तो गुलजार साहब की लाइनों और विशाल साहब के संगीत को सुनकर स्टूडियो में मौजूद हर इंसान की आंखों में पानी आ गया था। वैसे आपको बताएं कि ये जो गीत अभी आपने सुना, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये गीत को लिखा गुलजार साहब ने, और जब विशाल साहब ने इस संगीत दिया इस गीत में, तो गुलजार साहब ने कहा कि भाई वाह, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि तुमने मेरे जो शब्द थे उन्हें एक संगीत दिया है, उन्हें आज तुमने अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर गले लगाया विशाल भारद्वाज को। और यही वो फिल्म है जिस फिल्म से चंद्रचूड़ सिंह, जिमी शेरगिल, विशाल भारद्वाज, के जैसे जो नए अपने करियर को शुरू करने वाले व्यक्तित्व थे, जो कि आज हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान रखते हैं, उन सब की शुरुआत इसी फिल्म से हुई। जी हाँ दोस्तों, जिमी शेरगिल की भी शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी और वो आज एक पहचाना हुआ ऊंचा नाम है। और उनको भी इस फिल्म में गुलजार साहब ने उनकी आंखों की मासूमियत को देखकर ही चुना था। जी दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े हुए तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वक्त की कमी है और हमारे पास संदेशों का भी भंडार है, तो हम पहले शामिल कर लेते हैं अपनी फिल्म, अपने जो दोस्तों के संदेश हम तक पहुंचे हुए हैं उन संदेशों को शामिल करते हैं। और जो हमारे पास में ये संदेश आए हुए हैं दोस्तों, ये जो संदेश है इसको भेजने वाले हैं हमारे पास, ये संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं संदीप मक्कर जी, और इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया ज्योति मन्नत भारत के साथ कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। अगला संदेश हम तक आया है उसको भेजने वाले मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। श्री सुधाकर, राजे जाधव, देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, हर्षदा हमारे साथ जुड़े हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी टिवानशी खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं फजिलका पंजाब से, और पूरा जो खेड़ा परिवार है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगला संदेश आया है हम तक दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी का, कोरमा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत जानकारी के लिए। सुदर्शन मुखी अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंजल सोनू और तमन्ना भाटिया के साथ, और इन्होंने संदेश भेजा है हम तक स्टेशन रोड जमशेदपुर से। अगला संदेश हम तक आया इसको भेजने वाले हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, ननी पोती अविंका, तनुश्री गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पीरा बाजार झुमरी तलैया से जुड़े हुए हैं अभय कुमार, प्रियंका मुन्नी, जयप्रकाश।

जिया दुसी आयुषी अनिरुद्ध बाबू जी के साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश आया और उसको भेजने वाले हैं अजित भावसर जी, और इन्होंने संदेश प्रमिला भावसर जी के साथ वीरगाम गुजरात से भेजा है। और लिखते हैं, इस गाने की जो शूटिंग हुई थी वो पंजाब में हुई थी, जिला संगरूर में हुआ था ये गीत चप्पा चप्पा चरखा चले जी। और जो उन्होंने बहुत खूबसूरत सी और जानकारियाँ हम तक पहुँचाई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े पाठगढ़ मुल्तानी डांडा से, उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक जी के साथ में, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देव शंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय देव, तुषार देव, डॉली पे भी, पूजा तामुरिया के साथ। और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश हम तक आया है इसको पहुंचाने वाले हैं तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आली, आयान बाबू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय साहू पोटियाकला जी पोटियाकला दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश भेजा डी बी राणा जी ने नेहरू विहार दिल्ली से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से, विनोद खड़ से जुड़े हैं हमारे साथ, जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ। और दोस्तों अगला संदेश हम तक भेजा है देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल और मुरली क्षत्रिय ने। इसके अलावा अगला संदेश अनिल मोहन जी का पीटीआई संसद मार्ग से हमारे पास आया है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मुझे दीजिए अनुमति, तो जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार और 3:00 मैटनी मेलोडीज़ के साथ में आपके सामने हाजिर होंगी आप सभी की पसंदीदा अंजू पांडे जी। तो तब तक मुझे दीजिए अनुमति और एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें दिस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार विद्यार्थी मुद्दयां समेत किसी भी मुद्दे ते चर्चा करने लई पूरी तरह तैयार है। संसद दे दोवां सदनां दी कार्रवाई विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा वंदे मातरम दी भावना ने भारत दे आजादी संग्राम नूं प्रेरित कीता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा जारी की। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी अज बंगलादेश रेलवे लई 19 LHP ब्रॉडगेज मुसाफिर डब्बियां की पहली खेप रवाना कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक पिकअप वाहन के डूंगी खड्ड में डिगन कारण 4 लोगों की मौत, 9 जख्मी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थी मुद्दों समेत किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने लिए पूरी तरह तैयार है ते संसद च मैंबरां वल्लों उठाए गए सारे सवालों के जवाब देगी। संसद कॉम्पलैक्स विच पत्रकारां नाल गल्लबात करदे अमित शाह ने कहा कि सरकार को लुकाउण लई कुछ नहीं है ते ओह चर्चा लई तैयार है।

0: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: अमित शाह ने कहा कि संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पहला ही स्पष्ट कर चुके ने कि सरकार नीट प्रीख्या नूं लैके विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों नाल संबंधित सारे पहलुआं ते चर्चा करने लई तैयार है। उन्होंने कहा कि अजिहे गंभीर मुद्दे ते संसदीय प्रक्रियावां मुताबक चर्चा की जानी चाहीदी है। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि विरोधी धिर सदन नूं काम नहीं करन दे रही। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वख-वख मुद्दों ते विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिती गई। अज सवेरे जदों लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, पर विरोधी धिर के मैंबरां ने नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों दौरान कथित पुलिस कार्रवाई ते अयोध्या राम मंदिर नूं दान च कथित बेनियमियां दा मुद्दा चुकिया। श्री बिरला ने विरोधी धिर के मैंबरां नूं सदन नूं काम करन देण दी इजाजत दी अपील की। उन्होंने कहा कि भावें नीतियां ते विचारां दे मतभेद हो सकते ने पर देश दे लोक चाहुंदे ने कि संसद सुचारू ढंग नाल चले। लगातार हंगामे कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस तों पहलां लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है ते देश दे नौजवान सिक्ख्या विज्ञान पुलाड़ तकनालोजी ते उद्यमता समेत कई खेतरां च अपनी पछाण बना रहे ने।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान टेक्नोलॉजी उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो।
1: उधर राज्यसभा विच भी इसे तरह का माहौल देखने को मिला। जदों सवेरे सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तां मंत्रियों ने आपो अपने मंत्रालय के दस्तावेज मेज ते रखे। रक्षा वित्त आवाजाई सैर सपाटा ते सभ्याचार खेतीबाड़ी पशु पालन ते फूड प्रोसैसिंग कोला खान ते स्टील बारे संसदीय स्थाई कमेटियां दी रिपोर्टां भी पेश कीतियां गईयां। राज्यसभा के सभापति सीबी राधा कृष्णन ने विरोधी धिर के हंगामे विचकार सिफर काल शुरू किया। हंगामे दरमियान सभापति ने सदन नूं दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिता। उपराष्ट्रपति सीबी राधा कृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के आजादी संग्राम नूं प्रेरित किया ते देश की पछाण नूं मजबूत करना जारी रखे। उन्होंने यह गल सभ्याचार मंत्रालय वालों राष्ट्रीय गीत की 150वीं परिघंड मनाने लिए आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली च भागीदारां नूं संबोधन करदिआं कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देश भगती की भावना नूं जगाया। वीर सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्गे आजादी घुलाटियां दे बलिदान नूं याद करदिआं उन्होंने कहा कि उन्होंने हिम्मत ने वंदे मातरम की भावना नूं जगाई रखी है। इस मौके केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू डॉ जितेंद्र सिंह ते होर मंत्री भी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा मुहिम तहत देश भर च कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा मामले के खेड मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज सवेरे मेजर ध्यान चंद स्टेडियम तो हर घर तिरंगा साइकिल रैली नूं रवाना किया। उधर जम्मू कश्मीर च अज श्रीनगर की मशहूर डल झील के कंडे ते एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च एक समारोह दौरान साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वजीवनी भारतीय गणराज की जित मेरी जिंदगी मेरा संघर्ष जारी की थी। इस मौके श्री मोदी ने कहा कि वह साबका राष्ट्रपति कोविंद के जीवन के तजर्बों ते योग्यतावां ते भरोसा रखते ने ते स्वजीवनी भारतीय लोकतंत्र ते समाज लिए कीमती खजाना होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री कोविंद के जीवन ते समाज ते राष्ट्र लिए उन्होंने योगदान बारे बहुत कुछ विस्तार च कहा जा सकता है। उन्होंने लोगों ते खासकर नौजवानों नूं पूरा लाभ उठाने लिए किताब नूं खुद पढ़ने लिए उत्साहित किया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: यह स्वजीवनी साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक बहुत ही निजी वृतांत पेश करती है, जिस विच उन्होंने तजर्बे संघर्ष की प्राप्तियां उन्होंने शुरुआती जीवन तो लैके शानदार जनतक जीवन ते अखीर च भारत के 14वें राष्ट्रपति वजो उन्होंने सेवा का वर्णन किया गया। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी अज बंगलादेश रेलवे लिए 19 LHP ब्रॉड

पैकेज मुसाफर डब्बिया की पहली खेप रवाना कर रही है। इस रैक विच 3 एसी स्लीपर कार, 3 एसी चेयर कार, 11 नॉन एसी चेयर कार, 2 पावर कार शामिल ने। इन्हां कोच विच कई विलखण डिजाइन विशेषतावां ते सोच शामिल है। इन्हां विचों बहुत सारे पहली बार इस किस्म दे कोच विकसित कीते गए ने। अधिकारित स्रोतां दा हवाला दिंदे होए साडे पत्रकार ने दस्सिया कि इन्हां कोच नूं बंगलादेश रेलवे दीआं संचालन ते मुसाफर जरूरतां नूं पूरा करन लई विशेष तौर ते डिजाइन कीता गया। इस विच बैठण दी व्यवस्था विच स्टेनलैस स्टील दे आर्म रैसट अते स्टेनलैस स्टील फुट प्रेस के नाल विशेष तौर पर डिजाइन कीतियां कुर्सियां शामिल ने। उन्हां कोल एक एकीकृत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, एक मुसाफर अलार्म सिस्टम, एक बेबी केयर रूम ते एक होर रूम भी शामिल है। आरसीएफ कपूरथला ते बंगलादेश रेलवे दरमियान इस सहयोग की शुरूआत साल 2015-16 दौरान 120 एलएचपी ब्रॉडगेज यात्री कोच की सफल सप्लाई नाल हुई सी। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा सैमरीगैलियो ने ब्रिटेन च रहिंदे पंजाबियां दीआं वख-वख चिंतावां ते चर्चा कीती, जिस विच उन्हां दे हितां नूं प्रभावित करन वाले मुद्दे भी शामिल ने। सैमरीगैलियो ते पंजाब दे एनआरआई मामलियां बारे मंत्री डॉ रवजोत सिंह दोवां ने कल चंडीगढ़ विखे अपनी मुलाकात दौरान पंजाबी प्रवासी भाईचारे नाल संबंधित मामलियां ते आपसी संचार ते सहयोग नूं होर मजबूत करन दी लोड़ ते जोर दित्ता। डिप्टी हाई कमिश्नर ने नौजवानों नूं वीजा धोखाधड़ी ते ब्रिटेन च सुरक्षित अते कानूनी गतिशीलता बारे जागरूक करने लई लुधियाणा दे इक पिंड दा दौरा भी कीता। बाद विच अपने अधिकारित सोशल मीडिया अकाउंट ते उन्हां कहा कि उन्हां लोकां नाल सीधे जुड़न ते तजर्बे सुनन दा इक वधिया मौका मिलिया। उन्हां कहा कि सही जानकारी तक पहुंच लोकां नूं वीजा धोखाधड़ी ते असुरक्षित प्रवास रूटां तों बचाउण दे सब तों वधिया तरीकियां विचों इक है। हरियाणा गुणवत्ता प्रोसगी अथार्टी दे चेयरमैन समीर पाल सरो ने नवी दिल्ली च भारतीय गुणवत्ता कौंसल दे मुख दफ्तर विखे सीनियर अधिकारियों नाल इक मीटिंग कीती। श्री सरो ने दस्या कि मीटिंग च हरियाणा विच गुणवत्ता प्रोसगी प्रणाली नूं होर मजबूत करन अते होर कई मुद्दयां ते चर्चा कीती गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में श्री रेणुकाजी विधानसभा हल्के के गैटरॉक नेड़े एक पिकअप वाहन डूंगी खड्ड में डिग गया। हादसे च 4 लोगों की मौत हो गई ते 9 जख्मी हुए ने। जख्मियों में 2 की हालत गंभीर दसी जा रही है। सारे इलाज के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने अमरीका विच आयोजित एक ग्रैंड शतरंज टूर इवेंट सिंक फील्ड कप के दूजे दौर विच जावोखीर सिंदारोव नूं हरा के अपनी पहली जित दर्ज कीती है। इस जित नाल प्रज्ञानानंदा ने हुण 2 मैचां तों 1.5 अंक हासिल कीते ने। ते आखर च खास खबरां इक बार फिर तों। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार विद्यार्थी मुद्दयां समेत किसी भी मुद्दे ते चर्चा करन लई पूरी तरह तैयार है। संसद दे दोवां सदनां दी कार्रवाई विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दुपहर 2 बजे तक मुलतवी हुई। राष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा वंदे मातरम की भावना ने भारत के आजादी संग्राम नूं प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा जारी की। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी आज बंगलादेश रेलवे लिए 19 एलएचपी ब्रॉडगेज मुसाफर डब्बों की पहली खेप रवाना कर रही है। इस राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हों। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन सुनोगे शाम 6:20। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत सभी मामलात पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दें। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखनांदाजी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर सवाने हयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ गई है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने फ्लाई स्कीमों की खातिर पेट्रोल और डीजल पर यतीम और बेवा सेस नाफिज किया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शदीद बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने से 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। और शतरंज में अमेरिका में सिंक्वीफील्ड कप के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जाबोखीर सिंदारोव को हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सरकार तलबा के मसले और पार्लियामेंट में अराकीन की तरफ से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने और बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है। मरकजी वजीर दाखला ने कहा है कि अपोजिशन बहस के लिए दिन में 2 बजे तक स्पीकर को नोटिस दे सकती है ताकि आज 3 बजे बहस शुरू की जा सके। जनाब अमित शाह ने कहा कि अगर बहस शुरू होती है तो वह ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे और हर मेंबर की बात सुनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहस मुकम्मल होने के बाद वो कल 3 बजे बहस का जवाब देने को तैयार हैं।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: जनाब शाह ने यह भी कहा कि पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पहले ही ये बात वाजे तौर पर कह चुके हैं कि सरकार नीट इम्तहान से मुतालिक तलबा के एहतजाज से वाबस्ता सभी पहलुओं पर बहस के लिए तैयार है। ताहम जनाब शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ऐवान को काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संजीदा मामले पर पार्लियामानी तरीक़ेकार के मुताबिक बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ मामलों पर शोरगुल की वजह से दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में मुबैना गड़बड़ का मामला उठाया। जनाब बिरला ने कहा कि आज मुल्क नौजवानों का बैन अल-अक़वामी दिन मना रहा है और मुल्क के नौजवान भी ये चाहते हैं कि उनसे मुतालिक मामलात पर बहस की जाए।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो।
0: स्पीकर ने अपोजिशन मेंबरों पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट की अजमत और वकार को नुकसान न पहुंचाएं और सवालों का वक्फा चलाने दें, लेकिन अपोजिशन ने अपनी मांग पर जोर देना शुरू कर दिया। अपोजिशन की जानिब से शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जब राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो मुतालिक वजीरों ने अपनी वजारत की दस्तावेजात ऐवान में पेश की। शोरगुल के दौरान चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फा सिफर का आगाज़ किया और इस दौरान सीपीआईएम के मेंबर जॉन ब्रिटास ने ऐवान में एक दूसरे मेंबर की तरफ से उनके खिलाफ मुबैना तौर पर तोहिनामेज़ जुमले इस्तेमाल करने का मामला उठाया। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अराकीन को मशवरा दिया कि वो नहायत मोहतात रहें और अपने 7 मेंबरों के जज्बात को ठेस न पहुंचाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जिसे भी पसंद करते हैं उसकी सवाने हयात पढ़ें और रील्स और सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट से गुरेज करें। उन्होंने विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने की खातिर नौजवानों को खुद को वक्फ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने एक ऐसी नस्ल पर जोर दिया जो मुश्किलों में साबित कदम रहती है और कौमी खुद के किफालत की राह तलाश करने के लिए हिम्मत और हौसला बरकरार रखती है।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा किया। इस सवान-ए-हयात में जनाब कोविंद के गैर मामूली सफर हयात का बग़ौर जायज़ा लिया गया है, जिसमें उनके तजर्बात, जद्दोजहद और उनके इब्तदाई बरसों की उसूलियाबियों से लेकर उनकी सरकर्दा आवामी ज़िंदगी और भारत के 14वें सदर जमहूरिया की हैसियत से उनकी खिदमात का अहाता किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीवी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम के जज्बे ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी को तहरीक दी और आज भी ये कौमी शनाख्त को मुस्तहकम कर रहा है। कौमी गीत के 150 बरस मुकम्मल होने के मौके पर सकाफत की वजारत की जानिब से मुनक़िदा

0: हर घर तिरंगा बाइक रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। नायब सदर ने कहा कि वंदे मातरम के अल्फाज ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाया और नौ आबादियाती निज़ाम हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ खित्तों, ज़बानों, अकायद और पस मंज़र से वाबस्ता अफराद को मुत्तहिद किया।
1: इन तिरंगा यात्रास, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस साल ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के जज्बे को वक्फ है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम 2026 वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के जज्बे को वक्फ है, जिसमें हुब्बुल वतनी, तिरंगे पर फख्र और मादरे वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम का मकसद लोगों की यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराने की हौसला अफजाई करना है। मजमूई तौर पर तिरंगे को फहराया जाना न सिर्फ कौमी परचम से एक जाती रब्त की अलामत है, बल्कि इससे मुल्क की तामीर के हमारे मजमूई अहद का भी इजहार होता है। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना और कौमी परचम के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया है। रियासती सरकार के टैक्सों और आबकारी महकमे ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। ये महसूल यतीमों और बेवाओं की मदद के लिए लगाया गया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज अलसुबह एक चौल में मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से 6 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। ब्रैंड मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC और मुंबई की फायर ब्रिगेड के मुताबिक घाटकोपर के चिराग नगर में गोशिया चौल में सुबह 3:48 पर यह हादसा पेश आया। शतरंज के सिंक्वीफील्ड कप में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव को हरा दिया है। उनकी इस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहली कामयाबी है, जो कि ग्रैंड चेस के उनके दौरे से पहले का मुकाबला है। प्रज्ञानंद शुरू से ही 95 बाजियों के इस मैच में छाए रहे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत सभी मामलों पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दें। मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखनांदाजी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर सवान आयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ गई है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने फ्लाई स्कीमों की खातिर पेट्रोल और डीजल पर यतीम और बेवा सेस नाफिज किया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शदीद बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने से 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी।

0: संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा

0: उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और आप जानते ही हैं ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। कहते हैं वक्त गुजर जाता है, फिल्में पुरानी हो जाती हैं, सितारे पर्दे से दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी तारीख की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हम जिस सितारे को लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं जिनके आंखों के सामने पूरा एक दौर लौट आता है। आज की जो महफिल सजेगी वो इसी खूबसूरत सितारे के साथ सजेगी और ये हैं हमारी भारतीय सिनेमा की एक खूबसूरत सी अभिनेत्री। वो कौन है ये तो आप गीत सुनने के बाद अंदाज़ा लगा ही लेंगे हमेशा की तरह। और जब आप अंदाज़ा लगा ही लेते हैं तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ना है अपने संदेशों के जरिए। संदेश भेजने का जो माध्यम है वो है मेल, और मेल आईडी है IP Radio Delhi @ www.hargharatiranga.com। तो ये है वो रास्ता जिसके जरिए आप इस महफिल में अपनी तरफ से भी चार चांद लगा सकते हैं। फिलहाल सुनिए ये खूबसूरत सा गीत और बताइए हमें कि आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं।

आपके संदेश हमें बता रहे हैं कि आपने सितारे को पहचान लिया है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जिनकी आंखों में मासूमियत थी, मुस्कान में सादगी थी और अभिनय में एक खास सहजता थी, और ये अभिनेत्री थी अनीता राज। 80 के दशक की फिल्मों में अनीता राज का नाम दर्शकों के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं था। 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, उनके फिल्मी सफर की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी और इस फिल्म ने उन्हें एक यादगार पहचान दे दी थी। उनके सफर की शुरुआत भी उसी गीत की तरह थी जो एक खूबसूरत सुगंध बनकर हमेशा महकती रही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कलाकार के करियर की शुरुआत ही ऐसी होती है कि वो आने वाले सफर की दिशा तय कर देती है, और अनीता राज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुनते हैं उन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म गुलामी से ये गीत, जो बहुत सुपर डुपर हिट रहा।

दिग्गज अभिनेता जगदीश राज की बेटी अनिता ने 1991 में फिल्म प्रेम गीत से कदम रखा। धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और ऋषि कपूर, अनिता ने उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ सुपरहिट जोड़ी बनाई। एक से एक गीत इनके ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं और ये एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं है बल्कि आज के दौर में वो फिटनेस की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी बन चुकी हैं। 60 की उम्र पार करने के बाद भी उनका जो वर्कआउट रूटीन है वो देखकर लगता है कि ये 25 साल की एक युवा है। वो खूबसूरती, वो चमक और वही फिटनेस आज भी उन्होंने बरकरार रखी है। तो एक और खूबसूरत सा गीत जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था आप सबको सुनवाती हूँ।

फिल्म नौकर बीबी का ये गीत जो आप सुन रहे हैं ये हमने इसी फिल्म से लिया है, जिसमें धर्मेंद्र, रीना रॉय, राज बब्बर और अनीता राज जैसे कलाकारों ने एक खूबसूरत सा अभिनय किया था। और ये फिल्म अपने हास्य और मनोरंजक अंदाज के लिए जानी जाती है। अनीता राज, जिन्होंने एक से एक सुपरस्टार के साथ काम किया, और इसके बाद 1983 में इनकी एक और फिल्म आई थी, नाम था जरा सी जिंदगी, जिसमें उन्होंने कमल हसन के साथ काम किया था। और ये फिल्म दक्षिण भारतीय निर्देशक के बालाचंद्र की हिंदी फिल्मों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी भी थी। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद हम चंद लाइन इनके लिए यही कहेंगे कि फिल्मी दुनिया में हर कलाकार के सफ़र में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो उनके करियर को एक नया मोड़ दे देती हैं। अनीता राज के लिए भी 1985 की फिल्म गुलामी एक ऐसी ही फिल्मों में से एक है। जेपी दत्ता की इस फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, रीना रॉय और अनीता राज जैसे शानदार कलाकार थे। दर्द जब आवाज़ बन जाए तो गीत जन्म लेता है, और जब गीत में एहसास उतर जाए तो वो वर्षों बाद भी दिल में जिंदा रहता है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, और इस प्रोग्राम में चार चांद भी नहीं लगते अगर आपके संदेश शामिल नहीं होंगे। अब वक्त है कि उन संदेशों को हम शामिल कर लें। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा से। अगला संदेश है तेलंगाना निजामाबाद से शिकल्ला बख्श बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना जी का है। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह दलजीत राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार हैं। संबलपुर काकेड़ से फागुन राम ज्योति ओजस्वी हैं। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिंचू टोमस पिंकी लवली जुड़े हुए हैं। ये संदेश अजीत भापसर जी का आया हुआ है और उन्होंने हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी हमसे शेयर की है। वीरंगाव गुजरात से ये प्रमिला जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तुलसी मस्किन जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इश्क मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से तुलसी जी का एक और संदेश है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद जैद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। अगला संदेश ताज मोहम्मद जी का है। ये आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़े हैं। प्रकाश वर्मा जी प्रिंस के साथ छत्तीसगढ़ पराली से जुड़े हुए। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ जालंधर से हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखिया नीता जी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और अगला जो संदेश आया है हमारे पास ये किसका है देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे संदेश आपके रिपीट भी हो रहे हैं। इंद्रभान सिंह हमारे साथ चिरमिरिया कुलारसी कालरी से कुरासिया कालरी से अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी के साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरिया जी देव तुषार जी ये डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। पंकज शर्मा जी का हमारे पास संदेश आया है। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जगह का नाम स्पष्ट नहीं है। अगला जो संदेश है वो पहुंचा है हमारे पास गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंगील दलजीत जी का। रोजी डी कास्टा ये जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से विनोद खड़से जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

जी दोस्तों, अनीता राज के फिल्मी सफर में एक से एक यादगार पड़ाव आए। अब याद कीजिए उस खूबसूरत सी हीरोइन को, बड़ी बड़ी आंखें, सादगी से भरा चेहरा और पर्दे पर सहज भावनाएं, यही उनकी खूबसूरती थी। वो सिर्फ एक ग्लैमर का चेहरा बनकर नहीं आई, बल्कि अलग अलग तरह की भूमिकाओं में भी नजर आई। चेहरे

बदलते रहे, दौर बदलते रहे, मगर यादों के रंग कहाँ बदलते हैं। एक गीत बजता है तो अचानक बीते हुए पल फिर से मुस्करा देते हैं। तो बस यही थी आज हमारी संगीतमय यात्रा, जिसमें हमारे सितारा थी अनीता राज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन अभी कहीं आपको जाना नहीं है, क्योंकि 3 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे खूबसूरत सा प्रोग्राम, नाम है मैचिनी मेलोडीज़। फ़िलहाल इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको इस प्रोग्राम में यहीं छोड़े जा रही हूँ।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आइए अब आनंद लेते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। ये प्रोग्राम जिसमें हम आपको उस सुनहरे दौर में ले जाते हैं, तो आज भी उसी सुनहरे दौर में ले जाएंगे। वो दौर कौन सा था? वो दौर था 1950 और 1960 का। कहते हैं ना कि कुछ गीत पुराने होकर भी पुराने नहीं होते, कुछ चेहरे पर्दे से उतर कर भी दिल से नहीं उतरते, और कुछ फिल्में उस फिल्में वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी यादों में हमेशा नई बनी रहती हैं। तो आज हम लौटेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर में जिसे भारतीय फिल्म संगीत और सिनेमा का सुनहरा दौर कहा जाता है, 1950 और 1960 का दशक। वो समय जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनमें समाज था, रिश्ते थे, संघर्ष था, प्रेम था और जिंदगी की सच्चाई थी। तो आइए यादों की इस फिल्मी पोटली को खोलते हैं और सुनते हैं पहला गीत। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अब इस सफर में एक बार दोबारा आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप भी मेरे साथ इस सफर के हम सफर बन सकते हैं। मेल भेजने का जो पता है वो है ipradiodelhi@gmail.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

50 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए बदलाव का समय था। देश नया नया आजाद हुआ था और फिल्मों में भी नए भारत की तस्वीर दिखाई देने लगी थी। गरीब और आम आदमी की जिंदगी, सामाजिक असमानता, सपने और संघर्ष, ये सब कहानियों का हिस्सा बनने लगे थे। और इसी दौर में आई कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से।

हिंदी सिनेमा के 50 और 60 के दशक की बात जब भी हम करते हैं तो लगता है जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां हर गीत में एक कहानी थी, हर धुन में एक एहसास था और हर फिल्म की जिंदगी की कोई ना कोई उस फिल्म में सच्चाई छिपी हुई थी। वो दौर जब रेडियो पर बजता कोई गीत घर घर की पहचान बन जाता था, जब गीतकार के शब्द दिल की आवाज़ बनते थे, संगीतकार की धुनें यादों का हिस्सा बनती थी और गायक गायिकाओं की आवाज़ सीधे दिल तक पहुंचती थी।

0: 50 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव और प्रयोग का दौर था। देश आजाद हो चुका था और फिल्मों में भी नए भारत की तस्वीर दिखाई देने लगी थी। आम आदमी के सपने, संघर्ष, गरीबी, प्रेम, रिश्ते और सामाजिक बदलाव, इन सबको फिल्मों ने अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे सितारे इस दौर के बड़े नाम बनकर उभरे। राज कपूर की फिल्मों में आम आदमी की मासूमियत और संघर्ष दिखाई देता था, वहीं दिलीप कुमार ने अभिनय को एक नई गहराई दी तो देव आनंद साहब की जो रोमांटिक और चुलबुली अदाएं थी उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। और इन सब के बीच जो संगीत था, जो उस दौर का संगीत था, वो उस दौर के जो उसका जो दौर था वो उस दौर की आत्मा थी।
1: ये रातें, ये मौसम।

मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गंगलानी, जगमोहन प्रजापति और किरण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। दिग्दर्शन गौर जी मेरठ केंट से कविता गौर के साथ प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। अगला संदेश तुलसी मस्कीन जी का है, जो कि गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से बीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशो जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भापसर जी लिख रहे हैं कि पहला गीत जो पतिता फिल्म से सुनाया वो बहुत अच्छा लगा और बाकी के गीत भी बहुत मधुर लग रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमिला भापसर जी के साथ बिरन गाँव गुजरात से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्यों का है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी खूबसूरत गीत हैं हमारे पिटारे में। फिलहाल एक और खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

60 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए रंगों, रोमांस और मधुर संगीत का दौर था। फिल्मों में तकनीकी बदलाव आने लगे, रंगीन फिल्मों का आकर्षण बढ़ा और पर्दे पर नायक नायिकाओं की नई पीढ़ी दिखाई देने लगी। शम्मी कपूर की उछलती कूदती ऊर्जा, राजेंद्र कुमार का रोमांटिक अंदाज, धर्मेंद्र की दमदार मौजूदगी, साधना की खूबसूरती, वहीदा रहमान की गरिमा और आशा पारेख की चंचलता, इन सब ने 60 के दशक को खास बना दिया। तो 50 और 60 का जो दशक था वो अपने अपने हिसाब से एक अलग ही बुलंदी और एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था।

संदेश आया है, मैचिनी मेलोडीज प्रोग्राम में आपके सभी गीत लाजवाब हैं। 50 के दशक के बहुत मीठे गीत और साइलेंट संगीत, नींद आ जाए ऐसे मधुर गीत हैं जी। लेकिन सोइए मत, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे हैं आपके इस मनपसंद इंद्रप्रस्थ चैनल पर। लिखते हैं बीरनगान गुजरात से अजीत भाव साहब, प्रमीला जी और तुलसी मस्किन जी लिख रहे हैं कि मैचिनी मेलोडीज में पेशकश सुपर लवली सॉन्ग से, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बबलेश पवार जी लिख रहे हैं कि आपके लिए कुछ लाइन है, हवा में घुलती है मिस्री जब वो सुर सजाती हैं, जो पांडी की आवाज़ हर दिल को छू जाती है। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तारीफ़ करने के लिए। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लाइनें आपने लिखी हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। जसवीर जी हमारे साथ डाकघर निमनाबाद ज़िला जींद हरियाणा से, जतिंदर कौर गुरप्रीत लवप्रीत के साथ जुड़े हुए हैं। और ये संदेश जो हमारे पास आया असलम खान जी का आया है, गांव नगली राजू बिजनौर, असलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और यही कहेंगे कि आज हमने याद किया 50 और 60 के दशक के उस सुनहरे फिल्मी सफ़र को, जहां सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं चलता था, लोगों के दिलों में बसता था। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए सफ़र के साथ। अब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन हाजिर हूँ मैं प्रोग्राम अक्स अदब के साथ। सामईन, आज नौजवानों का आलमी दिन है यानी इंटरनेशनल यूथ डे। ये 12 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आलमी बिरादरी में नौजवानों से उनकी सलाहियतों के ज़रिए मुल्क और कौम किस तरह इस्तफादा कर सकते हैं इस बारे में सोचा जाए। नीज़ ये कि उनके क्या मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाए। किसी भी मुल्क के नौजवान उस मुल्क के लिए कीमती सरमाया होते हैं। उनके अंदर नई सोच और नए नज़रियात होते हैं। उनकी अफरादी कुव्वत का मुल्क में सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। नौजवानों की मेहनत और महारत मुल्क को इक्तसादी तौर पर मजबूत बनाती है। जहां नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं वहीं उनको बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। आलमी यौम नौजवानान, आइए इस मौजू के तहत सुनते हैं मोहतरमा चश्मा फारूकी के ख्यालात।
1: हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के तमाम नौजवानों के लिए

और तब्दीली का नाम है। दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, जब भी माशरे में कोई तब्दीली आई है, जब भी किसी कौम ने अपने हालात बदलने का फ़ैसला किया, उन सब के पीछे नौजवानों की कुव्वत, जोश और किरदार मौजूद था। मेरे नज़दीक नौजवान सिर्फ कम उम्र बच्चे नहीं हैं, नौजवान वो हैं जिनके अंदर सवाल करने की जुरत, सीखने की ख्वाहिश, ख्वाब देखने की सलाहियत और हालात बदलने का हौसला ज़िंदा हो। बाज़ लोग उम्र के एतबार से जवान होते हैं मगर सोच के एतबार से बूढ़े हो जाते हैं, और बाज़ लोग उम्र के आखिरी हिस्से में भी अपने अंदर एक नौजवान का हौसला रखते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नौजवानी सिर्फ उम्र नहीं है। अगर देखा जाए तो आज का नौजवान गुज़िश्ता नस्लों के मुकाबले में बेशुमार सहूलतों का मालिक है। उसके हाथ में मोबाइल है, दुनिया उसकी उंगलियों पर है, मालूमात का एक समुद्र उसके सामने मौजूद है। वो चंद सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की खबर हासिल कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या मालूमात की कसरत ने हमारे अंदर इल्म भी पैदा किया है? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं मगर किताब के चंद सफ़ात पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, या यूं कहिए कि हम दूसरे की ज़िंदगियों को देखते हैं मगर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वक्त नहीं है। हम दूसरों की कामयाबी पर तबसरा तो करते हैं मगर अपनी नाकामी से सबक हासिल नहीं करते। ये दौर हमें एक बहुत अहम मौका दे रहा है और एक इम्तिहान भी, जैसा कि आज की टेक्नोलॉजी सहूलत है या आजमाइश। असल सवाल यह है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। मेरा सोचना यह है कि मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी हमारे मोबाइल के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट हमारी मालूमात में इजाफा करे, हमारी तवज्जो और वक्त को ना निकल जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान डिजिटल यूज़र से आगे बढ़कर डिजिटल तख्लीक़कार बने। आसान अल्फाज में, सिर्फ वीडियो देखने वाला नहीं बल्कि वीडियोस बनाने वाला किरदार बनकर सामने आए। सिर्फ दूसरों की पोस्ट पर तबसरा करने वाला नहीं, अपने इल्म और सलाहियत से माशरे में मस्बत गुफ्तगू पैदा करने वाला बने। नौकरी तलाश करने वाला नहीं, रोज़गार पैदा करने वाला बने। हम अक्सर कहते हैं कि हम सबको तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि तालीम का मकसद क्या है। जैसे सिर्फ डिग्री हासिल करना, अच्छी मुलाजमत हासिल करना या एक बेहतर इंसान बनना। तालीम अगर इंसान को इल्म दे मगर किरदार ना दे, तालीम अगर इंसान को कामयाबी दे मगर इंसानियत ना दे, तो मुज़िर साबित हो सकती है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम उसको तालीम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वो तालीम के लिए सिर्फ डिग्री हासिल करता है, सिर्फ अच्छी मुलाजमत हासिल करता है या फिर एक बेहतर इंसान भी बनता है। आज हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो ज़हीन भी हों और ज़िम्मेदार भी हों, जो जदीद टेक्नोलॉजी जानते हों मगर अपनी तहजीब से भी वाकिफ़ हों, जो दुनिया के साथ चल सकते हों मगर अपने इकदार को भी भूले ना हों। क्योंकि कौमें सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान और अफसर पैदा करने से तरक्की नहीं करती, कौमें अच्छा इंसान पैदा करने से तरक्की करती हैं। मेरे सुनने वालों, आज नौजवान के सामने सबसे बड़ा मसला शायद वसाइल की कमी नहीं बल्कि सिमत की कमी है। हमारे पास सलाहियत है मगर कभी कभी मकसद नहीं होता। हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन उससे भी एक अहम सवाल यह है कि हम माशरे के लिए क्या करना चाहते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है तो हमारी कामयाबी भी महदूद हो जाती है। एक नौजवान की असल कामयाबी यह है कि उसकी ज़िंदगी से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी पैदा हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इम्तिहान में नाकामयाब हुए हैं तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपकी सलाहियत अपनी जगह कायम है। याद रखिए, गिरना शिकस्त नहीं, गिरे रहना शिकस्त है। हम अक्सर नौजवानों से तवक्को करते हैं कि वो मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम नौजवानों को क्या माहौल दे रहे हैं। क्या हम उन्हें बात करने की आज़ादी देते हैं? क्या हम उनकी सलाहियतों को पहचानते हैं? क्या हम उनकी सिर्फ तनकीद करते हैं या रहनुमाई भी करते हैं? नौजवानों को सिर्फ नसीहत नहीं चाहिए बल्कि उन्हें मौका, एतमाद, तरबियत और मजबूत रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है। वालदैन, असातिज़ा, मुआशरा, सबकी ज़िम्मेदारी है कि नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा हों जहां वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला सकें। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप किसी कौम का सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बल्कि आप इस कौम का आज भी हैं। नौजवान मुल्क बनाते हैं, मुल्क की तामीर करते हैं। हमें ऐसा नौजवान चाहिए जो किताब से रिश्ता रखता हो, सवाल करने से न डरता हो, सच बोलने का हौसला रखता हो, दूसरों के इख्तलाफ को बर्दाश्त कर सकता हो, टेक्नोलॉजी को मस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करे, अपने वक्त की कदर करे और अपनी नाकामी से सीखे, और इन सब से बढ़कर अपने मुल्क, अपने माशरे और इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो। एक ख़ास बात कि नौजवान को अगर वाकई अपनी ज़िंदगी बदलनी हो तो उसे किताब से दोस्ती करनी होगी।
क्योंकि

0: सोशल मीडिया आपको मालूमात दे सकता है, मगर किताब आपको गहराई देती है। एक मुख्तसर वीडियो आपको मुतासिर करती है, मगर किताब आपकी सोच बदल सकती है। हम सोशल मीडिया के मुखालिफ नहीं हैं, फिर भी कहते हैं कि कुछ वक्त किताब के लिए ज़रूर निकालें। जो नौजवान पढ़ता है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो अपने माशरे की सोच बदलने की सलाहियत रखता है। जागती आँखों से ख्वाब देखें, ख्वाब देखना ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। उसको मकसद बनाना होगा, मकसद का मंसूबा तैयार करना होगा। जैसे अगर आप शायर या अदीब बनना चाहते हैं तो आज से ही मुताला शुरू कर दीजिए। अगर आप माशरे की खिदमत करना चाहते हैं तो आज ही किसी एक इंसान की मदद से आगाज़ कर दें। बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है। आज आलमी यौम नौजवान के मौके पर मैं नौजवानों से एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर आपके पास दुनिया बदलने का मौका ना भी हो तो क्या आप अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? एक ईमानदार इंसान एक ख़ानदान बदल सकता है, एक अच्छा उस्ताद एक नस्ल बदल सकता है, एक बाकिरदार नौजवान एक माशरे की सोच बदल सकता है, और एक बाशऊर नस्ल एक कौम की तकदीर बदल सकती है। मोहतरम सामईन, आज का ये दिन सिर्फ मुबारकबाद देने का दिन नहीं है, ये खुद एहतसाबी का दिन है जिसमें नौजवान और माशरा दोनों शामिल है। आइए आज हम अहद करें कि हमने नौजवानों को सिर्फ रोज़गार नहीं मकसद देंगे, सिर्फ सहूलत नहीं जिम्मेदारी का शऊर भी देंगे, और नौजवान ख़ुद ये अहद करें कि वो अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करेंगे, अपना वक्त बेमकसद नहीं गुजारेंगे, नफ़रत के बजाय मोहब्बत, मायूसी के बजाय उम्मीद और शिकायत के बजाय अमल को अख्तियार करेंगे। अगर नौजवान बेदार है तो कौम जिंदा है, अगर नौजवान बाकिरदार है तो कौम महफूज है, और अगर नौजवान अपने ख्वाबों को अमल में बदलना सीख लिए तो कोई ताकत इस कौम की तरक्की नहीं रोक सकती। आखिर में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगी कि उठो, वक्त तुम्हें आवाज़ दे रहा है, मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर है। उठो कि अगले बाब में तुम्हारा किरदार अभी लिखा जाना बाकी है। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान नौजवानों को इल्म, किरदार, हिम्मत, बसीरत और खिदमत इंसानियत का जज्बा अता फरमाए। तमाम नौजवानों के लिए आलमी यौम नौजवानान मुबारक हो।
1: आलमी यौम नौजवानान, अभी आप इस मौजू पर मोहतरमा चश्मा फारूकी के ख्यालात सुन रहे थे।

0: अभी आप वतनी नगमा सुन रहे थे। सामईन, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान ने सिर्फ़ एक ज़रिया इजहार का काम नहीं किया, बल्कि वो ख़ुद एक मुजस्सम मुजाहिद आज़ादी बनकर अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल में खड़ी रही। जंग आज़ादी में उर्दू के शुरा ने अपनी शायरी को तलवार की ज़बान अता की। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, इकबाल, जोश, जिगर मुरादाबादी और हसरत मोहानी जैसे शुरा ने अपनी नज़मों से नौजवानों के खून में गर्मी पैदा की। तहरीक आज़ादी में सबसे मकबूल नारा इनकलाब जिंदाबाद था, जो मुल्क की आज़ादी का एक सितारा बन गया था। वो उर्दू के ही नामवर शायर मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी उर्दू अदब के एक मुनफरिद गज़लगो शायर, निडर सहाफ़ी और हिंदुस्तान के एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। हसरत मोहानी की सियासी और समाजी ज़िंदगी कुर्बानियों और उसूल परस्ती से इबारत है। मुजाहिद आज़ादी, हसरत मोहानी। आइए इस मौजू पर सुनते हैं जनाब दानिश हुसैन खां से उनकी ये तकरीर।
1: आज़ादी और वतनियत एक ऐसी शय है जिसके लिए हर इंसान कोई ना कोई कीमत अदा करता है। हर इंसान आज़ाद फ़ज़ा चाहता है और अपने वतन को आज़ाद देखना चाहता है। उस आज़ादी के लिए बहुत से मुजाहिदों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और अपने वतन की अज़मत को कायम रखा। वतन की मोहब्बत एक अजीम मोहब्बत होती है जिसके लिए एक मर्द मुजाहिद अपनी ज़ात को खाक में मिला देता है। वतन के लिए ज़िंदगी कुर्बान करने वालों को मुजाहिद आज़ादी कहा जाता है। जब दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है तो एक सच्चा और अजीम मुजाहिद जन्म लेता है। उन्हीं अजीम मुजाहिदों में एक अहम नाम हसरत मोहानी का है। आज़ादी एक ऐसी शय है जिसके लिए इंसान कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है और अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक सच्चे मुजाहिद को उस सरजमी से मोहब्बत होती है जहाँ पहली बार उसने अपनी माँ का चेहरा देखा था, अपने दोस्तों के साथ खेला था, जहाँ उसने तालीम हासिल की थी, जहाँ उसने बुज़ुर्गों की शफ़क़त को महसूस किया था। यही एहसास वतनियत को जन्म देता है और उसकी इज्जत व नामूस की हिफाजत के लिए एक मुजाहिद अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते वतन पर निछावर कर देता है। मोहान की सरजमीन से पैदा हुआ एक गौहर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देता है और हर लम्हा अपने मुल्क को गैरों के पंजे से आज़ाद कराने का ख्वाब देखता है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देता है। यही वो नारा है जिसने आज़ादी के परवानों के दिलों में इनकलाब बरपा कर दिया। ये वही नारा है जिसको भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी का नज़्मुल ऐन बनाया था। ब्रिटिश हुकूमत को ख्वाब से जगाने और अपनी आज़ादी की सदा को बुलंद करने के लिए भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका था, तब उस नारे की गूंज ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। ये वही नारा है जो हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे की ज़बान पर जदोआम है। जब भी कोई ऐसा काम करता है जिसमें इनकलाब की गूंज सुनाई देती है तो वो इस नारे का इस्तेमाल करता है। हसरत वो मर्द मुजाहिद है जिसने अदब की दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया था। हसरत ने उर्दू की गौहर व नायाब सिंफ गज़ल की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब पैदा किया कि जब गज़ल लड़खड़ा रही थी, वो तनावर दरख्त जब अपने बिखरे वजूद को समेटने की कोशिश कर रही थी, तब हसरत ने उसकी बुनियाद को संभाला और अपने तगज़ुल के ज़रिए उसकी नोक पलक को संवारा और ऐसी गज़लें लिखीं जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हसरत ने गज़ल के वक़ार को मजरूह होने से बचाया और उसकी खोई हुई आबरू उसको वापस लौटाई। हसरत जुरत व बेबाकी की ज़िंदा मिसाल थे। हक गोई और बेबाकी इस कदर थी कि हक बात करने से कभी हिचकिचाते नहीं थे और यही खूबी एक मर्द मुजाहिद का वस्फ़ है। हसरत ने उर्दू मुअल्ला से वो काम लिया है जो उनके मकसद की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया है। हसरत की बेबाकी और जुर्रत उनके उर्दू मुअल्ला में कदम कदम पर देखने को मिलती है। अगर ये कहें तो बेजा ना होगा कि हसरत के इनकलाबी फ़िक्र को उर्दू मुअल्ला ने जिला बख्शा और त्राबलस के सपोर्ट में इटली के ख़िलाफ़ बायकाट का फतवा शाया किया। मिसाल के तौर पर ये शेर देखें, बेकार है इजहार गज़ब अहले सितम का, डरता हूँ मैं उनसे न डरूंगा न डरा हूँ, शाहों के तकब्बुर से भी दबकर न रहूँगा, किस बाग़ ख़ास का आखिर में गदा हूँ। ये हसरत की ही हिम्मत और बेबाकी थी कि हुकूमत की आँख से आँख मिलाकर बात करते थे और ऐसी तकरीर करते थे कि दरोबाम हिला देते थे। स्वदेशी तहरीक भी हसरत की ही देन थी और वो स्वदेशी स्टोर भी चलाते थे, लेकिन जेल से रिहाई के बाद और हुकूमत की डर से लोगों ने हसरत का साथ छोड़ दिया था। हमदर्दी तो दूर रही, लोग हसरत के साए से भी बचने लगे। कुछ हमदर्दों ने हसरत से सियासत से दूर रहने की तलकीन की, लेकिन हसरत के मिजाज में इनकलाबी रूह परवान चढ़ रही थी। वो मर्द मुजाहिद उन हालात से डरा नहीं, बल्कि अपने अजायम पर कायम रहा और अपने अज़्म व हौसले के साथ आने वाले हालात का सामना किया और अपनी मंजिल की सिमत सफ़र करते रहे। करके वही रहेगा जो दिल में ठान ली है, करके वही रहेगा जो दिल में ठान ली है। रोशन है हम पे हसरत अज़्मे उमूर तेरा। हसरत की रगों में इनकलाबी खून था और वो हिंदुस्तानियों की इज्जत व नामूस की हिफाजत करते थे, और उसी जज्बे ने उनके अंदर इनकलाब बरपा किया। अलीगढ़ की तहजीब और इनकलाबी शान ने हसरत के अंदर वो हौसला पैदा किया जिसकी मिसाल दौरान तालीम हमें देखने को मिलती है। MAO कॉलेज की तालीम के दौरान ही हसरत के दिल में आज़ादी की लगन पैदा हो गई थी, और उसकी वजह कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल रहे। उस प्रिंसिपल की ज्यादतियों ने हसरत के अंदर जज्बाए अमल को उभारा और उनके अंदर इनकलाबी रूह पैदा हुई। हसरत ने अपने मजमून में खुद इस बात की तरफ इशारा किया है कि कॉलेज के ज़माने में एक कांस्टेबल ने गुलाम हुसैन को अहाताए नुमाइश में इस बात पर जाने से रोक दिया कि वहाँ सिर्फ साहेब लोग ही जा सकते हैं, और इससे पहले इस तरह की कोई पाबंदी सुनने में नहीं आई थी। इसलिए गुलाम हुसैन ने कांस्टेबल की इस हरकत पर एहतजाज किया और उसको धक्का देकर अंदर चले गए। ये मामला जब प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने आया तो उन्होंने तालिब इल्मों का साथ देने के बजाय पुलिस की बात का एतबार किया और ग़ुलाम हुसैन को माफ़ी मांगने और 40 रुपया जुर्माना देने को कहा गया। और आखिर में ज़्यादती की इंतहा ये रही कि प्रिंसिपल तलबा के साथ बेरहमी से पेश आया और उनको कॉलेज से भी निकाल दिया। हसरत के लिए ये बात दुख और तकलीफ़ का बास थी। यूरोपियन इख्तदार की मुदाखलत हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। हसरत को भी 3 बार कॉलेज से निकाला गया। यही वजह थी कि उस मर्द मुजाहिद ने पहले ही तय कर लिया था कि अंग्रेज़ों को इस मुल्क से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। यही वजह थी कि हसरत ने आज़ादी कामिल की तमन्ना की और 1907 में एक तजवीज़ दफाई मज़ाहमत से मुतालिक कांग्रेस के इजलास में पेश की, जिस पर ऐलान किया गया कि अगर अंग्रेज़ 31 दिसंबर 1921 तक बरतानिया हुकूमत ने हिंदुस्तान को आज़ाद ना किया तो तर्क मवालात की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। उस तहरीक में हसरत ने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और मुल्क की आज़ादी के लिए कोशा रहे। मुल्क की आज़ादी और कांग्रेस के इजलास की रुदात को उर्दू मौल्ला में शाया करते रहे। उर्दू मौल्ला अपनी अशात की इब्तिदा से ही अंग्रेज़ों के लिए दर्द सर बन गया था और वो चाहते थे कि उसको बंद कर दिया जाए। 1908 में हसरत ने मिस्र में अंग्रेज़ों की पॉलिसी के उनवान से मजमून शाया किया जिस पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा, और मामला को बगावत करार देकर हसरत को 2 बरस की सज़ा सुनाई गई। हसरत ने जेल की सज़ा मुकम्मल करने के बाद वहाँ के हालात व वाक़यात को मुशाहदात जिंदा के नाम से उर्दू मौल्ला में सिलसिलावार शाया किया। मुशाहदात जिंदा में हसरत ने जेल में चक्की पीसने और उन पर हुए मजालिम को कलमबंद किया है। मसलन ये शेर इस बात की अक्कासी है कि हैमश के सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, यकतरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है, इस बात का नारा लगाते हुए हसरत ने मुजाहिद आज़ादी

0: के रूप में अपने दिलों में इनकलाब को जिंदा किया। सामईन कराम, मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया। 1921 में कांग्रेसी इजलास में मुकम्मल आज़ादी यानी आज़ादी कामिल का मुतालबा उन्होंने किया। वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने बरतानवी राज से मुकम्मल आज़ादी की बात कही। उनकी जद्दोजहद ने आज़ादी के तसव्वुर को अमली शक्ल दी। मौलाना ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जलसों में गुजारा। उनकी किताब मुशाहदात जिंदा कैदोबंद की दास्तान है। वो कांग्रेस से वाबस्ता रहे। उनकी शायरी में आज़ादी का जज्बा बहुत नुमाया है। उन्होंने उर्दू गज़ल को नई जिंदगी बख्शी। उनका कलाम इश्क और आज़ादी दोनों का तर्जुमान है। उनकी सहाफत ने अवाम को बेदार किया। यही वजह है कि वो सियासत और अदब दोनों में अजीम मुकाम रखते हैं। वो आज़ादी के सच्चे सिपाही थे। आज हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं।
1: मुजाहिद आज़ादी हसरत मोहानी, अभी आप इस मौजू पर जनाब दानिश हुसैन खां से उनकी तकरीर सुन रहे थे। सामईन, आइए अब सुनते हैं ये गज़ल। कलाम हसरत मोहानी का है, आवाज़ का पैराहन दिया है जितेंद्र सिंह ने।

अभी आप गज़ल सुन रहे थे, कलाम था हसरत मोहानी का और आवाज़ से सजाया था जितेंद्र सिंह ने। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। और अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने को ही कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। हंगामे के बीच लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। लोकसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे सदन की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। ये विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में सुबह कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। इस समय राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री मोबाइल फोन से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. When the House met at 3 p.m. after the second adjournment, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly, and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Following the passage of the bill, the lower house was adjourned for the day. Lok Sabha today referred the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill to refer it to JPC, comprising members of both the houses, for wider consultations. He said the committee will consist of 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, nominated by the Chairman. Mr. Rai said the committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is fully prepared to discuss any issue, including students' issue, and answer any questions raised by the members in the Parliament. Speaking to reporters in Parliament premises, Mr. Shah said that the government has nothing to hide and is ready for discussion.
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे।
5: Please submit that letter to the speaker by 3 PM today. From 3 PM today until 3 PM tomorrow, we are ready for a discussion on all matters. I will remain present in the house, listen to everyone, and respond to all the points raised. The government has nothing to hide. Everything will become clear before the people of the country.
2: देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए।
4: Meanwhile, leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said the opposition is seeking accountability from the government over the alleged police action against NEET protesters. Talking to reporters at Parliament premises, Mr. Gandhi said that the opposition is not interested in any statement from the Home Minister, but accountability. Prime Minister Narendra Modi has urged the youth to read the autobiography of anyone they admire and avoid shortcuts in life in the age of reels and social media influencers.

0: The Prime Minister said this while releasing the autobiography of former President Ramnath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi. He also stressed on the continuous need for dedicated youth to carry the mission of Viksit Bharat forward. Mr. Modi called for a generation that remains undeterred by obstacles and maintains the courage to forge paths towards national self-reliance. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has urged Indian businesses and citizens to adopt fair trading practices, promote recycling and reuse, and encourage a circular economy while taking Indian products and services to global markets. The minister said this while addressing the inaugural ceremony of Bharatiya Vyapari Mahotsav 2026 in New Delhi today. He said that India's current economic size of around $4 trillion presents a major opportunity as the country moves towards the vision of becoming a $30 trillion economy by the year 2047. Highlighting the government's trade initiatives, he said that free trade agreements signed over the last 4 years cover 38 developed nations with a combined GDP of $60 trillion. A fresh low-pressure area has formed over the northwest bay of Bengal near the Odisha coast, prompting the India Meteorological Department to forecast enhanced rainfall activity over Odisha. Meanwhile, IMD has issued an orange color warning of heavy to very heavy rainfall at isolated places over Rajasthan, Gangetic West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. The Met Department predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Rajasthan till tomorrow. And Indian Grandmaster R. Pragyananda defeated Javokhir Sindarov in a second round match of the Singapore Field Cup in St. Louis, United States. It is his first victory in the tournament, which is the penultimate event of the Grand Chess Tour. Throughout the game, Pragyananda kept pressing and eventually turned the drawn position into a winning one. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 4:10 हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। सबसे पहले जो जानकारी हमारे पास आई है, ये राजेंद्र पार्क थाना गुरुग्राम से आई है। ये एक अज्ञात शव है जिसका नाम और पता मालूम नहीं है। उम्र लगभग 40 साल है और ये 24 अप्रैल 2026 को ये शव मिला था। कद 5 फुट 6 इंच है, दुबला पतला शरीर, रंग गेहुआ, लंबा चेहरा। ये एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इनके बारे में ये धनकोट PSR पार्क के पास इनका शव मिला है। इनके बारे में कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं तो संपर्क करें राजेंद्र पार्क थाना गुरुग्राम। अगली जो जानकारी हमारे पास आई है, ये थाना जानी मेरठ से हमें मिली है। गुमशुदा का नाम है मोहित पुत्र ऋषिपाल, निवासी रामपुर पापटी जिला मेरठ। उम्र इनकी 28 वर्ष है और ऊँचाई 5 फुट 3 इंच। बाल काले हैं, शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा लंबा है। इन्होंने नीले रंग का लोअर, सफ़ेद काले रंग की शर्ट और पैरों में चप्पल पहनी है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आपको मिलती है या आप इनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना जानी मेरठ। अगली जानकारी थाना मुंडाली जनपद मेरठ से हमें मिली है। गुमशुदा का नाम है मदन पाल, ये पुत्र है प्रकाश चंद्र। उम्र 58 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, बाल सफ़ेद है, चेहरा लंबा है, शरीर इकारा है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क करें देवेंद्र मिश्र थाना अध्यक्ष, थाना मुंडाली जनपद मेरठ से। अगली जो सूचना हमारे पास आई है, ये थाना लाल कुर्ती जनपद मेरठ से आई है। गुमशुदा का नाम है भावना उर्फ गुड़िया, पुत्री नथुलाल, निवासी कसेरू खेड़ा मारवाड़ी मोहल्ला, थाना लाल कुर्ती मेरठ। गुड़िया जिनकी उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट, काले हल्के भूरे बाल हैं, चेहरा गोल है, शरीर की बनावट सामान्य है। इन्होंने पीली हाफ टी शर्ट, नीली जीन्स और काली चुन्नी ले रखी है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं तो आप संपर्क करें हरेंद्र पाल थाना अध्यक्ष थाना लाल कुर्ती मेरठ थाना नौचंदी जनपद मेरठ से। अगली जानकारी, गुमशुदा का नाम है नेहा कश्यप पुत्री संजय कश्यप 515/2 शास्त्री नगर नौचंदी मेरठ के रहने वाले हैं। उम्र 24 वर्ष का 3 फुट 10 इंच बाल काले शरीर सामान्य। इन्होंने नीली कुर्ती नीली लेगी और पैरों में चप्पल डाल रखी है। आपने नेहा को कहीं देखा है या इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं तो आप संपर्क करें थाना नौचंदी जनपद मेरठ से। अगली जानकारी थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ से। गुमशुदा का जो नाम है वो कुमारी ज्योति है। करीब 22 वर्ष इनकी उम्र है। कद 5 फुट 2 इंच शरीर सामान्य चेहरा साफ है। इन्होंने काला सूट पहना है। इनसे संबंधित जानकारी देने के लिए आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ। अगली जो सूचना हमारे पास पहुंची है वो है थाना सरूरपुर जनपद मेरठ से। गुमशुदा का नाम है जनवेश्वर पुत्र कड़े और उम्र इनकी 48 वर्ष है। ऊंचाई 5 फुट 6 इंच बाल सफ़ेद चेहरा गोल शरीर सामान्य। इन्होंने पीला कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहना है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप देना चाहते हैं तो आप संपर्क करें थाना सरूरपुर जनपद मेरठ। अगली जानकारी थाना सरधना जनपद मेरठ से हमें मिली है। गुमशुदा का नाम है आकाश सोमपुत्र जयविंद्र सिंह और ये 28 वर्ष हैं। कद 5 फुट 2 इंच है। चेहरा सामान्य है। कद आँख नाक कान औसत हैं। इन्होंने लाल शर्ट नीली पैंट और जूते सफ़ेद पहने हुए हैं। इन्हें बस स्टैंड होटल ढाबा सब जगह ढूंढा गया लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई पता नहीं चला। आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी या सूचना है तो आप संपर्क करें थाना सरधना जनपद मेरठ से। ये थे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं से संबंधित प्रोग्राम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का युवा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं विवेक।
2: मैं हूं शुभांगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुभांगी, आज युवा दिवस पर मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: वाह विवेक, क्या सुंदर शुरुआत किया आपने। साथियों, आज की पूरी शाम रहने वाली है युवाओं के नाम। बातें होंगी बढ़ती अपॉर्चुनिटीज़ की, भारत के विकास की, सुनेंगे इंटरव्यू एक युवा लेखिका का और जानेंगे कुछ क्विक अपडेट्स आज के इतिहास के साथ। इससे पहले सुनते हैं आज का पहला गीत, बेसब्रियां फ्रॉम द मूवी MS धोनी।

0: शुभांगी, एक सवाल पूछूं?
1: अगर मुश्किल हुआ तो जवाब आप ही दीजिएगा, पूछिए।
0: तुम्हारे फोन में सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट किस चीज के हैं?
1: अरे, शो की शुरुआत में ही फोन चेकिंग।
0: नहीं, सीरियसली।
1: सच बताऊं तो कुछ रेसिपीज, कुछ आउटफिट्स और सबसे ज्यादा करियर रिलेटेड पोस्ट।
0: हाँ, थैंक गॉड मैं अकेला नहीं हूं। मेरे फोन में भी कोर्सेज, जॉब नोटिफिकेशन, स्कॉलरशिप्स, सबके स्क्रीनशॉट्स हैं। बस एक दिक्कत है, उनमें से आधे दोबारा खुलते ही नहीं।
1: बिल्कुल विवेक, और मजेदार बात तो ये है कि हम उन्हें डिलीट भी नहीं करते। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कभी तो काम आएंगे।
0: हमें कभी समय ही नहीं लगता कि हम उनको दोबारा देख पाएं। वैसे शुभांगी, ये कल बड़ा डेंजरस होता है। हर संडे के बाद मंडे आता है, लेकिन कल से कभी नहीं आता।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ हमारी बात नहीं है विवेक। आज बहुत सारे यंगस्टर्स शायद इसी फेज से गुजर रहे हैं। ऑप्शंस ही इतने ज्यादा हैं कि कई बार समझ ही नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें।
0: बिल्कुल शुभांगी, पहले लोग कहते थे अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, आज लगता है अपॉर्चुनिटी ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल उसमें से सही अपॉर्चुनिटी चुनना है।
1: विवेक, फिर अगर सोशल मीडिया खोल लो तो किसी ने नई जॉब ज्वाइन की है, तो कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, और हम सोचने लगते हैं सबको पता है क्या करना है या सिर्फ मुझे ही नहीं पता।
0: मुझे लगता है ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता होगा, और ऑनेस्टली इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है।
1: बिल्कुल भी नहीं साथियों, क्योंकि करियर कोई रेस नहीं है जहां सबको एक ही ट्रैक पर दौड़ना हो। हर किसी का रास्ता अलग है, और शायद इसी वजह से हर किसी का आने वाला कल भी अलग है।
0: सही कहा शुभांगी, लेकिन कभी कभी हम अपने रास्ते पर चलने के बजाय दूसरों की मंजिल देखकर परेशान होने लगते हैं।
1: बिल्कुल विवेक, जैसे सुबह सुबह लिंक्डइन खोलो और पहला पोस्ट ही दिखता है, एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आई हैव जॉइंड।
0: और दूसरा पोस्ट, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दैट आई हैव बीन प्रमोटेड। फिर हम अपना लिंक्डइन बंद करके सोचते हैं, एक मिनट, सबकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है और मैं कहाँ हूँ?
1: लेकिन दोस्तों, यहीं पर हमें एक बात समझनी होगी। लिंक्डइन पर हमें किसी की पूरी जर्नी नहीं, उसकी जर्नी का एक हिस्सा दिखाई देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है विवेक? हो सकता है जिस इंसान की अचीवमेंट देखकर आज हमें ये लगे कि ये तो मुझसे बहुत आगे है, वो भी किसी और की प्रोफाइल देखकर यही सोच रहा हो।
0: वाओ, मतलब हम सब किसी ना किसी के लिंक्डइन प्रोफाइल से अपनी जिंदगी की तुलना कर रहे हैं।
1: और कंपैरिजन का ये खेल कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे आगे क्यों है, बल्कि सवाल होना चाहिए मैं कल से आज कितना आगे हूं।
0: बिल्कुल शुभांगी, क्योंकि दोस्तों करियर में हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है। किसी को गाइडेंस जल्दी मिलती है, किसी को अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, और किसी को अपना रास्ता खोजने में थोड़ा वक्त लगता है।
1: साथियों, अगर आपको अपना रास्ता खोजने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पीछे हैं। शायद आप बस अपना रास्ता चुन रहे हैं। और दोस्तों, करियर का मतलब सिर्फ एक अच्छी सैलरी या एक बड़ा डेजिग्नेशन नहीं है।
0: जी हाँ दोस्तों, करियर का मतलब ये भी है कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या उसमें आपको सीखने को मिल रहा है, क्या आप ग्रो कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आप धीरे धीरे उस इंसान के करीब जा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो थोड़ा रुकिए, दूसरों की स्पीड देखना बंद कीजिए और अपने अगले कदम पर ध्यान दीजिए।
1: क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का मैप आज नहीं चाहिए, बस अगला सही रास्ता दिखना चाहिए, और शायद आपका आगे किसी और जैसा नहीं होगा।
0: लेकिन दोस्तों वो आपका होगा। तो साथियों, आज खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिए, मैं दूसरों से आगे निकलने के लिए भाग रहा हूं या खुद से बेहतर बनने के लिए?
1: इसी के साथ समय हो गया है दोस्तों आज के अगले गीत का। बादल पर पांव है, फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया।

0: वैसे शुभांगी, पिछले कुछ दिनों से एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, विकसित भारत 2047।
1: बिल्कुल विवेक, न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया पर भी और कई डिस्कशंस में भी, लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है।
0: सही कहा शुभांगी, कई बार हमें लगता है ये सिर्फ एक स्लोगन है, लेकिन असल में ये एक विजन है कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे, यानी 2047 में, तब देश हर मायने में और आगे बढ़े। एजुकेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट,

0: इंफ्रास्ट्रक्चर हर फील्ड में।
1: वैसे विवेक, अगर मैं आज किसी क्लास 10 के स्टूडेंट से पूछूं बड़े होकर क्या बनना है, तो शायद जवाब पहले जैसा नहीं होगा।
0: बिल्कुल शुभांगी, पहले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यहीं तक बात रहती थी। अब क्रिएटर, डेटा एनालिस्ट, गेम डिज़ाइनर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एआई इंजीनियर, इतने नए नए ऑप्शंस कि कई बार पेरेंट्स भी गूगल करने लगते हैं।
1: ये तो आपने सही कहा, और शायद यही बदलाव भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। जितने नए सपने, उतनी ही नई अपॉर्चुनिटीज।
0: लेकिन मुझे इसमें एक बात सबसे अच्छी लगती है शुभांगी, जब भी विकसित भारत 2047 की बात होती है तो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं होती, बात होती है उन लोगों की भी जो अपनी अपनी फील्ड्स में कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं या कोई छोटा सा पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं।
1: क्योंकि कोई भी देश सिर्फ पॉलिसी से नहीं बल्कि लोगों से आगे बढ़ता है, और हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है दोस्तों, कि हमारे पास सीखने के अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। और शायद यही वजह है कि 2047 सिर्फ एक साल नहीं, एक डायरेक्शन है जिसकी शुरुआत आज हम जो सीखते हैं, जो चुनते हैं और जिस तरह अपने काम को करते हैं वहीं से होती है।
0: तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत भी इस डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम है। वैसे शुभांगी, इस बात पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
1: वाह, क्या बात है। और शायद यही आज के युवा के लिए सबसे बड़ा संदेश भी है। सपने देखिए, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस भी रखिए।
0: इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हर युवा को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। गीत का नाम है चक लैंडे, फ्रॉम द मूवी चांदनी चौक टू चाइना।

0: वेलकम बैक साथियों। शुभांगी, आज की हमारी अगली सेगमेंट में ऐसा क्या खास है?
1: दोस्तों, आज है इंटरनेशनल यूथ डे, तो आज हमारी अगली सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक में सुनिए युवा लेखिका

0: वैसे शुभांगी, एक कन्फेशन करूं?
1: अभी लाइव?
0: घबराइए मत, ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैंने पिछले महीने लिंक्डइन पर एक पोस्ट सेव की थी, आज तक पढ़ी नहीं।
1: सिर्फ एक? मेरे तो सेव्ड पोस्ट देखकर लगता है कि मैं कभी ना कभी पूरी दुनिया के बारे में सीखने वाली हूँ।
0: हम सेव सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है।
1: और मुझे लगता है विवेक, यही सबसे कॉमन फीलिंग है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कभी कोर्सेज, कभी वेबिनार्स, कभी स्कॉलरशिप्स, कभी इंटर्नशिप्स। चैलेंज अब इन्फॉर्मेशन का नहीं, सिलेक्शन का है।
0: सही कहा शुभांगी, पहले लोग कहते थे अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ करें, आज लगता है अपॉर्चुनिटी इतनी है शुरू कहाँ से करें।
1: वैसे स्किल्स की बात भी चल रही है तो एक बात मैं अपने छोटे कजिन्स को हमेशा कहती हूँ
0: क्या शुभांगी?
1: कि सिर्फ डिग्री कलेक्ट मत करो, एक्सपीरियंसेस भी कलेक्ट करो। किसी इवेंट में वॉलेंटियर बन जाओ, कोई वर्कशॉप अटेंड कर लो, या फिर किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ। बाद में पता चलता है कि असली लर्निंग तो वहीं हुई थी।
0: दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आज हमारी गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट पर लगातार काम कर रही है।
1: जी हाँ साथियों, स्किल इंडिया मिशन और PMKVY जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए युवाओं को नई स्किल सीखने और ट्रेनिंग के कई मौके मिल रहे हैं। अगर किसी लिसनर ने अभी तक इनके बारे में नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, हो सकता है आपके काम की कोई अपॉर्चुनिटी वहीं आपका इंतज़ार कर रही हो।
0: एक और बात दोस्तों, करियर बनाने की जल्दी में क्यूरियोसिटी मत खोइए, क्योंकि कई बार जो स्किल आज सिर्फ हॉबी लगती है वही कल प्रोफेशन बन जाती है।
1: बिल्कुल विवेक, और शायद सीखने की यही आदत आगे चलकर सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो साथियों, आज की अगली सेगमेंट पर जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। गाना है द जर्नी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पीकू।

0: वेलकम बैक दोस्तों। विवेक, आजकल एक चीज मैंने नोटिस की है, हम सब दिन भर अपडेट्स के बीच रहते हैं। सोशल मीडिया अपडेट, स्टेटस अपडेट, ट्रेंडिंग अपडेट।
1: लेकिन असली फर्क उन अपडेट से पड़ता है जो हमारे करियर और स्किल्स को अपडेट करें।
0: बिल्कुल विवेक, तो चलिए अब सुनते हैं कुछ ऐसे ही काम के अपडेट्स आज की अगली सेगमेंट क्विक बज में।
1: दोस्तों, अगर आपको स्किल्स सीखने का शौक है तो एक अच्छी खबर, इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026-27 के रजिस्ट्रेशन अभी खुले हुए हैं। ये कंपटीशन अलग अलग स्किल्स में अपनी प्रतीक्षा दिखाने का मौका देता है और आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का रास्ता भी बन सकता है।
0: और अगर लर्निंग की बात करें तो स्किल इंडिया डिजिटल हब पर लगातार नए कोर्सेज और स्किल प्रोग्राम्स जुड़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आप सोच रहे हैं कि कुछ नया सीखना चाहिए तो शुरुआत का यही सही समय हो सकता है।
1: अब दोस्तों, टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी बात, अगर किसी अननोन लिंक या जॉब ऑफर का मैसेज मिले तो बिना वेरीफाई किए उस पर क्लिक करने से बचिए। करियर बनाते समय साइबर सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है।
0: एक और अपडेट खासकर दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली मेट्रो ने साल 2026 में 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी का शानदार रिकॉर्ड बनाया है, यानी ऑलमोस्ट हर मेट्रो ट्रेन तय समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची।
1: इसी अचीवमेंट के साथ डीएमआरसी ने न्यूयॉर्क, हांगकांग और पेरिस जैसे बड़े मेट्रो नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अपडेट्स तो हो गई, लेकिन आज की तारीख भी अपने साथ एक दिलचस्प कहानी लेकर आई है। और उससे पहले सुनते हैं एक गीत जिसका नाम है ओ शेरा फ्रॉम मूवी केसरी 2।

0: दोस्तों, जैसा हमने बताया, आज है 12 अगस्त और दुनिया भर में आज के दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है।
1: इस दिन को मनाने का विजन सिर्फ युवाओं का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि उनके आइडियाज, इनोवेशन और पार्टिसिपेशन को पहचान देना भी है। हर साल एक अलग थीम के साथ ये दिन हमें याद दिलाता है कि आने वाले कल की दिशा तय करने में युवाओं का रोल कितना इम्पोर्टेंट है।
0: जी हाँ शुभांगी, 12 अगस्त सिर्फ इंटरनेशनल यूथ डे की वजह से ही खास नहीं है।
1: बिल्कुल विवेक, 12 अगस्त 1981 को IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC लॉन्च किया था, जिसने तकनीक की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया।
0: और आज वही तकनीक पढ़ाई, करियर और रोजगार के अनगिनत नए अवसरों का आधार बन चुकी है। इसलिए समय के साथ सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है।
1: और शायद इसी वजह से दोस्तों, आज की हमारी पूरी बातचीत भी बार बार एक ही सवाल पर लौटती रही, अब आगे क्या?
0: बिल्कुल शुभांगी, फ्यूचर किसी एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन के लिए एक छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। और शायद विकसित भारत 2047 भी ऐसे ही लाखों करोड़ों छोटे प्रयासों का नाम है। अब वक्त हो चला है अगले गाने का, जिसका नाम है कुन फाया कुन फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार।

0: दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। अपना सुझाव और प्रतिक्रिया हमें भेजें yuvanifeedback@gmail.com पर yuvanifeedback@gmail.com पर।
1: उम्मीद है साथियों आज के प्रोग्राम से आपको नया आइडिया, कोई नई डायरेक्शन या कम से कम सोचने के लिए एक नया सवाल जरूर मिला होगा। अब लेते हैं आप सभी से अनुमति। मैं हूं विवेक।
0: मैं शुभांगी।
1: आप अपना सुझाव yuvanifeedback@gmail.com पर देना ना भूलें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युवावाणी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने इस वर्ष मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। श्री बिरला ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथी हाथियों की रक्षा, उनके आवासों के संरक्षण और हाथियों तथा समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और AI आधारित अलर्ट, लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बाढ़ और खाई तथा किसानों को फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मंजीत कौर और मेरे साथ हैं लोकेंद्र। और जैसा कि हम सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और साथ ही साथ देशभक्ति का माहौल इस समय बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे लोकेंद्र?
1: बिल्कुल आपने सही कहा मंजीत जी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम में जो हमारे श्रोता होते हैं बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि सावन का जो गीत सुनवाते हैं और उसमें हमारी जो गीत होती हैं, लोकगीत होते हैं, उसमें अपनी अपनी विधाएँ होती हैं, हर मौके पर गाए जाते हैं और उनका कोई और हर गीत के पीछे कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। तो सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम में सुनवाते हैं राजवाला की आवाज़ में ये सावन गीत।

0: मंजी जी,
1: जी।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे राजबाला की आवाज में ये सावन गीत।
1: और अब अगला गीत सुनवाते हैं अनुराधा शर्मा की आवाज में, देशभक्ति गीत।

तीनों दार दिखा फौजी, पिया गई गिरजा पूजन मने, वो गुलजार दिखा फौजी।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा शर्मा की आवाज़ में देशभक्ति गीत।
1: और अगला देशभक्ति गीत सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती की आवाज़ में।
2: बिल्कुल कहेंगे,
3: हो जाओ सुन।

0: अभी आप सुन रहे थे मंजी जी, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं दैनिक का कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। नमस्कार विदुषी।
3: नमस्कार।
2: और आज की शुरुआत करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप से, जो कि 15 अगस्त से होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में। और भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम पदक की दावेदार है और इस बार उम्मीदें काफ़ी मजबूत हैं, दमदार हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने कड़ी तैयारी की है और पिछला प्रदर्शन बताता है कि भारतीय टीम के लिए ये अच्छे संकेत हैं और भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा भी अन्य खबरों में बात होगी सुब्रतो कप पे, डोरेंट कप पे, इसके अलावा फेंसिंग और टेबल टेनिस पर भी चर्चा करेंगे। तो विदुषी क्यों ना शुरुआत करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप से।

0: हॉकी विश्व कप का मंच सज चुका है। कभी विश्व हॉकी पर राज करने वाले भारत के लिए यह सिर्फ एक और विश्व कप नहीं बल्कि 5 दशक से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने का मौका है। भारत ने हॉकी विश्व कप में 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1971 में कांस्य, 1973 में रजत और 1975 में एकमात्र मिला स्वर्ण पदक शामिल है। और विश्व कप में यही वह लम्हा था जब पिछली बार भारतीय हॉकी टीम ने पोडियम फिनिश किया था। आज 51 साल हो गए, लेकिन उम्मीद है तो हौसला है, और हौसला है तो जज्बा है, और जज्बा है तो जुनून भी रगों में रक्त की तरह दौड़ेगा। कुछ ऐसे ही जज्बात और संकल्प लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय खिलाड़ी भी 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप में सपनों को साकार करने उतरेंगे। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में मिले लगातार 2 पदकों ने 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। अब तो बस विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम की परवाज देखनी है। तो आइए चलते हैं यादों के सफर पर और आपकी मुलाकात कराते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र और 1975 के क्वालालंपुर में हुए फाइनल में विजयी गोल करने वाले अशोक ध्यानचंद से।
1: आज से 51 साल पहले भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया क्वालालंपुर में फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर देश को एक हमने अपनी अपना तोहफा दिया था। एक भारतीय टीम जीतती है, उसके 11 खिलाड़ी होते हैं जिनका फर्ज होता है कि टीम को आगे बढ़ाना, आगे जिताना। फाइनल गोल जो जीतने वाला था, मेरी हॉकी स्टिक से निकला, उसका मुझे थोड़ा सा खुद के अपने आप से मुझे एक अच्छा लगता है, लेकिन वो देश की जीत थी। और वर्ल्ड कप में हमारी 3री लगातार पोडियम पर पार्टिसिपेशन था। 71 वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल, 1973 एम्स्टर्डम जिसमें भारत की टीम 2 गोल की जीत लेने के बाद सेकेंड हाफ में हॉलैंड से हार जाती है टाई ब्रेकर में। लॉन्गेस्ट मैच जो खेला गया है खेल इतिहास में वो 1973 वर्ल्ड कप का था, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम, फिर सडन एक्स्ट्रा टाइम, और उसमें फिर भारत की टीम की टाई ब्रेकर में हार, क्योंकि उस वर्ल्ड कप को भारत की टीम को जीतना चाहिए था, बट वी लॉस्ट। और यह 75 वर्ल्ड कप हमारे लिए 73 की हार का बदला लेने प्राण कमिटमेंट, और मैं समझता हूँ वो एक जीत हमारे लिए जीत ही नहीं थी बल्कि एक सेकंड चैप्टर था इंडियन हॉकी के आगे बढ़ने का।
2: तो अब लगता है कि भारतीय हॉकी टीम सही ट्रैक पे आगे बढ़ रही है और इस बार विश्व कप में

0: टीम एक संतुलित टीम है। इसके अंदर सीनियर खिलाड़ियों का समावेश और हमारे जूनियर और जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर मौजूद हैं।
1: मैं जो हमारे साथ हैं इंग्लैंड पाकिस्तान वेल्स टीम, पूल कैसा देख रहे हैं आपके?
0: पूल तो हमारे लिए दो टीमें निकलनी है। पाकिस्तान को तो हम हराते ही चले आ रहे हैं, फिलहाल पास्ट में हम उनको हराते चले आए लगातार। हमने कितने मैचेस हराए मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ हम खेले हमने उनको बहुत अच्छी बड़े मार्जिन से डिफीट दी, लेकिन ये वर्ल्ड कप है और मैं समझता हूँ भारत के खिलाड़ी जो है वो इस मैच को उसी तरह से खेलेंगे। वेल्स को जितना यूरोपियन टीम है दमखम, और वो लोग तो साल भर इंडोर हॉकी और उनके सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई होती है, हमारे साथ भी है, लेकिन उसको हम इजीली नहीं लेंगे। तो है तो टफ, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है, हर टीम जीतने के लिए आती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी रणनीति, आपका कला कौशल, आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम और आपके जो धैर्य और हौसला है वो कितना मजबूत हर मैच में रहता है जब जब आप खेलते हैं।
2: अभी तक केवल चार ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने हॉकी विश्व कप में तीनों पदकों में भागीदारी की है। इनमें अशोक ध्यानचंद के अलावा रक्षण की मजबूत दीवार कहे जाने वाले माइकल किंडो शामिल हैं। अर्जुन अवार्डी किंडो भारत के फुलबैक थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जिन्होंने 1975 के विश्व कप के सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। 1975 में भारत ने विश्व कप अजीत पाल सिंह की कप्तानी में जीता। उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ मिडफील्डरों में होती थी। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भारतीय हॉकी टीम चमत्कार कर सकती है।
3: तो सर अभी जिस तरह टीम प्रदर्शन कर रही है बैक टू बैक ओलंपिक मेडल, तो आपको लगता है कि इस बार वो इंतजार खत्म होगा और हॉकी विश्व कप में हमें पदक मिलेगा?
4: देखिए मुझे उम्मीद तो है, 51 साल हो गए और उसके बाद हमारा कोई वर्थ वाइल वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, और अब पहले से टीम कुछ बेटर दिख रही है। इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं बैक टू बैक, तो उम्मीद तो जागी है हमारे दिल में और हम चाहते हैं कि जो 51 साल वाला जो ड्राउट है वर्ल्ड कप के लिए खास करके, वो इसका जिंक्स जो है वो टूटे। हम चाहते हैं कि टीम मतलब कम से कम मेडल तो लेके आए, बाकी जीतना हारना तो दो साइड होते हैं किसी के लिए, लेकिन उम्मीद है कि ये लोग पहले से बेटर है और हम चाहते हैं कि ये मेडल लेके आए। और हमारी मेरी शुभ इच्छाएं, मेरे ख्याल बाकी सब जितने हमारी वर्ल्ड कप की टीम है उनकी सबकी इच्छाएं यही है, उनके साथ है कि भाई कुछ करके दिखाओ, हमारा देश आपकी तरफ देख रहा है, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं, हॉकी जो प्रेमी है वो भी इनकी तरफ देख रहे हैं। तो उम्मीद तो है, बाकी देखो क्या होता है, अब कुछ दिन रह गए शुरू होने में। यही कह सकते हैं कि भाई अभी टाइम मिला है आपको जी, डोंट मतलब गंवाना नहीं है इसमें, पूरी कोशिश करो दिल लगा के अपनी पूरी परफॉर्मेंस जो अच्छी हो सके वो दो।
1: सर इस बार नया फॉर्मेट है, पहले ग्रुप दौर की बात करें तो इंग्लैंड पाकिस्तान और वेल्स है, उसके बाद फिर टॉप टू टीमें जाएंगे, तो पूल कैसा देख रहे हैं सर आप?
4: देखो ऐसा है कि जो पहली ये चार टीमों का जो जो इन्होंने बनाया हुआ है ये पूल, इंग्लैंड तो है ही बहुत अच्छा है, हमारे साथ आसपास ही है, तो वो अच्छी टीम एक तो है ही है, और उसके साथ में वेल्स है और पाकिस्तान है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चलो वेल्स को हमें जीतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर पाकिस्तान पहले भी बहुत हम इनके साथ खेले हैं, सेमीफाइनल फाइनल में हम मिलते थे इनको हमारे टाइम पे भी
1: जी,
4: लेकिन अब इनकी टीम बहुत सालों के बाद आई है, तो मैं ये कहता हूँ चाहता हूँ कि हमारी टीम जो इनके साथ जो है उनके साथ दे शुड बी केयरफुल, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है कहीं भी हो
1: जी,
4: टीम उनकी कितनी भी हल्की हो, बेशक उनको हमने एशिया कप में एशियन गेम में हराया है कई जगह पे, दोनों टीमें अच्छी हैं इंग्लैंड इंडिया
1: जी जी। हरमनप्रीत सिंह की टीम है, वो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और कुछ ऐसी यादें जो एक बार फिर से गुदगुदाती हो, कितने एक रोमांचित करती हो, ऐसा कुछ है?
2: बात फुटबॉल की करें तो सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का 65वां संस्करण 18 अगस्त से दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 24 सितंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में 160 टीमें शिरकत करेंगी। टीमें 3 श्रेणियों जूनियर बालक, जूनियर बालिका और सब जूनियर बालक वर्ग में शीर्ष सम्मान के लिए चुनौती पेश करेंगी। सुब्रतो कप के 65वें संस्करण के बारे में एयर मार्शल एस शिवकुमार ने कहा,
5: इस टूर्नामेंट में 3 कैटेगरी है, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स और अंडर 15 गर्ल्स का है। अंडर 15 गर्ल्स का गेम तो बेंगलुरु में है और अंडर 17 दिल्ली में। 107 टीम

0: पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें दो बॉयज़ टीम्स श्रीलंका से भी हैं और राउंड रॉबिन लीग होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। दो फाइनल्स दिल्ली में होंगे और एक बेंगलुरु में। और इसमें हमारे टैलेंट स्काउट्स भी हैं जो सेलेक्ट करेंगे कुछ टैलेंटेड बच्चे, और 30 ईच कैटेगरी में 30-30 बच्चों को सेलेक्ट करके एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा एक साल के लिए। और टैलेंट स्काउट्स इन टर्म्स ऑफ द क्लब टीम्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी हैं, ताकि अच्छे प्लेयर्स को ढूंढ लिए जाएं, उनको ट्रेन किया जाएं और उनको और नेशनल टीम में खेलने लायक बनाए जाएं। आकाशवाणी के श्रोताओं से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुब्रतो कप के मैचेस दिल्ली और बेंगलुरु में देखें, जो मीडिया कवरेज होगा उसको भी देख लें और अपने बच्चों का खेल को प्रोत्साहन करें। और इनफैक्ट ज़्यादा लोग देखेंगे तो फुटबॉल भी एक इम्पॉर्टेंट गेम हो जाएगा। जैसे आप वर्ल्ड कप देखें, आई थिंक आप हमारे फुटबॉलर्स को भी देखना चाहिए।
1: इस अवसर पर हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने भारतीय महिला फुटबॉलर आशा लता देवी लोइंगटोंग गबाम से मुलाकात की।
2: ऑब्वियसली क्योंकि ये वुमेन्स टीम के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक साल में हम लोग बहुत सारे मैचेस नहीं खेल पाते बाकी एज ग्रुप में, तो ये भी एक अंडर 17 सब जूनियर जूनियर गर्ल्स टीम भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है, और जितना मैचेस खेलेंगे उतना ही जल्दी ग्रोथ होने में इम्प्रूव होगा, तो ये वुमेन्स फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
3: आपने भी भारत के लिए काफ़ी मुकाबले खेले हैं, काफ़ी मैचेस खेले हैं, जब आप खेलती थी अब वक्त कितना बदलाव आप फुटबॉल में देख रही हैं?
2: ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो हम लोग टेक्निकली टैक्टिकली हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, वो काफ़ी चेंजेस हैं। हमारे पास एक टाइम पे जीपीएस ट्रैप नहीं थे, अभी जीपीएस ट्रैप आ गया, और भी बेटर कर रहे हैं प्लेयर, और कंपटीशन ज़्यादा मिल रहे हैं और ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहे हैं, तो काफ़ी अभी बेटर है।
3: महिलाओं की फुटबॉल तो बेहतर जा रही है, लेकिन पुरुषों की फुटबॉल धीरे धीरे पीछे जा रही है। क्यों भारत की फुटबॉल अभी उतना ग्रो नहीं कर रही जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितनी भारतवासी फुटबॉल के जो फैन है उम्मीद करते हैं?
2: ऑनेस्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स फुटबॉल को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं इसकी फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल में ही खेल रही हूँ, तो मेंस फुटबॉल के बारे में मैं ज़्यादा बोल ही नहीं सकती। उन लोग भी अपने तरीक़ा से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब वुमेन्स फुटबॉल और मेन फुटबॉल में थोड़ा डिफरेंस दिखता है, बट उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
4: फुटबॉल की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं दुरंत कप की तरफ, जहां ग्रुप स्टेज का रोमांच चरम पर है और नॉकआउट की तस्वीरें साफ होने लगी हैं। श्रोताओं आपको बता दें, ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका ये 135वां संस्करण है, जो अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 25 जुलाई को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही है, जिन्हें 6 ग्रुप यानी कि ए से एफ में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4 टीमें हैं और ग्रुप चरण में हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से एक एक मुकाबला खेल रही है। स्टेज के बाद शीर्ष टीमें नॉकआउट चरण में जगह बनाएंगी। क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे 16 और 17 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे 19 और 20 अगस्त को। टूर्नामेंट का फाइनल 23 अगस्त को कोलकाता में ही विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में होगा। अब आपको बता देते हैं कल खेले गए मुकाबलों के परिणामों के बारे में। ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FC1 को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ग्रुप में अपना दबदबा कायम रख रही है और 3 मैचों में 3 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। वहीं अगर ग्रुप ई के मैच की बात करें तो नोंगक्से SSNCC ने मुंबई FC को एक तरफा मुकाबले में 7-0 से शिकस्त दी। इस बड़ी जीत के बावजूद भी शिलोंग लाडोंग FC ग्रुप ई में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब अगर बात करें आज होने वाले मुकाबलों में, तो आज 2 अहम मुकाबले हैं। ग्रुप डी में निरोका FC का सामना FC रंगदाई से होगा। FC रंगदाई फिलहाल ग्रुप डी में शीर्ष पर है और 2 मैचों में 2 जीत दर्ज कर चुका है। इसके अलावा मैच होगा ग्रुप बी में मोहम्मदन SC और इंडियन आर्मी FT जो आमने सामने होंगी। इंडियन आर्मी FT ने अब तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं और ग्रुप बी में शीर्ष स्थान पर है। अब अगर मौजूदा ग्रुप स्टैंडिंग की बात करें तो तस्वीर कुछ इस तरीके से है कि ग्रुप ए में शीर्ष पे है मोहन बगान सुपर जायंट, 3 मैच और 3 जीत। ग्रुप बी में इंडियन आर्मी FT, 2 मैच 2 जीत। ग्रुप सी में SC दिल्ली, 3 मैच 3 जीत। ग्रुप डी में FC रंगदाई, 2 मैच 2 जीत। ग्रुप

0: ई में शिलोंग, लाजोंग एफसी 2 मैच 2 जीत और ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 3 मैच 3 जीत। इनमें मोहन बगान, सुपर जॉइंट एससी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपने अपने सभी मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की है। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप डी में आज होने वाले मुकाबले, जो हमने आपको बताया, शीर्ष स्थान की स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। तो दुरंत कप 2026 अब ग्रुप चरण के अंतिम मोड़ पर है और जिस जैसे मुकाबले खत्म हो रहे हैं, नॉकआउट की तस्वीरें साफ होती जा रही है। अब नजरें आज के मुकाबलों और क्वार्टर फाइनल्स की ओर है, जहां खिताब की असली दौड़ शुरू होगी।
1: विदुषी, हर घर तिरंगा रैली, साइकिल रैली का आयोजन भी आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया, और जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत रहा, और यहाँ माई भारत के यूथ वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और पूरे देश, पूरे माहौल को एक देशभक्तिपूर्ण बना दिया। तो पेश है अभिनव की ये खास रिपोर्ट।

0: विकसित राष्ट्र के लिए देश के नागरिकों का समृद्ध रहना बहुत आवश्यक है, और बहुत आवश्यक है उनका सुदृढ़ रहना, शिक्षित रहना, सुनियोजित रहना और सशक्त रहना। और इन सब के लिए बहुत जरूरी है उनका स्वस्थ रहना। स्वस्थता के इसी महत्व को दर्शाते हुए देश की राजधानी दिल्ली आज हर घर तिरंगे के एक अनूठे मुहिम का साक्षी बनी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश इस हफ्ते देशभक्ति के रंग से सराबोर है, क्योंकि इसी हफ्ते हम भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस पूरे हफ्ते भारतीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा मुहिम, जिसके फलस्वरूप आज तड़के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ मिलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल रैली निकाली, जिसका उद्देश्य देशवासियों को देशभक्ति के साथ साथ फिटनेस के लिए भी जागरूक करना था।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग एक फिटनेस का संदेश है, साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिलिंग ट्रैफिक का समाधान भी है, साइकिलिंग तेल की बचत भी करता है, उड़ियामन भी बचाता है। इसलिए चलो हम सब लोग साइकिलिंग करके हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा सशक्त रहे, देश के युवा सक्षम रहे, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए रेगुलर साइकिलिंग करते रहे।
0: उन्होंने इस साइकिल यात्रा को आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों और देश के युवा पीढ़ी को समर्पित किया।
2: आज स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में आज की साइकिल यात्रा हमारी आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के शहीद देने वाले हमारे क्रांतिकारियों को समर्पित करते हैं। आज की साइकिल यात्रा हमारे देश की आजादी को बनाए रखने के लिए कोटि कोटि जिन्होंने शहीद दी है ऐसे वीरों को हम अभिनंदन करते हैं। और आज की साइकिल यात्रा देश जी
0: कार्यक्रम को धरातल पर सुचारू रूप से संपन्न कराने का जिम्मा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव जी ने उठाया हुआ था, जिन्होंने हमें बातचीत में कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि हर घर तिरंगा हो, और ये आह्वान सभी ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया है। ये एक ऐसा समय भी है जिसमें भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, उसी को एक तरह से कहें सेलिब्रेट करने के लिए। और माय भारत के युवा वॉलंटियर्स के साथ आज ये प्रोग्राम तिरंगा रैली, साइकिल तिरंगा रैली, जिससे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और माननीय राज्य मंत्री श्री तोकन साहू जी ने लीड किया। हमारे एथलीट टंडन स्क्वाश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो भी थे इसमें, और तमाम 500 से अधिक माय भारत के वॉलंटियर थे। तो युवा जोश और तिरंगे का जो जोश है वो मिल करके ऐसी कॉकटेल बनाया कि आज ये रैली बहुत ही सार्थक और बहुत ही ऊर्जावान रही। आपने देखा होगा कि रास्ते में भी लोग कितनी उसको शूट किए और उसकी रील्स बनाए। तो ये एक कहने की भारत

0: का एक सम्मान है और जो उसके प्रति कृतज्ञता है उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका था, एक मौका था जिसको हम लोगों ने आज किया।
1: इस सिलसिले में हर घर तिरंगा मुहिम पे हमने बात की आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू जी से।
2: हर घर तिरंगा यात्रा साइकिल रैली के इस कार्यक्रम में हमारे जितने यूथ है यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में यह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर घर तिरंगा, यह हर घर तिरंगा होना ही चाहिए देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, देश को अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए। हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना होना चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये भाव हर एक नागरिक मन में, 140 करोड़ देशवासियों के नागरिकों के मन में भाव जागृत करने के लिए यह साइकिल यात्रा है। देखिए हर व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं, हर नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए।
1: तिरंगा हर घर में ही नहीं, हर दिल में होना चाहिए। और तिरंगा हर एक भारतीय के दिल में है, जिसके जीते जागते सबूत हैं त्रिलोकपुरी के विनोद, जो सुबह 5 बजे साइकिल रैली में शामिल होने के लिए अकेले ही नहीं बल्कि अपने साथ 35 से 40 बच्चों के समूह को भी लाए थे।
3: जिस समय इसका पता चला ना, तो सवेरे ये जो बच्चे हैं ये छोटे छोटे, ये लगा लो कि सोए नहीं 2:30 बजे, क्योंकि रात को सूचना हुई भी ऐसे ऐसे एक जोश से लबरेज थे, और वो लबरेज ऐसे थे कि ये नहीं कि कोई नया नया शौक है। 15 अगस्त को हर बार अपने इलाके में 250 से 150, कभी 300 ऐसी संख्या, जैसे पिछली बार बारिश हो रही थी उसमें भी, कि क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, और आज जो हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने जान दी, कितने माँ बहनों ने क्या क्या मतलब देश को बचाने के लिए करा, और आज अगर ये हम नहीं जागे, हमारी ये युवा नहीं जागी, तो देश तो फिर ख़त्म है। और हम इस तरह की एक्टिविटी अगर देश के उससे करते रहे तो पक्का है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। यहाँ ये बोलने के बाद ना अंदर से एक वो एक राष्ट्रगान के समय ध्यान से दे दो तो आंखों में से आंसू आता, लगता हाँ यार सच में ऐसे देश में जन्म लेके ना सीना चौड़ा रहता। सुबह यहाँ जब से आए हैं मन कर रहा जाओ मत, बार बार यही नारे लगाते रहो।
1: आपका नाम क्या हुआ और आप क्या करते हैं?
3: मैं विनोद हाँ। और एक छोटी सी दुकान पे काम करता हूँ।
1: आपके साथ कितने बच्चे हो रहे हैं?
3: अच्छे हमें 30-35 बच्चे हैं, मतलब वो चंद्र
1: आए हो आप
3: त्रिलोकपुरी, वो बेचारा कोई हमारे लिए 20 साल 18 साल 16 साल की उम्र में बेचारा अपनी जान दे के चला गया, और हम क्या कर रहे हैं, हम बस खाली खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल में बिजी हैं, गलत बात है। हमें मतलब हमारे लिए कोई इतना बड़ा क्रेडिट अगर करके गया है, ऑल क्रेडिट गोज टू देम, उन सबको जाना चाहिए ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं। ये आज कम से कम उनकी आत्मा को याद, चलो अभी है कुछ युवा जिंदा जो मुझे याद करते हैं।
1: खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित साइकिल यात्रा में शामिल होने आए थे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाश खिलाड़ी रमित टंडन, जिन्होंने जकार्ता 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 2021 एशियन टीम चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और 2022 एशियन टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है।
4: इंडिपेंडेंस डे जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इवेंट कंट्री का, हम रेकग्नाइज करते हैं जो देश के लिए अपने जान दिए हैं, और वहाँ पे भी स्पोर्ट्स और साइकिलिंग को रेकग्नाइज करना एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और वो विजन हर एथलीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप देखते हो जो कंट्री का लीडर है वो स्पोर्ट को कैसे बढ़ा रहे हैं। काफी मोटिवेटिंग रहा है मेरे मंत्री जी से भी काफी बात को साइकिल करते स्पोर्ट के बारे में, और अच्छा लगता है जब आपके मिलते हैं।
1: हर घर तिरंगा फहराना है, सेहत को अपनी बेहतर बनाना है, और फिट इंडिया का संकल्प लेकर भारत को विश्व पटल पर जगमगाना है। इसी संदेश के साथ मुझे यानी अभिनव कुमार झा को, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: टेबल टेनिस की बात करते हुए आपको लिए चलते हैं WTT यूरोप स्मैश में। जी हां, स्वीडन के माल्मो में चल रहे ये WTT यूरोप स्मैश में शुरुआती दौर के मुकाबलों ने प्रतियोगिता का रोमांच बढ़ा दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबलों में अपना दमखम दिखाया, जबकि पुरुष और महिला एकल यानी सिंगल्स में कई बड़े उलटफेर ने टूर्नामेंट का समीकरण भी बदल दिया है। भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ने शानदार जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई, वहीं एकल वर्ग में कुछ भारतीय खिलाड़ियों का सफर भी समाप्त हो गया है। शुरू करते हैं मिक्स मिक्स्ड डबल्स से जहां राउंड ऑफ 24 चल रहे थे, तो शुरुआती दौर में भारत के अनिर्बन घोष और अर्चना कामत ने चेक गणराज्य की जोड़ी जान वेलेंटा और ज़ेना ब्लास्कोवा को 3-2 से हराया। चले पुरुष एकल में यानी के मेन सिंगल जहां राउंड ऑफ 64 चल रहे थे, तो भारत के मनुष शाह को दक्षिण कोरिया के चौ दें सियोंग के खिलाफ 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल यानी वुमेन सिंगल के राउंड ऑफ 64 की तरफ, तो वहां भी आयका मुखर्जी को जापान की अनुभवी खिलाड़ी हितोमी सातो ने 3-1 से हराया। वहीं श्रीजा अकुला को रोमानिया की अनुभवी एलिजाबेथा समारा के खिलाफ 3-1 से हार मिली। अब अगर चले पुरुष एकल में जो बड़े उलटफेर हुए हैं, तो वहां गत चैंपियन और घरेलू पसंदीदा ट्रूल्स मोरेगढ़ को जर्मनी की अनुभवी स्टार दिमित्रिज ने सीधे गेमों में 3-0 से हराया है। महिला एकल में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां जापान की स्टार खिलाड़ी और खिताब की प्रमुख दावेदारों में शामिल मीमा ईतो को चीन की उभरती खिलाड़ी कीन युशुवान ने 5 गेम के रोमांचक मुकाबलों में 3-2 से हराया। हालांकि चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त वांग मनयू ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने मिस्र की दीना मशरेफ को सीधे गेमों में 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया। भारतीय दृष्टिकोण से अनिर्बन घोष और अर्चना कामत की मिक्स डबल्स की जीत खास महत्व रखती है। वहीं मनुषा आयका मुखर्जी और श्रीजा अकुला के बाहर होने के बाद भारतीय दल की उम्मीदें अब बचे हुए खिलाड़ियों और मिक्स डबल्स पर ही टिकी हुई हैं। श्रोताओं, अब रुख करते हैं फेंसिंग यानी तलवारबाजी की तरफ, जहां भारत का शानदार प्रदर्शन चल रहा है नाइजीरिया के लागोस में चल रही कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जिसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल है। सबसे पहले अगर महिला फॉइल स्पर्धा की बात करें, तो भारत ने शानदार गोल्ड सिल्वर फिनिश हासिल किया है। कनक लक्ष्मी ने बेहतरीन और नियंत्रित प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि उनकी भारतीय साथी जॉयस अश्विता ने रजत पदक जीता। इसी तरह दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड ने कांस्य पदक जीते। अब अगर चलें पुरुषों की एपी स्पर्धा की तरफ, तो भारत के राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शेरजिन ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण जीता। क्रूगर को रजत, जबकि वेल्स के मार्क और दक्षिण अफ्रीका के लॉस वेस्की सरगई को कांस्य पदक मिला। पुरुषों की सेबर स्पर्धा के रुख करें, तो भारत ने वहां भी अपना कमाल दिखाया है। सिंह करण ने शानदार फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के शिम युंगी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के कुमारेशन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नाइजीरिया के ए ओलुआ फोलोएमी ने भी कांस्य पदक जीत। इस तरह तीसरे दिन भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए और प्रतियोगिता में अपनी मजबूत स्थिति कायम रखी है। अब चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत की नजरें फॉइल, एपी और सेबर की अंतिम स्पर्धाओं पर रहेंगी। पहले 3 दिनों में 29 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है भारतीय दल की कोशिश होगी कि लागोस में इस अभियान का समापन भी शानदार अंदाज में किया जाए।
7: विदुषी, अब बात करते हैं लॉन टेनिस की। तो अगले महीने दक्षिण कोरिया के खिलाफ होने वाले डेविस कप क्वालिफायर्स राउंड 2 के मुकाबले के लिए 5 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित हो गई है। टीम में सुमित नागल और योगी भांबरी के अलावा मानस थामने और दक्षिणेश्वर सुरेश को एकल के लिए रखा गया है, जबकि योगी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी युगल में उतरेंगी। गैर खिलाड़ी कप्तान होंगे रोहित राजपाल। इसके अलावा सिद्धार्थ रावत और अर्णव को रिजर्व के रूप में रखा गया है। बात क्रिकेट के करते हैं, तो दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है और यहाँ नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने कल वेस्ट दिल्ली लॉयंस को 8 विकेट से हरा दिया। वेस्ट दिल्ली ने 7 विकेट पर 146 रन बनाए थे। नॉर्थ दिल्ली ने 2 विकेट पर 150 रन बनाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। आज जो मुकाबले खेले जाने हैं, उसमें ईस्ट दिल्ली राइडर्स का मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार से हो रहा है, और जबकि आउटर दिल्ली वॉरियर्स और वेस्ट दिल्ली लॉयंस के बीच भी आज मुकाबला होना है।
6: श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं स्क्वॉश की, जो चल रहा है पीएसए चैलेंजर टूर 2026, जहां बात करते हैं राउंड 2 में भारत के सूरज कुमार चंद ने मिस्र के हसन को 3-2 से हराया, जबकि संदेश ने आयान को 3-2 से मात देकर शानदार वापसी दर्ज करी। वहीं मिस्र के शीर्ष वरीय मोहम्मद गोहार ने भारत के अरिहंत को 3-0 से हराया। ओम सेमवाल ने रवि दीक्षित को 3-1 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में सोहाल्या हजेम ने अंजलि को 3-0 से हराया। अनन्या नारायणन ने रानी गुप्ता को 3-0 से मात दी, जबकि तन्वी खन्ना, निरुपमा दुबे, कैरोलिना सरामकोवा, मैना वालिद, उन्नति त्रिपाठी और राठिका सीलन भी अपने अपने मुकाबले

0: जीतकर सभी क्वार्टर फाइनल में आ चुकी हैं। आज हुए क्वार्टर फाइनल में तन्वी खन्ना ने निरुपमा दुबे को 3-0 से और सोहाल्या हजेम ने अनन्या को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करा है। पुरुष वर्ग में सूरज ने ओम को 3-1 से हरा के जबकि मोहम्मद ने संदेश को 3-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है। अब कल कोलकाता की इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल के मुकाबलों पर नजर रहेंगी। अब घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि आज के इस प्रोग्राम को हमें विराम देना है। खेल खिलाड़ी से जुड़े रहिए। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता हैं शाहनवाज खान, मुझे विदुषी वत्स और मेरे साथ ही नवीन जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये 4 ट्रिलियन

0: डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्वतंत्रता का पर्व, सेवा का पथ, विकसित भारत 2047। वार्ताकार हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार। श्रोताओं नमस्कार। स्वतंत्रता केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक सतत जिम्मेदारी है। जब देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तब युवाओं की ऊर्जा, सेवा भाव और सामाजिक सहभागिता इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी। संतोष जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आपका।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और बस 3 दिन बाद ही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस संकल्प लेने का, आगे बढ़ने का दिन होता है और कोई भी देश उसकी युवा शक्ति के साथ ही आगे बढ़ता है, बढ़ सकता है। तो आज की तारीख में आप युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं विकसित भारत 2047 के संदर्भ में?
1: देखिए, युवाओं की भूमिका को मैं किस संदर्भ में देखता हूँ उससे अलग अगर आप देखेंगे कि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की यात्रा का शुभारंभ किया, अमृत महोत्सव वर्ष 2 साल मनाया गया इस देश के अंदर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि यही समय है, सही समय है, एक नारा बुलंद किया था। वो युवाओं के संदर्भ में जो उन्होंने कहा था कि युवा शक्ति जो है वो भारत का परचम लहराएगा। और जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया, जो पंच प्रण जो लिए गए थे लाल किले से, उसमें जो एक विकसित भारत का संकल्प था, उस विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला सारथी अगर कोई है तो युवा है। अगर आप देखेंगे तो जनसांख्यिकी के अनुसार जो है इस समय भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लगभग आपको 65% आबादी हमारी युवा श्रेणी में आती है। तो युवाओं की जो बात उन्होंने की उसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि 2047, कोई भी ये सोचे कि 2047 100 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये 25 साल का एक कालखंड तय किया वो आखिर कैसे तय किया, उसके पीछे एक पूरी रणनीति है, एक पूरी सोच है। वो सोच ये है कि 2050 के आसपास, आप जितने भी जैसे UNPF की रिपोर्ट देख लीजिए, पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि 2050 के बाद भारत भी बहुत तेजी से एक बुजुर्ग देश की श्रेणी में पहुंचने वाला है। यानी जो भारत युवा है वो इस एक निश्चित कालखंड में है और इस कालखंड में भारत को विकसित भारत बनाना है तो आप समझ सकते युवाओं को लेकर उनकी सोच क्या है, युवाओं को लेकर उनकी ही नहीं इस देश की सोच क्या है। मैं क्या सोचता हूँ उससे इतर आपको ये सोचना होगा कि इस देश ने एक विराट लक्ष्य लिया है और उस लक्ष्य में अगर युवा सबसे बड़ा सारथी है तो उसके पीछे जो एक संकल्प शक्ति या जो ऊर्जा काम कर रही है वो युवाओं की है। और युवाओं के बारे में, युवाओं को लेकर के, युवाओं को इस पूरे अगर 12 साल की जो अभी इस सरकार की यात्रा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे उनकी आकांक्षाओं को, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको नया आकार देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए कई ऐसी पहल की गई। 3 साल बाद देश के अंदर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। अभी आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक घोषणा की कि हम अगले 10 साल में, तथी मैकाले ने जिस तरीके से हमारी मानसिकता को जकड़ने की कोशिश की थी उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक ऐलान किया है कि जब उस मैकाले की जो पद्धति आई थी उसके जब 200 वर्ष पूरे होंगे, यानी 2035 तक उसको खत्म करने की जो है उनकी एक सोच बनी।

0: यह जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यही समय है, सही समय है, और अगले 25 वर्षों में जो भारत आज युवा देश है उसकी आबादी, उसके जनसांख्यिकी का जो व्यवस्था होगी वो कुछ और होगी, तो ये वो सही समय है जबकि देश के युवाओं को, देश की युवा शक्ति को एकजुट होना है और इस अमृत काल के कालखंड में देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देना है। संतोष जी, देश का जब जो नेतृत्व होता है, जब इस तरह का आह्वान करता है और साथ के साथ जब युवाओं में जो हमारे परिवार हैं, शिक्षा संस्थान है या फिर जो मीडिया है, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश के युवाओं में वैल्यू सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
0: देखिए, परिवार हो या देश हो या राजनीति हो या मीडिया हो, सबसे बड़ा जो आधार है वो है विश्वास, भरोसा। आप याद करिए कि आप छात्र जीवन में जब होंगे उस समय राजनीति के प्रति क्या एक वातावरण था, राजनीति को बहुत एक हेय दृष्टि से देखना, उस पे एक भरोसा पैदा नहीं होना, विश्वास नहीं होना कि नहीं ये जाएगा तो भी राजनीति में ऐसा ही करेगा। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि देश में एक विश्वास का वातावरण अलग तरीके से आया है, लोग बहुत जागरूक हुए हैं और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि कभी बहुत सकारात्मक रूप से बहुत चीजें आगे बढ़ती है और जहां लगता है कि कुछ चीजें गलत हो रही है तो उसके खिलाफ एक रोष भी उत्पन्न होता है, युवा आगे आते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जो हमारा भरोसा है वो किसी भी चीज से सबसे महत्वपूर्ण है जो कि देश को आगे बढ़ाएगा। संतोष जी, जैसे हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था और राजनीति में 1,00,000 युवाओं को जोड़ने के लिए संकल्प लिया था उन्होंने, तो जो ये संकल्प है, आज की युवा शक्ति जब राजनीति में आ रही है या जो पहले की जो राजनीति की परिपाटी थी जैसे आपने कहा, तो उसमें कुछ परिवर्तन जरूर आया है, तो जो आज की पीढ़ी जब राजनीति में उतर रही है तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आप रेखांकित करना चाहेंगे कि ये परिवर्तन आ रहा है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री ने जब 1,00,000 लोगों की बात की तो उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी। उन्होंने कहा था जिनके पास जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत जो है ना, उससे दूर युवा, उससे अलग युवा, हम उनकी बात कर रहे हैं। अमूमन क्या हो जाता है ना कि भाई अगर पिता कुछ कर रहा है तो बेटा भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। राजनीति में भी लगभग लगभग वही एक स्थिति बनने लगी थी जिसको प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की बात की, और आपने देखा होगा परिवारवाद की राजनीति में क्या होता है कि आप योग्य हो या नहीं हो, चूंकि आप फलाने के पुत्र हैं पुत्री हैं तो आप राजनीति में आपको एक शीर्ष मुकाम मिल जाएगा, एक अच्छी जगह मिल जाएगी, लेकिन उससे होता क्या है, जो नीचे युवा है, जो बाकी युवा है, उनको ये लगता है कि नहीं यार, नहीं भाई मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं फलाने का बेटा नहीं हूं, मैं सिल्वर स्पून नहीं हूं, मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूं। तो ये जो एक भाव पैदा हो रहा था, शायद इस तरह के आह्वान से और इस तरह की पहल से एक भरोसा पैदा होता है युवाओं के अंदर कि नहीं, शायद अब हमें भी मौका मिलेगा। और मैं इस आह्वान को और इस प्रयास को उस मैं देखता हूं कि जो एक्सपर्टीज है सरकार चलाने में, सिस्टम चलाने में, सिंपल ये नहीं है कि कोई फलाना व्यक्ति आके नेता बन गया या मंत्री बन गया या सांसद हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर वो उस योग्य नहीं होगा, कुर्सी पे आके बैठ तो सकता है लेकिन अगर वो योग्य नहीं होगा, वो बहुत सकारात्मक देश के अंदर नहीं जा पाएगा। जो प्रधानमंत्री ने बात की, हमने उस समय उसका अध्ययन भी किया था, जो हमने जो उनके निहितार्थ को समझने की कोशिश की, उसमें हमने ये पाया कि ये ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जिन्होंने फील्ड में अच्छा योगदान दिया है और उनके जो कार्यकलाप हैं या उनके जो तौर तरीके हैं उसका एक प्रतिफल, उसका एक अच्छा फल देश को मिले, इस दिशा में मैं इसको देखता हूं।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर मन से बहुत बार कहा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो युवा शक्ति है वो सभी को समान अवसर मिले। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसको कहते हैं अंत्योदय की संकल्पना, तो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सके, इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है और होने भी चाहिए। संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज हम आर्थिक मोर्चे पर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार अपने प्रयास कर रही है, कॉर्पोरेट अपने प्रयास कर रही है, स्टार्टअप्स कल्चर देश में डेवलप हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा विकसित भारत होगा, इसमें आर्थिक विकास से विकसित भारत का सपना पूरा हो जाएगा या इसमें और कौन सी ऐसी चीजें आप देखते हैं कि सामाजिक संवेदनशीलता या फिर जो युवा शक्ति है उसमें सेवा भाव की जो एक तरीके से कहें कि मूल तत्व है, जो भारत की जड़ें हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको उसका भी कितना योगदान रहने वाला है?
0: देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था हो वो किसी भी देश की एक सिस्टम के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आप एक परिवार की अर्थव्यवस्था पे अगर आप ले आए तो वो रीढ़ है, वो एक बैकबोन है। लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कर देने से आप देश में जो एक संतुष्टि का माहौल, एक जो अच्छा एक वातावरण जो होता है, भाव नहीं आता है। आप आर्थिक रूप से मजबूत तो हो सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ संवेदनशीलता हो या फिर जो सुधार के और भी तरीके हैं उसको भी एड्रेस करना पड़ता है। पहले जो इकोनॉमी हमारी थी बहुत इनफॉर्मल थी। अब आप देख लीजिए, जितने श्रोता सुन रहे हैं मुझे, मैं आपसे

0: कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप लास्ट टाइम बैंक कब गए, ये परिवर्तन कैसे आया?
1: जी बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और निश्चित तौर पर विकसित भारत का मार्ग केवल विकास योजनाओं से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों, सेवाभाव और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से प्रशस्त होगा। संतोष जी, आप आकाशवाणी में आए और हमें बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था स्वतंत्रता का पर्व, सेवा का पथ, विकसित भारत 2047। वार्ताकार थे संतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भेंटकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी।

0: नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि पंच पदकानि। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमंत्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः। संसद संचालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तिकरणं करोति। राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि पंच पदकानि इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। समय शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: और मैं हूँ लोकेंद्र।
1: और मैं हूँ मनजीत कौर। और आज हम खास कार्यक्रम हैं, जैसे कि हम सभी को पता है। और आज है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को हम 2 दिवस मनाते हैं। तो
0: हाँ
1: वो 2 दिवस कौन से हैं लोकेंद्र भाई?
0: देखिए, सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अगला है विक्रम साराभाई जयंती।
1: जयंती। जी हाँ, हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी होती है। और ये दोनों ही दिन युवाओं को विज्ञान और देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी इसे कहा जाता है, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में आधिकारिक रूप से घोषित किया था, और पहली बार मंजीत जी इसको 2000 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य जो है क्षमता, प्रतिभा और विचारों का योगदान को पहचानना है, और इसके साथ साथ सामने आने वाली चुनौतियों को भी आकर्षित करना है। युवा जो हमारे हैं देश के, किसी भी देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं, और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, तकनीकी उद्यमिता और सामाजिक बदलाव में युवाओं को की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल लोकेंद्र भाई। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, रचनात्मकता और समाज व राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका को समर्पित होता है।
0: हाँ
1: और साथ ही आज महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की भी जयंती है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को देश के विकास से जोड़ने तथा युवाओं को वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: बिल्कुल। देखिए मंजीत जी, और इसके साथ साथ विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति की स्थापना भी की थी, और इसके साथ साथ आगे चल के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का विकास भी की नींव रखी थी।
1: बिल्कुल। और युवा शक्ति और वैज्ञानिक सोच, यही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। आज के दिन आइए संकल्प लें कि हम युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा देंगे, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा देंगे और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान भी देंगे।
0: बिल्कुल। और देखिए मंजीत जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं राम सिंह।

0: रंजीत बहन। अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये देशभक्ति रागनी, कलाकार थे राम सिंह।
1: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, और अब हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान।
0: बिल्कुल,
1: और जैसा कि हम सभी को पता है कि हर घर तिरंगा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक खास पहल है। ये अभियान लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने और राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इस वर्ष ये 9 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा।
0: बिल्कुल मंजीत जी, इसके साथ साथ मैं अपने भाइयों को ये भी बता दूं कि ये अभियान केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जन भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। जब बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और विभिन्न सामाजिक वर्ग एक साथ तिरंगे के सम्मान में भाग लेते हैं तो इससे राष्ट्रीय एकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है।
1: बिल्कुल, और अभियान की मुख्य बात है कि तिरंगा तो हम फहराएंगे, साथ ही साथ सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं, और यही है राष्ट्रीय एकता। ये कार्यक्रम देश की एकता, अखंडता और गौरव का भी प्रतीक माना जाता है। और अब हम आपको सुनवाते हैं वार्ता जिसका विषय है हर घर तिरंगा अभियान, जन भागीदारी और राष्ट्रीय चेतना। वार्ताकार हैं अनुराग अन्वेषी, वरिष्ठ पत्रकार।
0: आइए सुनते हैं।
2: हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आने वाला है। इस दिन को हर भारतीय गर्व का दिन मानता है। इस दिन हम अपने राष्ट्रीय झंडे को गर्व के साथ फहराते और लहराते हैं। हमारे भारत का यह राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 3 रंगों से बना महज कपड़ा भर नहीं है, बल्कि यह है हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक। हमारा तिरंगा हमें उन असंख्य आज़ादी के दीवानों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए खुद को झोंक दिया था। आज़ादी के 75 बरस पूरे होने के मौके पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान सिर्फ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्यारा तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति गर्व बनाए रखना है, देश के विकास में उनके दायित्वों की याद दिलाए रखना है और इस विकास में उनके शामिल होने की इच्छा को प्रेरित करना है। आज जब भारत विकास, इनोवेशन और ग्लोबल लीडरशिप की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब हमारी राष्ट्रीय एकता और नागरिक चेतना का महत्व दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हर घर तिरंगा अभियान देश के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने वाला प्रभावशाली जन आंदोलन बनकर उभरा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान साल 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश की जनता को अपने अपने घरों, अपने अपने प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, कार्यालयों और अन्य संस्थानों पर तय वक्त के दौरान तिरंगा

0: फहराने को प्रेरित किया गया, उनका आह्वान किया गया। इसके साथ साथ देश के लोगों को डिजिटल माध्यमों पर भी तिरंगे के साथ एक्टिव होने का संदेश दिया गया। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर तिरंगे के साथ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। सरकार के इस अभियान को लोगों ने जबरदस्त रूप से अपनाया। देखते ही देखते हर घर तिरंगा ने देश भर में फैले जन आंदोलन का रूप ले लिया। सोशल साइटों से लेकर गली गली मोहल्ले तक लहराता हुआ तिरंगा दिखने लगा। भारतीय आवाम के गर्वीले चेहरे दिखने लगे। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कायदे कानून में समय समय पर जरूरी संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने भी इस अभियान में जनता की भागीदारी को सहज सरल बनाया। आम आदमी राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगा और इस तरह हर घर तिरंगा अभियान का दायरा बढ़ता गया बढ़ता गया। बताते चलें कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि इसका जो मौजूदा स्वरूप है उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तीन रंगों के प्यारे इस हमारे तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा रंग हैं। इन रंगों का अपना महत्व है, इसके अपने प्रतीक हैं। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह हमारे साहस, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग सत्य, शांति और पारदर्शिता का संदेश देता है, जबकि झंडे के निचले हिस्से का हरा रंग हमारी समृद्धि, हमारे विकास और प्रकृति से जुड़े हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस झंडे के बीच में गहरे नीले रंग का एक गोल चिन्ह है। यह गोल चिन्ह अशोक चक्र कहलाता है। यह अशोक चक्र हमारी लगातार हो रही प्रगति, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी गतिशीलता का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा प्यारा तिरंगा भारतीय संविधान की मूल भावना, लोकतंत्र, समानता और विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। देश की भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के बावजूद तिरंगा हर भारतीय को समान रूप से जोड़ता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान सिर्फ संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह हम सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसके लिए सामूहिकता जरूरी है। इसी तर्ज पर किसी भी राष्ट्रीय अभियान की कामयाबी किसी सरकार या उसकी योजनाओं से ज्यादा उस देश के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। ये बेहद खुशी की बात है कि भारत के केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को समाज के हर वर्ग का समर्थन जोशों खरोश के साथ मिला। गांव और शहर में लाखों परिवारों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों ने प्रभात फेरियां निकाली, तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया, निबंध प्रतियोगिताएं करवाई, इस विषय पर पेंटिंग कंपटीशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निजी संस्थानों, उद्योगों और व्यापारिक संगठनों ने भी इस अभियान को तहे दिल से समर्थन दिया। इस अभियान से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों, युवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनता को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में जागरूक किया। देश के कई हिस्सों में स्थानीय समुदायों ने सामूहिक रूप से तिरंगा यात्राएं निकाली, जिससे सामाजिक एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना और अधिक मजबूत हुई। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए किसी भी राष्ट्रीय अभियान की कामयाबी में युवाओं की भूमिका खास होती है। हर घर तिरंगा अभियान में युवाओं ने सोशल मीडिया, डिजिटल अभियानों और जन जागरूकता कार्यक्रम के जरिए कमाल का काम किया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने परिवारों और समुदायों को इस अभियान से जोड़ने का बीड़ा उठाया। इन युवाओं ने राष्ट्रीय झंडे के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों की जुड़ी जानकारियां साझा कर समाज में सकारात्मक माहौल बनाया। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, भारत स्काउट्स गाइड्स, नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ अन्य युवा संगठनों ने भी इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका अदा की। देश की महिलाओं ने इस अभियान को सामाजिक चेतना से जोड़ने में विशेष योगदान दिया। स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और स्थानीय संगठनों ने तिरंगा जागरूकता अभियान चलाए। देश के कई हिस्सों में महिलाओं ने हाथ से तिरंगा बनाया और स्थानीय स्तर पर लोगों को उनके सम्मान और सही इस्तेमाल की जानकारी दी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या किसी एक वर्ग विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। यह हम सब जानते हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी राष्ट्र निर्माण के प्रमुख केंद्र होते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं ने विद्यार्थियों में देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय झंडे के इतिहास पर व्याख्यान, स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेष कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा गया। इन गतिविधियों ने केवल औपचारिक आयोजन का रूप नहीं लिया, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी पैदा की। डिजिटल क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया ने हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिकों ने अपने घरों पर फहराए गए तिरंगे के साथ फोटो, वीडियोज और मैसेजेज साझा किए। इससे अभियान सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी तक सीमित न रहा, बल्कि डिजिटल जन आंदोलन भी बन गया। ऑनलाइन मंचों के जरिए राष्ट्रीय झंडे का इतिहास, उसके सम्मान से जुड़े नियम और आजादी की लड़ाई की प्रेरक कहानियां बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए गए। इससे खासकर युवाओं में राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ सिर्फ देशभक्ति की भावना तक सीमित नहीं है। इसमें संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन, सामाजिक सद्भाव, नागरिक दायित्वों का निर्वहन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना भी शामिल है। हर घर तिरंगा अभियान ने देश के लोगों को यह संदेश देने में कामयाबी पाई कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों या शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी बरतकर, अनुशासन रखकर, स्वच्छता का ध्यान रखकर, पर्यावरण बचाकर, सामाजिक सद्भाव बनाए रखकर और कानून का पालन कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। जब कोई नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराता है तो वह सिर्फ एक ध्वज नहीं लगाता, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और उत्तरदायित्व की सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी करता है। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों वाला विशाल राष्ट्र है। ऐसी विविधता के बीच हमारा राष्ट्रीय ध्वज हम सब भारतीयों की साझा पहचान बन जाता है। हर घर तिरंगा अभियान ने देश के तमाम समुदायों, वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया। इस अभियान ने यह दिखाया कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की सामूहिक भावना का प्रतीक है। इस तरह हम पाते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान ने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकजुटता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान की व्यापक सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। कई स्थानों पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सही उपयोग, उनके सम्मान और निर्धारित नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। कुछ मामलों में ध्वज के अनुचित प्रदर्शन या उपयोग की घटनाएं भी देखने को मिली। इसलिए जरूरी है कि नागरिक राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े प्रावधानों और उनके सम्मान के नियमों की जानकारी रखें। ध्वज को स्वच्छ, सम्मानजनक और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त अभियान का उद्देश्य केवल कुछ दिनों तक ध्वज फहराना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय मूल्यों को जीवन में आत्मसात करना होना चाहिए। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल आर्थिक विकास से संभव नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जागरूक, उत्तरदायी और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाले नागरिकों की आवश्यकता होगी। हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। अब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यह अभियान नागरिकों को सिर्फ अतीत के गौरव से नहीं जोड़ता, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश भी देता है। हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, जन सहभागिता और भावनात्मक एकता का व्यापक जन आंदोलन है। इसने देश के करोड़ों नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से एक साझा पहचान और उद्देश्य से जोड़ा है। अभियान ने यह सिद्ध किया है कि जब सरकार और समाज मिलकर कार्य करते हैं, तब राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। आज जरूरत इस बात की है कि तिरंगे के प्रति सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित न रहे, बल्कि उसके आदर्श, साहस, सत्य, शांति, प्रगति और राष्ट्र सेवा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान तभी सार्थक होगा जब हम संविधान के मूल्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करें और भारत को समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में सक्रिय योगदान दें।
1: मंजीत बहन, अभी हमारे श्रोता भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता का विषय था हर घर तिरंगा अभियान, जन भागीदारी और राष्ट्रीय चेतना। वार्ताकार थे अनुराग अन्वेषी, वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली।
2: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, और अब हम सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह का देशभक्ति गीत।

0: मंजी जी,
1: जी
0: अभी हमारे
1: लोकेंद्र
0: भाई बहन
1: जी।
0: सुन रहे थे, ये देशभक्ति रागनी कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। और इसी के साथ आज हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम। इस
1: राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीएनएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों की कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयुष जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है।

0: नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अशिता ने रजत और कुमारिशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं मंजीत कौर और मेरे साथ हैं
1: लोकेंद्र वर्मा।
0: बिल्कुल, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं लोकेंद्र।
1: देखिए बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ मनोरंजन भी होगा। देखिए शाम का समय में हमारे जो किसान भाई हैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं मंजीत जी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सुनने के लिए सभी फ्री होते हैं और काम रेडियो सेट को लेके अपने चौपाल पर बैठे आते हैं और इकट्ठा होते हैं और सुनते हैं कि नई नई जानकारी भी सुनाएंगे, मनोरंजन भी कराएंगे, भजन भी सुनाएंगे, उपदेश भी, तो बेसब्री से इंतजार करते हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि हम सभी को पता है, एक और जहां 15 अगस्त है और वहीं दूसरी ओर इस समय सावन का मौसम है और रिमझिम रिमझिम बरसातें भी हो रही है और कैच द रेन जैसे हम कैंपेन हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, तो हमें किस तरीके से इसको हम भूल सकते हैं, कैच द रेन।
1: हाँ देखिए, और जो बरसात का मौसम है, जैसे आपने कहा कैच द रेन, इस मौसम में हमें अपनी जो बरसात के पानी को हमें संचित करना है ताकि पानी की आगे आने वाले समय में कमी ना हो, क्योंकि जितना हम पानी की बचत करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। देखिए हमारे रहीम जी ने कहा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यानी पानी के बिना जीवन संभव भी नहीं है।
0: बिल्कुल, जल बिना जीवन नहीं संभव है और कृषि एक ऐसा जो एक क्षेत्र है जहाँ पर पानी के बिना हम कोई भी संभावना हो ही नहीं सकती है, और इस तरीके से क्योंकि इस समय भरपूर बारिश हो रही है और इसका हमें सदुपयोग उठाना चाहिए और जो वर्षा का जो पानी है उसे हमें एकत्रित करना चाहिए, जो कि खेत होते हैं हमें खेत के अंदर भंडारण करना चाहिए, यानी कि इकट्ठा कर देना चाहिए, बड़े बड़े गड्ढे बना के उसमें एकत्रित कर लेना चाहिए, या फिर शहरों के अंदर हम बात करें तो जैसे कि बेसमेंट के अंदर टैंक्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर हमें पानी को इकट्ठा कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। लोकेंद्र भाई,
1: बिल्कुल, ये तो रही पानी की बात, और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि बरसात के मौसम में, इस मौसम में हमें अपने पशुओं का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये बरसात का मौसम हमारे लिए लाभदायक भी और बहुत सी चीज़ों के लिए नुकसानदायक भी है। देखिए बरसात के मौसम में जहाँ पशुओं को बांधते वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, पशुओं को सूखे साफ और हवादार पशुशाला में रखें और फर्श पर पानी जमा ना होने दें, और इसके साथ साथ पशुओं को साफ और सुरक्षित पेयजल यानी कि पानी पिलाएं और उनको दूषित उनको कोई ऐसा पानी ना पिलाएं जिससे उनको बीमारी लगे, और चारे वाली जगह जो जहां चारा रखते हैं उसमें नमी ना होने दें और बारिश के में बचाव रखें। जहां होता क्या है मंजीत जी के, जहां चारे को कभी कभी बरसात के मौसम में फफूंदी भी लग जाती है तो उनको बहुत सारी परेशानी भी होती है, और इस मौसम में उनका विशेष रूप से हमें ध्यान देना है।
0: बिल्कुल, हमें संक्रमण से बचना चाहिए क्योंकि बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है, और पशु ही नहीं हम इंसानों को भी ये खास ध्यान रखना चाहिए, अपनी आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए ताकि हर स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ ही हमारा जो स्वास्थ्य होगा उससे ही एक अच्छा, अगर हम कहें तो हम भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मंजीत जी, और देखिए अब शाम का समय है और अपने भाई हमारे भाई जो इंतजार करते हैं मनोरंजन का, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं और कृष्ण भजन सुनवाते हैं कृष्ण कुमार की आवाज़ में।

0: मंजीत बहन,
1: जी
0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये कृष्ण कुमार की आवाज़ में ये भजन।
1: और अब हम बात करते हैं अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अनावृष्टि अर्थात सूखा, अतिवृष्टि मतलब बाढ़ या भारी बारिश। दोनों ही विपरीत मौसम स्थिति है जो फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है और इससे निपटने के लिए खेत में बहुत सारे उपाय की जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल, तो इसी से संबंधित आज हम अपने भाइयों को एक जानकारी सुनवाते हैं और जानकारी का विषय है अनावृष्टि और अतिवृष्टि की दिशा में फसल प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं कुशकर्ण दीप सिंह, शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं।

0: दीप सिंह।
1: किसान भाइयों नमस्कार। बारिश खेती के लिए निसंदेह फायदेमंद साबित होती है और खरीफ की फसलों के दौरान तो बारिश का महत्व बहुत अधिक रहता है। बहुत सारे हमारे देश के क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश आधारित हैं और बारिश आधारित फसलें वहाँ उगाई जाती हैं, जबकि देश भर का कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो बारिश के अधिक होने से परेशान रहता है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिला है कि बारिश का जो एक समय माना जाता था जुलाई का महीना, जून के आखिर में और जुलाई के शुरुआत में बारिश शुरू हो जाती थी और उस समय हमारी जो फसलों की रुपाई थी या बिजाई थी वो हम उस समय किया करते थे, लेकिन इस मौसम चक्र के परिवर्तन ने उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो अधिक बारिश होना और कम बारिश होना, दोनों के जो पहलू हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुशकर्ण दीप सिंह, शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। आपका स्वागत है।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: खुशकर्ण जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि, ये मौसम चक्र में बदलाव क्या कारण है इसका?
2: देखिए, मौसम चक्र में या हम सही से बोलें तो जो जलवायु जो परिवर्तन हो रही है
1: जी,
2: उसका मुख्य जो कारण है जो प्रदूषण हम देख रहे हैं
1: जी,
2: जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो आपकी मीथेन जो हमारे खेतों से भी निकलती है, तो इन सब की वजह से क्या है, जो तापमान बढ़ता जा रहा है लगातार
1: जी,
2: इसके कारण हमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आज से अगर अपने 30-40 साल पहले की बात करें या इवन 20 साल पहले की भी बात करें तो बारिश एक फिक्स रहता था टाइम भाई, अगर जुलाई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आनी है तो उस टाइम पे बारिश आती थी
1: जी।
2: तो अब क्या है, बारिश या तो पहले आ रही है अपने टाइम से या फिर अपने टाइम से बाद आ रही है, और जो उसकी अमाउंट है ना कितनी बारिश हमें मिल रही है
1: उसमें भी परिवर्तन,
2: उसमें भी
1: हुआ
2: परिवर्तन है। एक समय पे ज्यादा हो रही है फिर बीच में उसमें जो है गैप बहुत ज्यादा।
1: इसमें मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब कम बारिश होती है तो उस स्थिति में किसान कैसे अपनी फसलों का प्रबंधन करें, कैसे बुआई करें, कैसे उस समय उनका प्रबंधन करें?
2: पहले तो कम बारिश में हमें ये चीज देखनी है भी बुआई के लिए जल्दी नहीं करनी
1: जी,
2: अच्छी बारिश हो उसके बाद ही बुआई करें। तो कम से कम आपकी 50 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर बारिश हो, एक सिंचाई जितना उसमें पानी हो, फिर हमें बुआई के लिए जाना चाहिए। कम बारिश के बाद बुआई करेंगे या तो उसका अंकुरण ही नहीं होगा, या फिर अगर अंकुरण हो जाएगा तो उसके बाद में जो है वो पौधा फिर हम दोबारा बुआई के लिए जाएंगे तो उससे हमारा खर्चा बढ़ेगा
1: जी।
2: तो हमें वेट करना चाहिए भी जब अच्छी बारिश हो उसके बाद ही हम बुआई करें। दूसरी यहाँ पे स्थिति आती है भी अगर बारिश लेट हो जाती है, मान लीजिए भी किसी जगह पे बारिश नॉर्मल उसका आने का समय है भी जून के आखिरी सप्ताह में बारिश आनी है, तो वो बारिश आ रही है जुलाई के मध्य में या जुलाई के आखिर में, तो उस समय हमें दूसरी फसलों के लिए जाना चाहिए जो कि कम अवधि की हैं, या फिर उसी फसल की ऐसी किस्म का हमें चयन करना चाहिए जो कम अवधि की हो,
1: कम अवधि वाली और
2: उन्नत
1: जो किस्में हैं,
2: सूखे को सहन कर सके जो। जैसे के लिए बाजरे के लिए हम जा सकते हैं HHB 67 इम्प्रूव्ड के लिए है ना
1: जी,
2: और धान के लिए हम जा सकते हैं DRR-42, ज्वार के लिए हम जा सकते हैं CSV 42 के लिए, तो इस तरह की जो किस्में रहती हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता है और सूखे को सहन कर सकते हैं।
1: तो खुशकर्ण जी, इसमें आप बताएं कि जब ये अनावृष्टि होती है तो इसमें जो मुख्य फसलें हैं जैसे बाजरा का आपने जिक्र कर दिया, इसके अलावा कौन सी फसलें हैं
2: कम बारिश में जो हम ले सकते हैं? बाजरा ले सकते हैं, ज्वार के लिए हम जा सकते हैं
1: जी,
2: और उसके बाद में जो दलहनी फसलें रहती हैं जैसे आप मूंग लगा सकते हो, तो इनकी क्या अवधि कम रहती है और सूखे को भी ये सहन कर सकती हैं।
1: सहन कर सकती हैं। अगर अब कई बार ऐसी दशा होती है, पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि अगस्त के आखिर में और सितंबर की शुरुआत में उस समय भारी बारिश होती है, खेतों में जल जमाव होता है, जल जमाव के कारण अगली फसल भी प्रभावित होती है, वो भी समय पर उसकी बुआई नहीं हो पाती, तो उस दशा में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
2: देखिए, ज़्यादा बारिश से बचने के लिए तो इसका जो है हमें बुआई के टाइम ही ध्यान रखना है, उस टाइम पे ही हमें खेत के अंदर नाली बनानी है, जैसे हर 10-12 फीट पे अपने एक नाली बना सकते हैं
1: जी,
2: तो वो दोनों ही स्थिति में हमारे लिए लाभदायक है। अगर बारिश कम हो रही है, जितनी भी बारिश होगी उस जो नाली में पानी जाएगा तो वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा ना, तो आगे जब बारिश नहीं होगी तो उस टाइम पे जो है पौधा उसे यूज कर लेगा। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वही नाली आप हमारी जल निकासी की तरह काम करेगी, वहां से जो है वो खेत से पानी बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज और कर सकते हैं भी, जिस तरह से हम सब्जियां लगाते हैं भी, मेड़ पे बुआई कर दी और जो नाली रहती है वहां पे हम पानी देते हैं, तो उस तरह से मेड पे भी बुआई कर सकते हैं, या फिर हम बेड बना के जो चौड़ी क्यारी रहती है उस पे भी हम बुआई कर सकते हैं, ताकि जो अतिरिक्त पानी है वो नाली के माध्यम से खेत से बाहर निकल जाए,
1: वो फसल को खराब ना करे,
2: फसल को खराब ना करे।
1: जी, जब भारी बारिश से जल जमाव हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बेड तक जो सतह है उस पर भी पानी जमा होता है, तो जो सब्जी फसलें हैं उनको तो उगाने के और भी कई आधुनिक तरीके हैं, उनके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बता दें।
2: सब्जी के लिए देखिए, सब्जी जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी प्रभावित होगी ज़्यादा बारिश के कारण, क्योंकि जो मुख्य जो सब्जी है वो जब लगती है, अगर उस वो पानी के कांटेक्ट में आ गई ना, स्पर्श हो रहा
1: पानी
2: पानी
1: और
2: से,
1: मिट्टी दोनों के
2: हाँ पानी और
1: में जब
2: मिट्टी के
1: आएगी
2: कांटेक्ट में जब आ गई,
1: जी
2: तो वो उस पे
1: खराब होगी,
2: खराब हो जाएगी
1: उसका
2: ना,
1: विकास रुक जाएगा।
2: उसका विकास रुक जाएगा। तो
1: जी
2: उसके लिए हम मल्चिंग के लिए जा सकते हैं, जो प्लास्टिक मल्च रहती है, ताकि अगर नीचे प्लास्टिक की वो लेयर रहेगी तो वो मिट्टी और उस पानी के कांटेक्ट में ना आए, और हम उसे मेड़ के ऊपर लगा सकते हैं, और चौड़ी क्यारी ना बेड बना के भी हम सब्जी को लगा सकते हैं।
1: अगर हमारी किसी फसल में अधिक जल जमाव हो गया अधिक
2: जी
1: बारिश के कारण, तो उस समय हमें फसल प्रबंधन कैसे करना है?
2: जी सबसे पहले तो जब भी हमारे खेत में पानी खड़ा हुआ है, तो जितना जल्दी वो निकल जाए उतना ही हमारे लिए लाभदायक रहेगा,
1: जी
2: जल्द से जल्द हमें जो है वो पानी वहाँ से निकालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, अभी अगर लगातार बारिश हो रही है तो देखो, जड़ों के माध्यम से पौधा पानी भी लेता है,
1: हाँ
2: पोषक
1: जी
2: तत्व भी
1: जी
2: लेता है ना, तो एक काम हम ये कर सकते हैं भाई, पौधे की पत्तियों के ऊपर हम पोषक तत्वों का छिड़काव कर दें,
1: जी
2: जैसे हम यूरिया 1%, 0.5 से लेके 1% घोल बना के
1: जी
2: यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो वो भोजन ले रहा है ना पोषक तत्वों के रूप में, जड़ों
1: जी
2: से अब वो नहीं ले पा रहा, पत्तियों के माध्यम से हम वो उसे भोजन दे
1: उपलब्ध
2: सकते हैं।
1: करवा सकते हैं।
2: और जैसे ही पानी हम खेत से बाहर निकालें, तो उसके बाद में निराई गुड़ाई करनी चाहिए हमें,
1: जी
2: तो जिससे जो है मिट्टी के अंदर वायु संचार अच्छा हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही ना नीचे,
1: जी
2: तो निराई गुड़ाई से पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, ये उसके बाद हम कर सकते
1: ताकि जड़ों का विकास अच्छे तरीके से हो सके।
2: हैं। जी
1: लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जब अत्यधिक बारिश हुई है तो वो पानी निकासी की व्यवस्था समुचित किसान भाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी जमा होता है,
2: जी
1: उससे जो अगली फसल की बुआई है हमारी वो प्रभावित होती है। तो उस दशा में हम अगली फसल की जो बुआई है उसकी बुआई जुताई खेत की और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
2: जी अगली फसल की बुआई के लिए, क्योंकि खरीफ के बाद जब रबी की हम फसलें लगाते हैं ना,
1: जी
2: नॉर्मली तो हम ये चीज़ कर सकते हैं भाई, उसको नर्सरी के अंदर किसी पौधे को, मतलब या जो फसल को छोटे एरिए में हमने उगा लिया और
1: जी
2: उसके बाद में उसकी रुपाई कर दी मेन फील्ड में, पर जो रबी के अंदर जो फसलें हैं उसमें ये चीज़ संभव नहीं है।
1: नहीं है
2: सरसों भी हम ऐसे नहीं लगा
1: जी
2: सकते, गेहूं भी हम ऐसे नहीं लगा सकते, तो
1: जी
2: ये वैसे आमतौर पर ऐसी समस्या आती नहीं है।
1: जी
2: समस्या ये आती है अभी जब हम उसकी कटाई कर दी ना, उस
1: जी
2: टाइम पे जो बारिश हो गई,
1: जी
2: तो अगर आपकी फसल खेत में पड़ी है तो उसका
1: हाँ
2: अंकुरण हो जाएगा,
1: जी
2: या फिर अगर आपने उसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली ना, आप घर पे ले गए, वहाँ पे फसल पड़ी है उसके ऊपर बारिश होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं उसके ऊपर,
1: ये बिल्कुल
2: चाहे
1: आपने जो विषय रखा है, ये बाजरे की फसल में पिछले कई वर्षों में ऐसे उदाहरण बहुत से सामने आए कि जब 2-3-4 दिन लगातार बारिश हो
2: जी
1: रही है और बाजरे की फसल जब खेत में कटी हुई है तो उसमें अंकुरण हो जाता
2: अंकुरण हो
1: है,
2: जाता है,
1: उस दशा में किसान भाई
2: तो
1: क्या करें?
2: नमक डाल सकते हैं जी हम, प्रति एकड़ 20 से 25 किलो अगर आप नमक डालोगे, तो उससे क्या है, जो उसमें नमी रहती है वो बाहर निकल जाती है,
1: वो
2: और
1: फसल के
2: अंकुर,
1: ऊपर डालना
2: हाँ
1: होगा।
2: फसल के ऊपर, और वही फसल अगर आपके घर पे भी पड़ी है तो वहाँ पे भी हम नमक डाल सकते हैं, तो नमक से क्या होगा, नमक पानी घुल के मतलब बाहर आ जाएगा, अभी जब तक हम आप उसे सुखा नहीं रहे, तो ये एक कुछ टाइम के लिए हम उपाय कर सकते हैं, अभी 5-7 दिन बाद बारिश हो रही है, आप फसल को नहीं सुखा पा रहे, तो नमक आप डाल सकते हो खेत में भी, और अगर आप घर पे उसे रख रहे हो तो वहाँ भी डाल सकते
1: तो खुशकर्ण जी, आप किसानों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अतिवृष्टि और अनावृष्टि के दौरान फसल प्रबंधन के लिए क्या करें?
2: हैं। देखिए मौसम हमारे हाथ में नहीं है,
1: जी
2: उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर उस तरह के उपाय हम अपना सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, जैसा
1: जी
2: कि हमने बात भी की भी, आप ऐसी किस्मों के लिए जा सकते हो जो सूखे को सहन कर सके, आप पहले से जल निकासी के प्रबंधन कर सकते हो ना, अपने खेत में नाली बना के रख ली, उसके अलावा जैसे हम बात करें तो गोबर की जो खाद है
1: जी
2: या हरी खाद आप डाल सकते हो, तो उससे क्या है भी जो मृदा की संरचना है वो अच्छी रहेगी,
1: जी
2: तो अगर कम बारिश हो रही है उस समय भी उसमें ज़्यादा पानी बना रहेगा, और अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो फिर भी जो वो पानी है वो नीचे चला जाएगा, ऊपर आपको पानी खड़ा नहीं मिलेगा खेत के अंदर।
1: जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अनावृष्टि और अतिवृष्टि की दशा में फसल प्रबंधन के बारे में खुशकर्ण दीप जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में हमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि जो मौसम चक्र परिवर्तन है उसमें मुख्य रूप से जो कारक हैं, जो दोषी हैं,

0: जैसे प्रदूषण का है और पौधों का है, कि पौधों की कटाई तो हम कर रहे हैं लेकिन पौधे लगाते
1: लगा
0: नहीं
1: नहीं
0: हैं।
1: रहे।
0: अगर हम पौधे अधिक लगाएंगे, उनकी संभाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो ये बारिश का चक्र है, जो ये मौसम का चक्र है, इसमें भी सुधार होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
1: बिल्कुल। और आप अब सुन रहे थे खुशकर्ण दीप सिंह को, जो कि शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से, और खास बातचीत की कुलदीप सिंह ने।
2: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं उपदेश कलाकार हैं योगेश कुमार और साथी की आवाज में।

0: रंजीत बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे योगेश कुमार व साथी।
1: बिल्कुल, और हम काफ़ी सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, उनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत सरकार की प्रमुख कृषि बीमा योजना है, जिसे 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना।
0: बिल्कुल अनमंजी जी, और इसकी विशेषताएं भी हम अपने भाइयों को बता देते हैं कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि और इसके अलावा अधिसूचित प्राकृतिक जोखिम में होने वाले फसल को नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा करना है, और किसान को प्रीमियम की का जो सीमित हिस्सा देना है और शेष प्रीमियम में सरकार सहायता करती है। फसल नुकसान के आकलन में फसल कटाई प्रयोग व आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसके जो पात्र हैं, पात्र भी बता देते हैं कि पात्र किसानों को के बीमा दावों का भुगतान बैंक खाते से किया जाता है, और इसके अलावा हम बता दें कि फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देना महत्वपूर्ण है। वास्तविक सीमा समय सीमा राज्य और नुकसान के प्रकार के अनुकूल लागू होती है।
1: बिल्कुल, और लाभ की बात करें तो योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक जोखिम को कम करती है।
0: और देखिए, इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:41 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को बेहद सफल और उत्पादक बताया। कहा, सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दी। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद सफल और उत्पादक रहा। आज दिल्ली विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की लगातार अनुपस्थिति के बावजूद सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई।
5: 3 दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र, जिसका कल सत्रावसान हो गया, ये 6th सेशन था 8वीं विधानसभा का। जो भी एजेंडा हाउस में लाया गया वो सभी पास हो गए और 13 घंटे 19 मिनट वो कार्रवाई चली है। तमाम बाधाओं के बाद भी इन 6 सत्रों में 19 CAG रिपोर्ट टेबल हुई है, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बैकलॉग है जो कई सालों से रुका हुआ और उसका एक ही मकसद है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना।
4: सदन के मॉनसून सत्र में हुई प्रमुख कार्यवाही का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 52 जनहित के मामले उठाए गए। इन मुद्दों में कूड़ा निस्तारण, जल भराव, आवारा पशु, PWD की सड़कों और बिजली के बिलों सहित कई महत्वपूर्ण नागरिक समस्याएं शामिल रही। सदन में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सजा के मुद्दे पर 2 दिवसीय अल्पकालिक चर्चा भी हुई। इसके अलावा दिल्ली लक्ष्मी योजना के संबंध में सदन ने सर्वसम्मति से बधाई प्रस्तावित पारित किया गया। सत्र के दौरान 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए और पारित किए गए। इनमें दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान विधेयक, नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवाओं की उपलब्धता के अधिकार से संबंधित विधेयक, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
4: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों तथा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली के दीर्घकालिक विकास की परिकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार करती है। बैठक में सतत और समावेशी शहरी विकास के लिए रोड मैप पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना तथा दिल्ली को सभी के लिए स्वच्छ और हरित राजधानी बनाना है। हरियाली उत्सव के अवसर पर आज दिल्ली रिज स्थित PBG ग्राउंड सेंट्रल रिज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मेगा पौधारोपण अभियान 2026 में 70 लाख पौधों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 40 लाख पौधे लगाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली ने पौधारोपण लक्ष्य का लगभग 58% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग और डिजिटल निगरानी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि रिज क्षेत्र में लगभग 51 स्थानों पर पुनर्स्थापना कार्य जारी है और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक पुनरुद्धार पर सरकार विशेष बल दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़

0: aair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया।
1: हम सबके सामने ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की ये प्रतिमा जो सैल्यूट कर रही है, उस भारत मां को सैल्यूट कर रही है जिसकी आजादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। उस आजादी के लिए जहाँ पे गांधी जी का सत्याग्रह हो या भगत सिंह का बलिदान हो या रानी लक्ष्मीबाई का आंदोलन हो, एक एक स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों को निछावर करके इस भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी।
0: महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने युवाओं से तिरंगा हाथ में लेकर देश को मजबूत बनाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही आज रोहिणी सेक्टर 8 क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता, गौरव और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों तथा सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण होता है। महापौर ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है, जो 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर एक बड़ा आधार प्रदान करती है।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: दिल्ली के शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर झूठे और मनगढ़ंत दावे करने का आरोप लगाया है। स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण योजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सूद ने कहा कि 3,000 से अधिक छात्राओं को नई साइकिल मिलने से उनके चेहरों पर खुशी है, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। श्री सूद ने कहा कि विपक्ष ने 3 से 8 अगस्त के बीच अलग अलग आंकड़े पेश किए जिनमें लगातार बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सभी साइकिलों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। शहरी विकास और शिक्षा मंत्री ने झुग्गी वासियों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा उभरती हुई तकनीक था। इसका उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रशिक्षु शिक्षकों की तकनीकी और शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना था, साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीकों को समझने और उनका प्रभावी तथा रचनात्मक इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम में करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें सेवारत और भावी शिक्षक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा शोधार्थी शामिल थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लोगों से रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
3: दिल्ली मेट्रो के अनुसार मेट्रो की ओवरहेड बिजली लाइनों में 25,000 वोल्ट का करंट

0: होता है, इनके सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से जान जा सकती है। पतंग की डोर ओवरहेड उपकरणों में फंसने से बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। इससे मेट्रो ट्रेनों और पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंचने के साथ ही सेवा प्रभावित होने की आशंका रहती है। दिल्ली मेट्रो ने विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धातु वाले मांझे से पतंग न उड़ाने की सलाह दी है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यातायात पुलिस ने कहा कि कल सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास यातायात पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेगा। साथ ही सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इन रास्तों में नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और लिंक रोड सहित अन्य सटे हुए रोड शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, 11 मूर्ति मंदिर मार्ग, NH 24 तथा NH 9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड सहित GT रोड, ISBT कश्मीरी गेट का उपयोग करने को कहा है। वहीं आज रात 12 बजे से कल सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच माल ढोने वाले वाहनों को आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। यातायात पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेने और आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए जल्दी निकलने की अपील की है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पीपल फॉर एनिमल्स, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन एवं वन्य जीव विभाग के साथ मिलकर जामा मस्जिद स्थित कबूतर बाजार में संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान अलग अलग दुकानों से 863 पक्षियों और जानवरों को बरामद कर बचाया गया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ऋषि कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाजार की 5 से 6 दुकानें जानवरों और पक्षियों के अवैध कारोबार में शामिल हैं।
3: रेड के दौरान 800 से अधिक बर्ड्स और एनिमल्स वहां से रेस्क्यू किए गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से हमें ये पता चला कि 460 के आसपास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि शेड्यूल 2 में सेल और परचेज के लिए बैंड हैं। इसी के साथ साथ 400 से अधिक ऐसे एनिमल्स मिले जिनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया था और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी।
1: दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। और मौसम। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को बेहद सफल और उत्पादक बताया। कहा, सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दी। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यात्रा परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गीत मालिका में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना फिल्म धरती से लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथ में मोहम्मद रफ़ी। इस गीत को लिखा राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ हुई है। और राही, जी हाँ, रास्ते राही, बहुत कितना कहें कि कितना प्यारा शब्द है राही। लेकिन वो नहीं होता कि हम सब अगर जिक्र करें, बात करें, सोचें कि पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे मिल जाते हैं राही। राही तो हम सब हैं, अपनी अपनी मंजिलों की तलाश में, अपनी अपनी कहानियों के साथ। कोई सपनों के शहर में नौकरी ढूंढता हुआ राही है, तो कोई रिश्ते को निभाने में लगा हुआ राही है, और कुछ नहीं तो बस खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा एक राही है। और किसी ने ठीक ही तो लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में और साथ में मोहम्मद रफ़ी। फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना। ओ पी नैयर ने इस गीत को संगीत दिया। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। और राही, जी हाँ, मुसाफिर होने का सबसे सुंदर हिस्सा पता है क्या होता है? सबसे सुंदर बात यह होती है कि मंजिल से ज़्यादा ना आप रास्ते गढ़ते हैं, आप रास्तों को चुनते हैं। भाई मंजिल तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन जो रास्ते में मुलाकातें होती हैं, जो लोग मिलते हैं, रास्ते के कांटे होते हैं, थोड़ी सी थकान भी होती है, और किसी अजनबी की मुस्कान या फिर एक कप चाय की गर्माहट, यही तो सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो या फिर कामयाबी का सफ़र। भाई कुछ रास्ते जो है ना, वो कहते हैं कि यादगार बन जाते हैं। इसलिए अगर आज के सफ़र में या फिर ज़िंदगी के सफ़र में थोड़ी सी भी रुकावट होती है, तो रास्ता धुंधला भी दिखता है, तो घबराइए मत, रुकिए और ज़रा सोचिए कि हर एक राही की ना, हर एक मुसाफिर की अपनी अपनी रफ्तार होती है। भाई मंजिल देर से भी मिल सकती है, और मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन सफ़र खूबसूरत होना बेहद ज़रूरी है।

से और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:15 हो चुके हैं। और कहते हैं ना जनाब कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो भाई ये तो और भी गलत बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए, आप मंजिल तक पहुँचे ना पहुँचे। और जैसा कि हमने कहा कि रास्ते खूबसूरत होने चाहिए तो मंजिल कहीं ना कहीं अपने आप हासिल हो ही जाती है। और किसी ने ये भी ठीक कहा है कि अगर आपकी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी हैं तो समझिए कि आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं होता है, ख्वाहिशें हमेशा बरकरार रहती हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म सुहाना सफ़र से, और समय आपको बता दें एक बार फिर से कि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:21 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं रास्तों की। जी हाँ, मुसाफिर, रास्ते, राही, हम जिंदगी के सफ़र में बहुत आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कोई सफ़र बहुत खूबसूरत रहता है तो कई बार कुछ तकलीफ़ों से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन पाँव के छाले हमें देखने नहीं चाहिए और ना ही हमें ये देखना चाहिए कि राह में आपकी मंजिल तक दूरियां कितनी हैं, उन्हें नापना नहीं चाहिए। राही तो बस वही होता है जो चलता रहे हर हाल में।
1: आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता है।

फिल्म साहिब बहादुर से ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में और संगीत दिया मदन मोहन ने। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। वक्त रात्रि के 8:27 हो चुके हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, रास्तों की। एक ऐसा रास्ता जो कभी कभी खूबसूरत भी होता है और कभी कभी बहुत मुश्किल भी। दोस्तों, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम सफ़र नहीं मिलते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन तू कदम बढ़ा राही, इरादे बुलंद रख, क्योंकि कोशिश करने वालों के कभी भी हौसले जो है ना, वो कभी नहीं ढलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और मंजिल तक पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश रखनी चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, आपने गीत सुना अभी मेरी जंग फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। और कहते हैं ना, राही वो है जो लगातार चलता रहता है। सफ़र का मज़ा लीजिए और मंजिलों की जो फिक्र है ना उसे तो छोड़ ही दीजिए। जिधर ले जाए हवा, जी हाँ जिधर ले जाए हवा, बस उसी तरफ अपने जो रास्तों का जो रुख है ना वहाँ पर मोड़ दीजिए। हर मोड़ पे कुछ नहीं मिलेगा तो एक तजुर्बा तो ज़रूर मिलेगा। और मुश्किलों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस रास्ते जो है ना वो जोड़ते हमें आगे बढ़ना है।

श्रोताओं, छोटी सी मुलाकात इस फिल्म से रहा यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वाकई में जिंदगी की राह में किस मोड़ पर कौन मिल जाए ये हम नहीं जानते हैं, कौन सी सुबह क्या खूबसूरत पैगाम आपके लिए लेकर आती है ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हमारा काम क्या है, सिर्फ चलते रहना और बिल्कुल भी मुश्किलों से डरना नहीं। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।

जी हाँ, परिचय फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना। जी हाँ, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ना समेट खुद को इस कदर इन अंधेरों में, नया दिन ढलेगा और फिर कोई नई बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारा सफ़र इतना ही रहेगा, लेकिन 11:10 पर हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जी हाँ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में रहेंगे आपके साथ 11:10 पर। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को इस कार्यक्रम से अनुमति दें। आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त रात्रि के 8:44 और पूरे 53 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण

0: और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: अरे विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
5: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन

0: किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to joint

0: तो बहस का मुतालबा किया था, लेकिन जब सरकार इस पर रजामंद हो गई तो अपना मौके बदल दिया। जनाब गोयल ने कहा कि मॉनसून इजलास शुरू होने के बाद से सरकार लगातार अपोजिशन के साथ बातचीत करती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीके इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट में तब्दीलियां भी की हैं और अपोजिशन से बार बार ये अपील की है कि वो बहस में हिस्सा ले। जनाब गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।
1: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट में तलबा के मामले समेत किसी भी मामले पर बहस और अरकान की जानिब से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: इधर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन नीट मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर सरकार की जवाबदेही चाहती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्राइवेट सरमायाकारी के लिए पब्लिक सरमाया एक मुतबादिल होने के बजाय इसे तकवियत पहुंचाने वाला एक वसीला होना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों में प्राइवेट सरमाए को यकजा करने में नए तरक्याती बैंक के रोल के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों की मईशतें आलमी सतह पर तरक्की में सरकर्दा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्हें प्राइवेट सरमाए को रागिब करने में चैलेंजों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरमाए की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद कायम करना, इस्तेहकाम बरकरार रखना और एक तवील मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव का विजन खलाई टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत की जानिब आगे बढ़ाना है। जनाब गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुद किफालत और कौमी तरक्की साथ साथ फरोग पाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की $4 खरब की मईशत मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये $30 खरब की मईशत बनने की राह पर गामजन है। तजारत से मुतालिक हुकूमत के इकदामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए आज़ाद तजारती समझौते 38 तरक्की याफ्ता ममालिक का इहाता करते हैं, जिनकी मुश्तरका मजमूई घरेलू पैदावार GDP तकरीबन $60 खरब है।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती, पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं क्लास के जिमनी इम्तिहान 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा डीजी लॉकर पोर्टल के जरिए अपने इम्तिहान के नतीजे देख सकते हैं, जो इस तरह है results.djlocker.gov.in। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिला इंतजामिया ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर दरियाए चनाब में तिरंगा बोट रैली का एहतमाम किया, ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को और ज्यादा फरोग दिया जा सके। इस रैली से दरियाए चनाब के दिलकश पस मंजर में शान से तिरंगा लहराने के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे का जश्न मनाने का एक मुनफरिद और पुरजोश वसीला फराहम हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में कबायलियों की अक्सरियत वाले बस्तर खित्ते में भी तिरंगा यात्रा का अहतमाम किया गया, जो कभी मांव नवाजों के तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर रहता था। इस तिरंगा यात्रा में नायब वज़ीर-ए-आला विजय शर्मा के हमराह बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से अमन, इत्तेहाद और मुल्क की तामीर के पैगाम के साथ शुरू हुई। मुख्तलिफ़ बिरादरियों के नुमाइंदों ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखला विजय शर्मा की क़यादत में ये तिरंगा यात्रा बस्तर के दूरदराज कबायली इलाके से गुजरी, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में माओ नवाज़ों के बड़े वाक़यात पेश आए। 3 रोज़ा यात्रा 14 अगस्त को बीजापुर ज़िले की करेगुट्टा पहाड़ी पर अख्ताम पजीर होगी, जहां कौमी परचम लहराया जाएगा। नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद मुल्क और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इन इलाकों में अब माओ नवाज़ों की शोरिश ख़त्म हो चुकी है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय रेलवेज ने शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीज़न के 660 रूट किलोमीटर पर कवच निज़ाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है, जिस पर 295 करोड़ रुपये की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया है कि शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जत नगर डिवीज़न के बालान सेक्शन इसके दायरे में आएंगे। कवच निज़ाम के चौथे मरहले से मुतालिका रेल सेक्शनों पर सेफ्टी का बुनियादी ढांचा मजीद मुस्तहकम हो सकेगा। कवच निज़ाम मुल्क में ही तैयार किया गया अज खुद काम करने वाला एक ऐसा तहफ़ुज़ाती निज़ाम है, जिसका मकसद रेलगाड़ियों की आमदोरफ़्त की लगातार निगरानी के जरिए रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के हादसों की रोकथाम करना है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहाँ मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेस के ज़ेर साए निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाज़ा इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके ज़ेर असर कल उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, गोवा और राजस्थान में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी इस महीने की 15 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। नाइजीरिया के शहर लागोस में जारी दौलत मुशरका फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय फेंसिंग टीम ने मुख्तलिफ सीनियर इनफरादी मुकाबलों में सोने के 3, चांदी और कांसे का 1-1 तमगा जीता। भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 29 हो गई है, जिनमें सोने का 8, चांदी के 7 और कांसे के 14 तमगे शामिल हैं। भारत ने सीनियर खवातीन के फाइनल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने और चांदी के दोनों तमगे हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरालम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जाँच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में उड़ीसा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के बाज हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती।

0: देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: नमस्कार।
0: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी दो दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी?
1: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
0: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज़्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSEFCs हैं, जहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक, कई बार डिलेज भी हो जाते हैं चूँकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है, चूँकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो एक ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली।

0: कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है। बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
1: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में आरबीआई ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूँगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी एमएसएमई से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इन्वॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफ़ी आराम हमारे एमएसएमईज को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। सीपीएसईज को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन एमएसएमई से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान। तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
0: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या एमएसएमई मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
1: देखिए, जहां तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम हैं और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहां तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें। और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी, और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
0: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है, अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
1: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में, अगर कोई अपील 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
0: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
1: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है। और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर, और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने

0: बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कॉम्प्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस की हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है, तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया, इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक ले करके उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमईज के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमईज को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है। ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है, तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यावहारिक बदलाव किया गया है। पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है, तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी के अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके भी लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें AI भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी AI भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSCFCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, और कितने महिलाओं के हैं। ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं, और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है MSME ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में MSME का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे MSMEs जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज़्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी MSME चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएं, Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे MSME क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है, और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या MSME जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं, और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर, और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था, और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान

0: में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है। तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज़्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है? उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया। और बैंक्स ने ये भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर।
1: जी
0: हमारा परसेप्शन पहले ही रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में। और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज़्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज़्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं। बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफ़ी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीज़ें बनती हैं वहाँ पर किसी को सिलेक्ट करता है, या वहाँ कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहाँ की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं। और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं। और आने वाले समय में भी हमने MSME चैम्पियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया,
1: जी
0: ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और एमएसएमई, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी जीडीपी में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% जीडीपी का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुँचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में

0: चक्कर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे। उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे, और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैम्पियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं, या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढें, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से।
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं, और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है, और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे MSME क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि MSME क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर MSME मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कलाकार शबु शरण वर्मा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभात मुखर्जी का राग रागेश्री में संतूर वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे प्रभात मुखर्जी का राग रागेश्री में संतूर वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि की 11 बजने को हैं। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे

0: केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla, stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying

जी हाँ दोस्तों, कभी खत भी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत जरिया होता था। कागज़ पर लिखे चंद अल्फाज कई दिनों के इंतज़ार के बाद जब अपने तक पहुँचते थे तो हर लफ्ज़ में प्यार महसूस होता था। लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म शक्ति से। इस गीत की फरमाइश की थी 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी से, कॉलोनी इंदौर से, पूजा रघुवंशी, नंदिनी, बबीता, शोभा, कुमारी वंदना, देविका, लड्डू, स्वाति, प्रज्ञा। और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से प्रियाशी, वेदांशी, मनीष, गीतांजलि, नीलम, तनिष्का, मास्टर रणवीर ने।

दोस्तों कहते हैं कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। एक अच्छी दोस्ती भी कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म नरसिम्हा से। इस गीत की फरमाइश की थी जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोध राज खोरवाल, कमला रानी गीतिका और भानु प्रकाश ने।

हाँ दोस्तों, पहली मुलाकात का एहसास ही कुछ अलग होता है। न जाने क्यों किसी अनजान चेहरे में भी अपना सा कुछ नजर आने लगता है। पहली मुलाकात याद रह जाती है और कभी-कभी वही मुलाकात पूरी कहानी बन जाती है। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म साजन से, और इस गीत की फरमाइश की थी पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी सेक्टर 67 चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल कुमार, अनिल शर्मा, जय वीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने।

जी हाँ दोस्तों, कभी-कभी रिश्तों में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस सामने वाला उस खामोशी को समझने वाला होना चाहिए। लफ्ज़ कम पड़ जाए तो आँखों से बात कर लेना, लफ्ज़ कम पड़ जाए तो आँखों से बात कर लेना, दिल की बात तो हो तो खामोशी से आवाज़।

एसपी सिंह, निखिल प्रयाग सिंह मयंक, और दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की है साथी तरन्नुम, चेतना, ज्योति, अमित और फातिमा कलोनी महाराज से इस गीत की फरमाइश और की है लोगों ने। नासिर शेख, नाजिया, साजिद और शाहिद ने, साथ ही पचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग ने

हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है कि दिल में किसी के लिए प्यार हो और उसे इस बात की खबर तक ना हो। ये एहसास भी सोचो कितना प्यारा होता होगा, खामोशी में मोहब्बत और आंखों में इंतज़ार। तो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, फिल्म करण अर्जुन से। इस गीत की फरमाइश की थी बलराम सा, इरशाद अहमद शाह, शाह बेगम, मरियम और जैनब, और साथ ही गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर और गुरलाल और अवीर राज सिंह ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म कसूर से। इस गीत की फरमाइश की थी राजस्थान से बबलेश पवार डे ने, मनीष राम देवरा, दिनेश डागरी से बाबू राम जयपाल, साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित पीयूष कुमार ने।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दुश्मन से। इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और अलीज़ा नायाब और साथी लड्डू ने।

0: उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले मंजूरी दे चुकी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष

0: सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla, stating once again that he is open to having a detailed discussion on several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in Parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
3: In
1: Jharkhand, despite several rounds of

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये सुहानी शाम समर्पित है एक ऐसी संगीतकार जोड़ी को जिसने 90 के दशक में जब रोमानियत भरा कोई गीत छेड़ा तो पूरा देश झूम उठा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दो भाइयों की, उस जोड़ी की जिसने हमें पहला नशा से लेकर तुझे देखा तो ये जाना सनम जैसे न जाने कितने ही नगीने दिए। जी हाँ, जतिन ललित। दोस्तों, जतिन पंडित और ललित पंडित का जन्म सिर्फ एक परिवार में नहीं बल्कि संगीत के समंदर में हुआ था। ये मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं और महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी इनके सगे चाचा थे। इनके पिता पंडित प्रताप नारायण जी ने इन्हें शास्त्रीय संगीत की तालीम दी। इतना ही नहीं, संगीत की दुनिया की महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारे लाल जी से इन्होंने गिटार और पियानो बजाना सीखा। इनकी बहनें सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित भी मशहूर अभिनेत्रियां और गायिकाएं रही हैं, यानी खून में ही संगीत बहता था। तो चलिए इस संगीत में सफर का आगाज करते हैं उनके सबसे पहले हिट गाने के साथ, 1991 की फिल्म यारा दिलदारा का ये गाना।

क्या बात है, बिन तेरे सनम सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जतिन ललित को असली पहचान और बॉलीवुड में स्टारडम दिलाया साल 1992 की फिल्म जो जीता वही सिकंदर ने। मंसूर खान की इस फिल्म में आमिर खान और आयशा जुल्का थे, लेकिन फिल्म की जान था इसका संगीत। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला नशा बॉलीवुड का पहला ऐसा गाना था जिसे पूरी तरह स्लो मोशन में शूट किया गया था, और इसकी धुन में जो ताजगी थी उसने जतिन ललित को रातों रात सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। इसी फिल्म में उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। इसी के साथ उन्होंने उसी साल खिलाड़ी और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी फिल्मों में भी सुपरहिट म्यूजिक दिया। चलिए आपको सुनवाते हैं वो गाना जिसने पहली नजर के प्यार को एक नई भाषा दी।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा में जतन ललित स्पेशल। दोस्तों, 1995 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा को अपनी इस लव स्टोरी के लिए एक ऐसा संगीत चाहिए था जो दशकों तक पुराना ना पड़े। जतन ललित ने आनंद बख्शी साहब के लिखे शब्दों में ऐसी रूह फूंकी कि DDLJ का एल्बम भारतीय संगीत इतिहास के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम्स में शामिल हो गया। इस एल्बम की 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी। चाहे मेहंदी लगा के रखना हो या तुझे देखा तो ये जाना सनम, हर गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। चलिए सीधे चलते हैं 90s के उस रोमांटिक दौर में।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ और कुमार सानू उनका साथ, क्या बात है। जतिन ललित सिर्फ चुलबुले या कमर्शियल गानों के उस्ताद नहीं थे, अगर उन्हें संजीदा और आत्मा को छू लेने वाला संगीत बनाने का मौका मिला तो उन्होंने वहाँ भी झंडे गाड़े। 1996 में आई संजय लीला भंसाली की डेब्यू फिल्म खामोशी द म्यूजिकल। इस फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाज़ में जतिन ललित का संगीत इतना गहरा था कि आज भी संगीत प्रेमी इसे उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानते हैं। बाहों के दरमियाँ गाने की मेलेडी आज भी कानों में मिश्री घोल देती है।
1: मैं ऐनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं जतिन ललित की। 90 के दशक के उत्तरार्ध में करण जौहर ने जब निर्देशक के तौर पर कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म, जो पहली थी उनकी, कुछ कुछ होता है के लिए जतिन ललित पर भरोसा जताया। और नतीजा क्या रहा, ये आप सभी के सामने था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट बनी। इसके बाद 2000 में मोहब्बतें और 2001 में कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों के गानों ने विदेश तक में भारतीय संगीत का परचम लहराया। आइए सुनते हैं

दोस्तों, अब बात करते हैं जतिन ललित के पुरस्कारों और रिकॉर्ड्स की। बॉलीवुड इतिहास में जतिन ललित के नाम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। आपको जानकर ताजुब होगा कि जतिन ललित को फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए पूरे 11 बार नॉमिनेट किया गया, जिनमें जो जीता वही सिकंदर, DDLJ, खामोशी, यस बॉस, कुछ कुछ होता है, सरफरोश, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, चलते चलते और फना जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि बतौर जोड़ी वे एक भी फिल्म फेयर नहीं जीत सके, जो संगीत प्रेमियों के लिए हैरानी की बात है। लेकिन इन्होंने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में कुछ कुछ होता है के लिए कई ट्रॉफी अपने नाम की। और हाँ, आगे चलकर छोटे भाई ललित पंडित ने साल 2010 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग के सुपरहिट आइटम नंबर मुन्नी बदनाम हुई के लिए साजिद वाजिद के साथ फिल्म फेयर ट्रॉफी भी जीती। पुरस्कार चाहे मिले या ना मिले, लोगों के दिलों पर उनका राज हमेशा रहा। चलिए सुनते हैं फिल्म सरफरोश से उनका रचा एक और शानदार गाना।

दोस्तों, हर खूबसूरत कहानी में कभी ना कभी ठहराव आता है। साल 2006 में आमिर खान और काजोल स्टारर फिल्म फना रिलीज हुई। इस फिल्म का संगीत जैसे चांद सिफारिश और देखना चार्टबस्टर साबित हुआ। लेकिन अफसोस, फना जतिन ललित की जोड़ी के तौर पर आखिरी फिल्म साबित हुई। व्यक्तिगत मतभेदों के कारण 16 साल की इस सफल पार्टनरशिप का अंत हो गया और दोनों भाइयों ने अलग-अलग काम करने का फैसला लिया। भले ही ये जोड़ी अलग हो गई, लेकिन उन्होंने जो 470 से अधिक गाने और 70 से ज्यादा फिल्में हमें दी, वे आज भी अमर हैं। चलिए सुनते हैं उनकी जोड़ी का आखिरी सबसे बड़ा हिट गाना, फना से।

दोस्तों, आज हमने जतिन ललित के सुरमई सफ़र को जिया, उनकी पारिवारिक विरासत से लेकर उनके शुरुआती संघर्ष, DDLJ की ब्लॉकबस्टर सफलता और उनके रिकॉर्ड्स तक। जतिन ललित सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि 90s के बच्चों की यादें हैं, पहली मोहब्बत का एहसास है और फुर्सत के लम्हों की मिठास है। आज के शो में बस इतना ही। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम से इजाज़त, लेकिन संगीत का ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते आपके लिए छोड़े जा रही हूँ जतिन ललित की एक और बेहद मखमली धुन।

0: आप सुन रहे थे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम कीर्ति के साथ। फिलहाल रात्रि के 1 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार

0: सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: University Grants Commission UGC has issued 16 letters of intent LOIs to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdar said this in a written reply in the Rajya Sabha. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu. In Jharkhand, despite several rounds of talks and assembly ghirao, no breakthrough has been reached between the government and the protesting students. The students are demanding cancellation of the 2024 JSSC CGL examination, through which more than 2,000 candidates have already been appointed.

आपने सुना ये गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। अगला गीत बहारों के सपने फिल्म से, राहुल देव बर्मन, जी हाँ, आर डी बर्मन का संगीत है और लता मंगेशकर की आवाज़।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म प्रिंस से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। और मुझे याद है ये बहुत वक्त पहले जब मेरे पास फ़ोन न्यू आया था तब उस पर रिंगटोन थी इस गाने की, और जब वो बजता था इतना अच्छा लगता था कि वाह मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। चलिए अगले गीत की ओर लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म इज्जत से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अब अगला गीत आपके लिए आ रहा है फिल्म शोर से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और संगीत से पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। और इसी फहरिस्त में अगला गीत जो आ रहा है, और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत भी, जी हाँ, क्योंकि आप घड़ी देख सकते हैं, समय जो होने वाला है इस कार्यक्रम का ख़त्म कुछ ही देर में। फिलहाल आपके लिए गाना, जी हाँ, तैयार है। हीरा पन्ना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपको सुनवाएंगे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 18 आतंकियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार सुराब जिले में आतंकी विस्फोटकों से लदी गाड़ी तैयार कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोटक समय से

0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: वंदिनी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
1: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
0: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा।

0: सी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत पहाड़ अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर

देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, ये सुनते हैं ये गजल सम्राट जगजीत सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गज़ल अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की मधुर आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगली गज़ल चित्रा सिंह की ही मधुर आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गज़लों और गीतों कार्यक्रम के इस अंत में आइए सुनते हैं ये गज़ल भूपेन हजारिका साहब की आवाज़ में।
1: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहाँ के अवाम की तस्वीर नज़र आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

0: न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकेंगे। 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 16। सुबह 6:55 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का।

0: सुबह 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुनेंगे और 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। 9:15 पर आप कार्यक्रम उद्योग पत्रिका सुनेंगे और 9:30 पर समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। सुबह 10 बजे आप अंग्रेजी हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, SP मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC ए और OBC बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि OBC ए और OBC बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है, ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। पार्लियामेंट हैज पास्ड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026। द बिल अलाउज द कॉरपोरेशन टू अंडरटेक इट्स एक्टिविटीज इन इंडस्ट्रियल गुड्स। The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state.

आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शवासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुलनुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।